सुप्रभात। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। हम उपस्थित हैं अपने आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के साथ। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने

0: देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम चिंतन, विषय है अपना दुख।

0: जोसिबा नाम की एक संत थी। सदा प्रभु की प्रार्थना किया करती थी। परमात्मा में उनका अखंड विश्वास था। उनकी सांस सांस में वही विराजती थी। लाख विघ्न आए, बाधाएं आए, विपरीत परिस्थितियां आए, उनका ध्यान उन्हीं में लगा रहता था। मनुष्य है तो नाना प्रकार के कष्ट भी हैं। देहधारी को दंड भोगना ही पड़ता है। कोई हंसकर भोगता है, कोई रोकर भोगता है। कबीर कहते हैं, देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख भुगते रोए। ज्ञानी जानता है कि मनुष्य शरीर धारण करने वाले को ये भोगना ही पड़ता है, नहीं है कोई उपाय इससे बचने का। परंतु भूखे जन हाय तौबा मचा देते हैं, परमात्मा को कोसने लगते हैं, क्या दुख दे दिया भगवान आपने, सहा नहीं जाता है। भक्त को रहता है भरोसा भगवान पर कि वही सब कुछ पार लगाएंगे, वही हैं खेवनहार, भावसागर से पार वही उतारेंगे, वहां दुख से छुटकारा पाना कौन सी बड़ी बात है। एक दिन जोसिबा सोचने लगे, हे प्रभु, इतना भजता हूं आपको, क्षण भर के लिए भी मेरा ध्यान दूसरी ओर नहीं भटकता है, फिर भी आपकी मुझ पर कृपा कहाँ होती है, दुख से छुटकारा कहाँ मिलता है। मैं तो अपने दुख की पोटली सिर पर लादे चलता रहता हूं, मेरी पोटली न ले सकें, दुख से निवृत्ति न दिला पाएं, इतना तो कर दें कि मेरा दुख दूसरे के दुख से बदल दें, कुछ तो राहत मिलेगी। अपना दुख भोगते भोगते ऊब गया हूं प्रभु। रात को सोने के पहले जोसिबा यही सोचते रहे, फिर प्रार्थना की और निद्रा मग्न हो गए। प्रातःकाल सूर्य पूर्वी क्षितिज पर प्रकट होने की तैयारी ही कर रहे थे कि उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने मन ही मन प्रभु को प्रणाम किया और सोचा कि मनुष्य का संपूर्ण जीवन प्रभु के प्रति एक प्रणाम भर रह जाए, तभी उसके जन्म लेने की सार्थकता है। इसी समय बाहर डुगडुगी पीटने की आवाज आने लगी। संत चौंके, कितने प्रातःकाल डुगडुगी पीटने का क्या सबब हो सकता है। डुगडुगी पीटने वाला जोर जोर से घोषणा कर रहा था, भाइयों बहनों सभी उम्र के लोगों, सुनो सुनो शाही फरमान, ध्यान से सुनो, आज अपराह्न 4 बजे सार्वजनिक सभागार में सब लोग जुटें, जिन्हें अपने दुख की पोटली भारी लग रही है वे अपनी पोटली दूसरे की पोटली से बदल सकते हैं, ध्यान रहे ठीक 4 बजे सार्वजनिक सभागार में आ जाएं। संत ये सुनकर अतीव प्रसन्न हुए कि प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन ली, इसीलिए तो अपना अपना दुख विनिमय करने की घोषणा हो गई। उन्होंने प्रभु के प्रति आभार प्रकट किया। 2 बजे दिन से ही लोग सभागार की ओर दौड़ने लगे, सबकी पीठ पर एक एक पोटली थी। सभागार में घुसते ही लोग दौड़कर किसी खूंटी में अपनी पोटली टांग देते थे और अन्य पोटलियों का भी मुआयना कर लेते थे कि किस पोटली से बदलना उपयुक्त होगा। सभागार में पर्याप्त जगह थी, दीवार में काफी खूंटियां थीं। समय होते होते सभागार खचाखच भर गया, खूंटियां पोटलियों से भर गई। सबकी नजरें दूसरे की पोटलियों पर लगी थीं कि बदलने में चूक न हो जाए, कि अपने से अधिक भारी पोटली हाथ न लग जाए। ठीक 4 बजे मंच से घोषणा हुई, सभी अपनी इच्छा अनुसार पोटली बदल सकते हैं। सभी अपनी अपनी पोटली की ओर भागे कि वह कोई दूसरा न ले ले। पता नहीं दूसरे की पोटली में क्या है, अपनी पोटली ढोने का वर्षों से अभ्यास है, दूसरे की पोटली उठा न पाए तो। देखते देखते ही सभागार खाली हो गया, खूंटियां खाली हो गई, लोग अपनी अपनी पोटली पीठ पर लादे प्रसन्न चित्त लौट रहे थे, मानो दिग्विजय कर लौटे हैं। संत पछता रहे थे कि उसे क्या सूझी कि ऐसी प्रार्थना कर दी, दूसरी ओर उन्हें धन्यवाद दे रहे थे कि उन्होंने उनकी आंखें खोल दी, सत्य से साक्षात्कार करा दिया, अपना दुख ही सही है, उसी को सहने का अभ्यास हो, निश्चिंत होकर मनुष्य प्रभु का स्मरण करें, सुख दुख के झमेले में न पड़े।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, विषय था अपना दुख। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया है।

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम श्री राम चरित्र मानस गान एपिसोड 405।
1: एपिसोड नंबर 405।

पक्षीराज गरुड़ को श्री रामचरित तथा ज्ञान और भक्ति की मीमांसा सुनाने वाले पुण्यात्मा काकभुशुंड के चरित्र में एक लक्षण सब ही मानप्रद आपु अमाना के दर्शन इस प्रसंग में होते हैं, जहां वे कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त और किसका भजन किया जाए, जिन्होंने मुझ जैसे वज्र मूर्ख पर इतना स्नेह बरसाया। पक्षियों में सबसे नीच, सब प्रकार से अपवित्र, क्या मैं प्रभु के भजन का अधिकारी हूं? किंतु मुझ जैसे अधम अपवित्र को भी प्रभु ने जगत को पवित्र कर देने वाला प्रसिद्ध कर दिया। और एक सच्चे संत की भांति ही काकभुशुंडी गरुड़ के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने उनसे ये अति पवित्र और पतित पावनी कथा पूछी और सुनी। कहते हैं, मैं धन्य हूं जो श्री राम ने मुझे अपना जाना और आप जैसे साधु की संगति का सुअवसर प्रदान किया। जिनके चरण शिव तथा ब्रह्मा द्वारा पूजे जाते हैं, उनकी दया मुझ जैसे अकिंचन को प्राप्त हुई, ये उस भक्त वत्सल की मृदुलता ही तो है। साधक, सिद्ध, जीवन मुक्त, विरक्त, कवि, विद्वान, कर्मयोगी, सन्यासी, कोई भी भगवत भजन किए बिना भव सागर पार नहीं कर सकता।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्री राम चरित्र मानस गान एपिसोड 405 आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको जानकारी दे दे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

7:30 मिनट का समय होगा कार्यक्रम गीत संगीत का। आज 7:45 मिनट

संध्या छह बजकर दो मिनट पर आप युवाओं के लिए सुनेंगे कार्यक्रम युवावाणी। छह बजकर तीस मिनट पर आप सुन सकते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। सात बजकर पंद्रह मिनट का समय होगा कार्यक्रम झनकार का और सात बजकर तीस मिनट का समय होगा कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। श्रोताओं रात्रि आठ बजे आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः केन्द्रशासित प्रदेशानाम् उपराज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य चत्वारिंशदधिकैकशत कोटि नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं एनडीए सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: अस्मिन्नवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः, यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मुर्ज, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनम् प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः अष्टोत्तरैकशत प्रसिद्धाः कलाकाराः चतुर्विंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य अथ च पञ्चविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनीनगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आर्यावर सुगना फरार हो जाई है।

0: आज के समाज में एक गरीब के बेटी कह रहे है,
1: निर्बल हिया निर्धन हिया, निर्बल हिया निर्धन हिया बेटी गरीब के, निर्बल हिया निर्धन ही।

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य वार्ता के अंतर्गत भेंट वार्ता, बहरापन कारण लक्षण और बचाव। भेंट वार्ताकार है डॉक्टर गिरीश चंद्र वर्मा और भेंट करता है अशोक कुमार।
1: श्रोताओं, आज के स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम में हमारे बीच है ENT सह जनरल फिजिशियन डॉक्टर गिरीश चंद्र वर्मा जी। सर, आप आकाशवाणी के कार्यक्रम से पहली बार मुखातिब है, आपको बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ नमस्कार।

0: नमस्कार सर।
1: सर संक्षेप में सबसे पहले आप अपना परिचय दें।
0: मेरा नाम डॉक्टर जीसी वर्मा है। मैं झारखंड सरकार में, बिहार सरकार में डॉक्टर था। अलग अलग जगह पर पोस्टिंग मेरी हुई
1: जी।
0: लास्ट में मैं इच्छाक हजारीबाग सीएससी से परवाई एमओआईसी के पद से रिटायर किया। 19 में अक्टूबर में रिटायर किया हूँ। तब से मैं और यहाँ पर बिहार के रहने वाला हूँ, लेकिन घर हजारीबाग में ही बना लिया। यही प्रैक्टिस में कर्म भूमि मेरा यही है, इसलिए मैंने यही प्रैक्टिस शुरू किया।
1: हाँ।
0: मैं जनरल फिजिशियन हूँ और साथ में ईएनटी का भी कार्य।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो विषय है एक बहुत आम जेंडर समस्या आजकल बनता जा रहा है, क्योंकि शोर शराबा बाजार में बहुत ज्यादा है। शादी ब्याह का अवसर हो तो बड़े बड़े डीजे बजते हैं, अगर उसके बगल से आप गुजर जाएंगे तो कभी कभी हार्ट बीट भी बढ़ जाता है और कई लोगों का हियरिंग लॉस भी हो जाता है उस वजह से। खासतौर से तो ये एक बड़ी आम समस्या बनती जा रही है, हियरिंग लॉस यानी कि बहरापन। तो आज के तारीख में क्या कारण हो सकते हैं और उसके उपाय क्या हैं, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। पहले कारण पे थोड़ा विस्तार से चर्चा की है।
0: ये तो आपने ठीक कहा कि ज्यादा डीजे और ज्यादा साउंड से भी हियरिंग लॉस होता है, लेकिन आज जनरली जो मुख्य कारण है आपको डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर है, चोट लगने के कारण भी हो सकता है, और पुराना जिसे किसी का कान बह रहा है, पुराना बचपन से कान बहते आ रहा है, उसका भी हियरिंग लॉस होने के चांसेस बढ़ जाता है। चोट लगने का भी कारण हियरिंग लॉस हो सकता है, और एजिंग फैक्टर भी एक ठो है। एज जैसे से बढ़ता है उसके बाद भी धीरे धीरे वो टिम्पनिंग मेम्ब्रेन का पोजीशन कम होने लगता है, जिसके वजह से हियरिंग लॉस होता है। मेन कारण डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, और कान का इन्फेक्शन हो उसके कारण भी है। आज ज्यादा शोर शराबा जो आपने बताया उसके कारण
1: फैक्स जो है हमारे कानों में जो जमे होते हैं बहुत दिनों से, खासतौर पर उस पर ध्यान नहीं जाता है। तो क्या वो भी एक बहरापन का कारण बन सकता है?
0: बहुत कम चांसेस है, लेकिन है वो भी एक कारण है, लेकिन कम चांसेस है, लेकिन वो भी है एक कारण। लेकिन उसको तो आपको वैक्सीन या ड्रॉप और जो इन्फेक्शन मैंने कारण हो सकता, ज्यादा कारण वो है डायबिटिक प्लस हार्ट प्लस चोट लगना और प्लस कान बहने का मेन कारण होता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक्चुअली कान में जो वैक्स जमे होते हैं उन्हें निकालने का क्या तरीका होता है? हमारे उससे आजकल लोग एक हाइड्रोजन प्रोक्साइड जान
0: नहीं,
1: लेकिन उसका भी प्रयोग कान के लिए शायद
0: नहीं। हाइड्रोजन प्रोक्साइड तो हम लोग कभी भी यूज नहीं करना चाहिए कान के लिए, कभी यूज नहीं, इसलिए कि हाइड्रोजन प्रोक्साइड में जो जाता है वो टेम्परिंग में बहुत सेंसिटिव इलाका एरिया होता है, वो जलने के चांस रहता है। उससे अच्छा है कि हम लोग बहुत लोग डॉक्टर लोग हम लोग जो है सो डिस्टिल्ड वाटर को प्रेशर देकर करते हैं, और दूसरा एक और जो है सो वैक्स को हिसाब से अपने उसको निकाल देते हैं। वो निकालने का तरीका अलग है, सब नहीं निकाल सकते। देहात में भी आजकल देखे हुएगा, बहुत जगह देखिएगा निकाल देता है, चिमटा से निकालता है, कभी कभी टेम्परिंग में टच कर जाने से इंजुरी हो जाता है। उस सावधानी पूर्वक उसको निकाला, सब कोई नहीं निकाल सकता, ट्रेंड आदमी को ही निकालना चाहिए ज्यादा मुश्किल। आप अपने हिसाब से कॉटन से बर्ड से धीरे से निकाल सकते हैं, एजुवेक्सी या ड्रॉप ये सब देखकर जब डायल्यूट हो जाए, थोड़ा सा मुलायम हो जाए, तो धीरे धीरे करके निकाला जा सकता। वाटर डिस्टिल्ड वाटर से भी स्प्रे करके उसको किया जा सकता है, वैक्सी या ड्रॉप डालकर दो चार दिन के बाद वैक्स को जब डायल्यूट हो जाए, थोड़ा सा मुलायम हो जाए, तो अपने घर पर भी बर्ड से आप निकाल सकते हैं, या फिर ट्रेन डॉक्टर हैं वो निकाल दें।
1: कभी कभी कानों से अचानक देखने में आता है कि मवाद टाइप से कुछ निकल रहा है, जख्म की संभावना भी बनती है, क्या भी उसका वजह क्या है और क्या वो भी एक हियरिंग लॉस का कारण बन सकता है?
0: हाँ, वो भी हियरिंग लॉस ओटाइटिस मीडिया उसको बोलते हैं। और कभी कभी क्रोनिक होता है, जो बहुत पुराना चला आ रहा है, धीरे धीरे बीच बीच में दवाई खाने से बंद हो गया, या ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स इस तरह जो जनरली ठंडा पानी पीते हैं वो धीरे धीरे इन्फेक्शन हो जाता है, कान में ही चला जाता है, कभी कभी देखिए गला में थ्रोट पेन थ्रोट सोर हो जाता है, तो उसके लिए भी ठंडा पानी से परहेज करना चाहिए, एकदम चिल्ड पानी को नहीं पीना चाहिए। आप ट्रीटमेंट तो अलग अलग है, आप ओटाइटिस कान का बहरापन है या डिस्चार्ज हो रहा है उसके लिए अलग एंटीबायोटिक है, देखने को पड़ेगा। मान लीजिए ज्यादा पुराना हो गया तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन ऑपरेशन कितना सक्सेस होता है बहुतों को देखते हैं हम लोग, कभी सक्सेस होता है कभी नहीं होता है, चांसेस 40-60 का रहता है कि चांस बहरापन ठीक भी हो सकता है नहीं भी हो सकता।
1: अच्छा, आप हेयरिंग लॉसेस के आपके पास केसेस अगर आते हैं और मान के चला जाए कि कान में जैसे जख्म है,

0: और वैक्स भी भरा हुआ है, तो फिर पहले उस जख्म को
1: ठीक करते हैं जी। और जब जख्म एकदम सूख जाता है देख लेते हैं हम लोग, देखने के बाद लगता है कि जख्म सूख गया तो धीरे धीरे करके उसको वैक्स को निकालने की कोशिश।
0: तो उसके फिर मरीज ठीक हो जाते हैं?
1: हाँ, मरीज करीब करीब।
0: और क्या इस तरीके की अगर सावधानियां है, इस तरीके के अगर केसेस आता तो और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए लोगों को घर में?
1: पहला है कि चिल्ड पानी नहीं पीना चाहिए
0: जी।
1: और कान में गर्म तेल डाल लेता है उस सबको नहीं डालना चाहिए
0: जी।
1: कभी कभी सुनते हैं सरसों तेल को लोग गर्म करके कान में डाल लेता है, तो वो तो और इन्फेक्शन का कारण बन जाता है।
0: गर्म करके ठंडा
1: करके लोग डाल लेता है, कभी कभी हल्का गर्म करके डालता है, नॉर्मल मतलब हल्का गर्म रहता है वो डालता है लोग, तो क्या होता है टेम्परिंग में और इफेक्ट पड़ता है और उससे जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो बहुत सेंसिटिव मेम्ब्रेन रहता है तो उसको दिक्कत करता है।
0: कान के पर्दे आमतौर पर बहुत सेंसिटिव होते हैं, लोग समझते नहीं है कि अंदर क्या कोई भी खुरदरा चीज हो मिले, माचिस की
1: माली तिल्ली उससे नहीं करिए, उसमें ऑक्साइड रहता है, माचिस तिल्ली जिल्ली दम नहीं करें, बर्ड से आप ज्यादा कर सकते हैं, बर्ड से बहुत रगड़ना नहीं है, कभी कभी कॉटन बर्ड जो होता है वो भी रगड़ के।
0: और डॉक्टर साहब इस तरीके के जो भी मरीज आते हैं तो उन्हें खान पान में भी कुछ?
1: खान पान में हम लोग करते हैं, हमारा अपना रहता है कि आप जगह शुगर देख लें, शुगर कंट्रोल करके रखें, चीनी की बीमारी है शुगर कंट्रोल करके रखें, और हार्ट की बीमारी है तो उसके प्रिकॉशन लें अपना, अदर्स जो भी आपको लगता है कि ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर के लिए आप दवाई रेगुलर खाएं, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर होने से कान में आप कभी सुने हुए कि ब्लीडिंग कान से हो जाती है, नाक से ब्लीडिंग हो जाती है, तो इस सब को परहेज करना है, अपना रेगुलर दवाई खाना है, बीपी ओपी रेगुलर चेक कराना है, ब्लड शुगर रेगुलर चेक।
0: अच्छा, ये हियरिंग लॉस जो है ये क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी आने
1: वाले? ऐसा नहीं, एजिंग फैक्टर है, धीरे धीरे एज में हर आदमी की एज में उम्र होने के बाद
0: जी,
1: इसलिए इसका ये हेरिडिटरी नहीं,
0: हेरिडिटरी रोग
1: नहीं।
0: तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर जीसी वर्मा, जिनके माध्यम से आज हमने जाना कि हियरिंग लॉस यानी कि अगर बहरापन है तो उसे किस प्रकार से ठीक किया जाए, और इसके बारे में काफी संक्षेप में डॉक्टर साहब ने काफी कुछ हमें बता दिया है। और उम्मीद यही है कि आप सब अगर हियरिंग लॉस की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क करें और जो बातें इन्होंने कहा है उस पर अमल करेंगे, और निस्संदेह रूप से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के कार्यक्रम में पहली बार आप मुखातिब हुए और इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बात कर
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता के अंतर्गत भेंट वार्ता, बहरापन कारण लक्षण और बचाव। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर गिरीश चंद्र वर्मा और भेंट करता थे अशोक कुमार। श्रोताओं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत संगीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संगीत।
1: रफ्ता रफ्ता नजर हो गई बेखबर, देखता हूं जिधर तू ही आए नजर, अपना बना ले मुझे, दिल में बसा ले मुझे, तू है मेरी रूहे सफर। रफ्ता रफ्ता नजर हो गई बेखबर।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है। विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी

0: मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
4: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे है, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
3: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
5: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
3: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
7: भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
0: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
8: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमूज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। यह टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको

0: में आयोजित किया जाएगा।
1: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खानपान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू चेयर 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग इन न्यू दिल्ली टुडे। Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. U.S. military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. A report from our correspondent.
4: measures for promoting entrepreneurship, enhancing skilling and creating sustainable employment opportunities across the country will also be deliberated upon in the meeting. The discussions will further focus

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रखेंगे झारखंड का पक्ष। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में NH-33 एलिवेटेड कॉरिडोर का लिया जायजा, कहा 2027 तक पूरा होगा काम। स्नातक शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट का नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश, 30 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई। राजधानी रांची, धनबाद और दुमका सहित 9 जिलों में आज से 14 जून तक तेज आंधी, बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और रांची में शुरू हुई झारखंड T20 लीग में आज छोटा नागपुर रॉयल्स की भिड़ंत धनबाद डायमंड से और रांची टाइटंस का मुकाबला संथाल स्ट्राइकर्स से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा।

0: जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। वे दिल्ली पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड का पक्ष मजबूती से रखेंगे। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में NH-33 फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सांसद विद्युत वर्ण महतो की मौजूदगी में हुए इस निरीक्षण के बाद मंत्री ने कहा कि वन विभाग की क्लियरेंस मिलते ही काम में और तेजी आएगी। यह परियोजना 2027 तक पूरी होगी, जिससे मानगोवासियों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी।
2: एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से जाम की समस्या का निजात मिलेगा। पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि 26 के लास्ट में और 27 की शुरुआत में बनके चालू हो जाएगा। मात्र 1 किलोमीटर फॉरेस्ट क्लियरेंस राज्य सरकार नहीं दे रहा है, जिसके चलते परेशानियां हो रही है।
1: झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 मामले में राज्य सरकार की संशोधन याचिका स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 30 जून तय की है। साथ ही कैवियट दायर करने वाले पक्षकारों को याचिका की सॉफ्ट कॉपी देने का आदेश दिया है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि एकलपीठ के आदेश में संशोधन के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के नए अध्यक्ष का गठन कर दिया गया है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई तक नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा मद में 10 करोड़ 70 लाख का बजट जारी किया है। इसमें से 3 करोड़ 60 लाख राज्य के 6 प्रमुख मेडिकल कॉलेजों और राजकीय फार्मेसी संस्थान के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित है। बाकी राशि का उपयोग चिकित्सा संस्थानों में बिजली, पुस्तकालय, भवन मरम्मत, नए वाहनों की खरीद और बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्पदंश, एंटी रेबीज और अन्य जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के लिए निर्देश दिए हैं। मौसम जनित बीमारियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी रखने और एक्सपायरी के करीब पहुंच चुकी दवाओं की खरीद पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। चतरा महिला महाविद्यालय में 7 दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम का समापन हो गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के इस संयुक्त कार्यक्रम में 60 शिक्षकों को भारतीय ज्ञान परंपरा और AI का प्रशिक्षण दिया गया। समापन पर कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा ने कहा कि आने वाला समय विकसित भारत 2047 और AI का होगा। उन्होंने घोषणा की कि अगले चरण में विश्वविद्यालय के 50 शिक्षक विशेष प्रशिक्षण के लिए BHU जाएंगे और भविष्य में 1 लाख छात्र छात्राओं को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी का नामांकन रद्द करने की मांग पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे संवैधानिक प्रक्रिया पर दबाव बनाने की कोशिश करार दिया।
3: हमारे कार्यकर्ताओं को विधानसभा के गेट के बाहर रखने का काम किया वहां का प्रशासन ने, और कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सब विधानसभा के अंदर घुसे। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। भेदभाव की राजनीति प्रशासन करना बंद करे, ये आरोप की जिम्मेवारी है कि बिना दबाव में आए जो सही है उसको सही करें, जो गलत है उसको गलत करने का काम करें।
1: इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

0: केशव महतो कमलेश और झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन में कई त्रुटियां होने के बावजूद उसे रद्द नहीं किया गया। रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नेताओं ने निर्वाचन आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए इस मामले को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास ले जाने की बात कही।
1: मध्य प्रदेश में हमारे मीनाक्षी नटराजन जो उम्मीदवार थे उनको 15 मिनट में जब त्रुटि पाई गई तो उन्हें रद्द किया गया, और यहाँ पर हमारे द्वारा जो आपत्ति की गई उससे 24 घंटा का समय दिया गया, उसमें कई त्रुटियां थी।
0: धनबाद के टाउन हॉल में झामुमो ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण सहकार्यशाला का आयोजन किया। केंद्रीय सचिव विनोद पांडे और टुंडे विधायक मथुरा प्रसाद महतो की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को आगामी SIR और मतदाता सूची पुनरीक्षण की बारीकियां सिखाई गईं। विनोद पांडे ने बताया कि 30 जून से शुरू होने वाले इस अभियान से पहले बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना और एजेंटों को प्रशिक्षित करना बेहद जरूरी था।
2: आने वाली जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का सामना BLA 2 और बूथ स्तर के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कैसे करेंगे, इन सारे विषयों पर हम लोगों ने प्रकाश डाला। जो 30 तारीख से SIR की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो आप अपने बूथ पर किस तरह से मुस्तैद रहेंगे, इन सभी विषयों पर हम लोगों ने बातचीत की।
0: और अब मौसम का हाल। राज्य के 9 जिलों में आज से 14 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गुड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह में कहीं कहीं तेज बारिश होने की आशंका है। इस मौसम बदलाव को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। रांची के JSCA स्टेडियम में झारखंड T20 लीग का रंगारंग आगाज हो गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले कल देर शाम भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने चमचमाती ट्रॉफी का अनावरण किया। आज मैदान पर दो रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें पहले मैच में छोटा नागपुर रॉयल्स की भिड़ंत धनबाद डायमंड से होगी, जबकि दूसरे मैच में रांची टाइटंस का मुकाबला संथाल स्ट्राइकर्स से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड से राज्यसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन वैध होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, कांग्रेस की आपत्ति खारिज, नाथवाणी मैदान में कांग्रेसियों ने धरना दिया तो भाजपा कार्यकर्ता भी पहुंचे विधानसभा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 4 में से जिन 3 नामों पर लोकभवन को थी आपत्ति वही बनाए गए सूचना आयुक्त। हिंदुस्तान के शब्द हैं, जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड अब CO के डिजिटल हस्ताक्षर से होंगे प्रमाणित। दैनिक जागरण लिखता है, 108 एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही पर 2 चिकित्सा पदाधिकारी निलंबित। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रखेंगे झारखंड का पक्ष। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में NH-33 एलिवेटेड कॉरिडोर का लिया जायजा, कहा 2027 तक पूरा होगा काम। स्नातक शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट का नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश, 30 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई। राजधानी रांची, धनबाद और दुमका सहित 9 जिलों में आज से 14 जून तक तेज आंधी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और रांची में शुरू हुई झारखंड T20 लीग में आज छोटा नागपुर रॉयल्स की भिड़ंत धनबाद डायमंड से और रांची टाइटंस का मुकाबला संथाल स्ट्राइकर्स से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

श्रेया घोषाल, सुजैन डिमेलो और रूप कुमार राठौर की आवाज में सुन रहे थे वीर फिल्म से आप ये गाना, गुलजार के बोल, साजिद वाजिद का संगीत।

पीर जारा फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ की आवाज में गाना जावेद अख्तर के बोल, संजीव कोहली का संगीत।

पॉन की आवाज में मेट्रो इन दिनों फिल्म से ये गाना, संदीप श्रीवास्तव के बोल, म्यूजिक है प्रीतम का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं अनवर फिल्म से, रूप कुमार राठौर और साथियों की आवाजों में सईद कादरी के बोल, म्यूजिक है मिथुन का।

0: अनवर फिल्म से आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर की आवाज में ये गाना। आज का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है रूप कुमार राठौर पर, तो जानिए इनके बारे में कुछ बातें, कुछ किस्से इस कार्यक्रम के बाद यानी 9:30 पर, जिसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज रात 9:30 पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मेरा जन्म भी बंबई का है और मैं भी साउथ बॉम्बे में ही मेरा बचपना मैंने बिताया। हम लोग पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौर जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज़्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज़ सुनी तो वो किसी साहस की सुनी, या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग पांचों इतने, मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई हैं अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद, ही इज ऑल्सो प्रिबिक सिंगर, और सबसे छोटा है दिलीप। मुझे एक किस्सा बराबर याद आ रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, म्यूजिक सिखाते थे, क्योंकि मैं संगीत में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तो जब भी कोई स्कूल का फंक्शन होता था तो कहीं ना कहीं वो मुझे उसमें तबला बजाने के लिए कहते थे या गाने के लिए कहते थे।

0: पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं हुई, क्योंकि संगीत बहुत कम उम्र से ऐसा रच बस गया था कि या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था, पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौड़ एक दक्ष तबला वादक हैं। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौड़ ने गायन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई एक सुरीले गजल गायक के रूप में।

पार्श्व गायक के रूप में रूप कुमार राठौड़ को पहला मौका दिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अंगार में। इसके बाद आई फिल्म भैरवी, जिसमें रूप कुमार राठौड़ की आवाज को बहुत पसंद किया गया। कुछ और फिल्में मिली जैसे गुमराह, मोहब्बत की आरजू, तेजस्विनी और नाजायज, लेकिन रूप कुमार राठौड़ को असली कामयाबी मिली फिल्म बॉर्डर से।

पहला प्रोग्राम मुझे याद है, जैसे मैं 6 साल का था तब मैंने स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस, एक गौला टैंक पे एक हॉल है तेजपाल हॉल, वहाँ पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज़्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफ़ी म्यूजिशनों का आना जाना रहता था और कई उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा प्यार, और गाने बजाने की बातें ज़्यादा होती थी रादर देन गॉसिप। तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो आवाज़, जो तबले की जो पहली आवाज़ या धा या ता या तिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पर डाला कि अगर मैं रो रहा हूँ और अगर

हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, 102-103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बा जी, जिसे हम प्यार से अब्बा जी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब घर पे आए और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज़ मुझे सुनाई दी और मेरी आँख खुल गई और मैं रोने लगा, जिद करने लगा। और फिर खां साहब ने, अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे और एक घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया। हाँ, तो वाकई वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज़्यादा छाया हुआ था। तो शायद यही वजह रही हो सकती है कि मैंने तबला एज अ प्रोफेशनल बजाना शुरू किया।

0: रुकुमार जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कि कौन कौन आते थे?
1: अबाजी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह खान
1: साहब, और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफ़ी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोज़र हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमीम अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
0: तबला जो था उसमें उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और किन से आपने सीखा?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने से आई, कुछ चीज़ें सीखने से आई, और कुछ चीज़ें जो हैं अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, ख़ास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तरखवा खान साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सब को देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में बिठाई, और मैं आज भी वो चीज़ें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और

0: 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहाँ मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में
0: और वहाँ पर हारमोनियम पड़ा हुआ था, ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था, और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई। उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
2: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौड़ को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए।

0: जमाना।
1: लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश।

आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौड़ पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: नाइन एट

इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा, जीवन की प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो।

कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुन रहे सभी श्रोताओं का अपने पसंदीदा कार्यक्रम में स्वागत है, साथ ही शगुफ्ता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, हम हाजिर हैं ढेरों जानकारियों के साथ, तो चलिए सुनते रहिए अपना मनपसंद कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद चलिए कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का दिन यानी 11 जून का दिन भारतीय और विश्व इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं, आविष्कारों और महान हस्तियों के जन्म के लिए जाना जाता है। इस दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थियां बिखेरे जाने जैसी प्रमुख घटनाएं शामिल हैं। आइए जानते हैं भारत की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आज के दिन यानी 11 जून 1866 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसे पहले आगरा उच्च न्यायालय कहा जाता था, की स्थापना की गई। 1964 देश

के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी अस्थियों की राख पूरे देश में बिखेरे गए। 2008 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया।

दोस्तों आइए जानते हैं विश्व की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। 11 जून 1742 बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने प्रसिद्ध फ्रैंकलिन स्टोव का आविष्कार किया। 1936 आविष्कारक एडविन आर्मस्ट्रांग ने पहली बार एफएम रेडियो प्रसारण का प्रदर्शन किया। 1962 कुख्यात अल्कस्त्रास जेल से फ्रैंक मॉरिस और जॉन क्लारेंस एंग्लिन भाइयों सहित 3 कैदी भागने में सफल रहे, जो इस द्वीप से भागने वाले एकमात्र कैदी माने जाते हैं। 2009 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 41 वर्षों में पहली बार H1N1 स्वाइन फ्लू वैश्विक महामारी की घोषणा की थी।

2008 में आज ही नासा ने फर्मी टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। इसका उद्देश्य ऊर्जा गामा किरणों का अध्ययन करना है। इस वेधशाला ने ब्लैक होल, डार्क मैटर व न्यूट्रॉन तारों के रहस्यों को समझने के नए रास्ते खोले। विशाल फर्मी बबल्स की खोज इसकी ऐतिहासिक उपलब्धि है।

कैप्टन कुक ने की ग्रेट बैरियर रीफ की खोज। 1770 में आज ही ब्रिटिश कैप्टन जेम्स कुक का जहाज ऑस्ट्रेलिया के पास चट्टान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बचा। इस खतरनाक हादसे के कारण ही दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अजूबे ग्रेट बैरियर रीफ की ऐतिहासिक खोज हुई।

दोस्तों, अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले महानायक राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और कवि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना से मुख्य भूमिका निभाई। बिस्मिल ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए 9 अगस्त 1925 को प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला डाली। एक बेहतरीन लेखक भी थे, जिन्होंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है जैसी अमर पंक्तियों को जन जन तक पहुंचाया।

दोस्तों, खेलों का हमारे जीवन में एक अपना महत्व है। खेल हमारे जीवन में एक विशेष भूमिका निभाता है। श्रोताओं, खेल हमारे जीवन में मनोरंजन के साथ साथ संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का एक शक्तिशाली माध्यम है। यह शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने, मानसिक तनाव को कम करने और अनुशासन, टीमवर्क व नेतृत्व जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल विकसित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

दोस्तों आइए जानते हैं हमारे जीवन में खेलों के मुख्य लाभ और महत्व के बारे में। नियमित रूप से खेल खेलने से शारीरिक क्षमता, सहन शक्ति और लचीलेपन में सुधार होता है। मांसपेशियां और

हड्डियां मजबूत होती हैं, यह शरीर की ताकत बढ़ाता है और बीमारियां जैसे मोटापा या सुस्ती से बचाव में भी मदद करता है। खेल खेलने से मस्तिष्क तरोताजा रहता है और पढ़ाई या काम के तनाव को दूर करने में भी मदद मिलती है। चुनौतियों का सामना करने और जीतने की इच्छा शक्ति से मानसिक दृढ़ता भी बढ़ती है। सामूहिक खेल में दूसरों के साथ समन्वय और मिलजुल कर काम करना सिखाते हैं।

दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो प्रमुख खेल दिवस मनाए जाते हैं। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसके अतिरिक्त भारत में 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जिन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित इस दिवस का मुख्य उद्देश्य बच्चों के खेलने के अधिकार को बढ़ावा देना है। यह दिन बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में खेलों और शारीरिक गतिविधियों के महत्व को उजागर करता है।

दोस्तों, स्कूली सिलेबस में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स होगा 6ठा विषय। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब खेल सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पढ़ाई का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को कोर्स में शामिल करने का निर्णय लिया है। कक्षा 10वीं व 12वीं में वैकल्पिक विषय के रूप में इसे शामिल किया जाएगा। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए ये गाइडलाइन तैयार की गई है। जिलों को फिलहाल मार्गदर्शिका भेजी जाएगी, इसी के अनुसार स्कूलों में होगा खेलकूद का कार्यक्रम।

दोस्तों, आज पर्यावरण जहां संकट के दौर से गुजर रहा है, लोग खेती से दूरी बनाकर दूसरे रोजगार की ओर रुख कर रहे हैं, वहीं चौपारण ग्राम पंचायत चैकला निवासी असीम रजा आम की बागवानी कर प्रखंड वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। असीम रजा ने महज 80 डिसमिल भूमि पर आम की विभिन्न प्रजाति के 100 पौधे लगाकर न केवल हरियाली बढ़ाने का कार्य किया, बल्कि इसे अपनी आय का स्थायी स्रोत भी बना लिया। 2019-20 में शुरू की गई उनकी यह बागवानी आज बगान का रूप ले चुकी है। पेड़ों की उचित देखभाल, समय पर सिंचाई और जैविक तरीके से संरक्षण के कारण बागान में अच्छी गुणवत्ता के आम का उत्पादन हो रहा है और इससे उन्हें अच्छी आमदनी होनी भी शुरू हो गई है। असीम ने कहा कि किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ फलदार पौधे भी लगाएं, इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अतिरिक्त आय भी अर्जित होगी। बेहतर बागवानी के लिए जिला में असीम रजा को सम्मानित किया जाएगा। जिला प्रशासन के आदेश पर प्रखंड प्रशासन की टीम चैकला पहुंची और असीम रजा की बागवानी का अवलोकन कर जिला प्रशासन को अवगत कराया। प्रशासन की ओर से जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में असीम रजा सम्मानित किए जाएंगे।

दोस्तों, कोविड-19 महामारी ने दुनिया को यह सिखाया कि वायरस के बदलते स्वरूपों के सामने पारंपरिक टीकों की सीमाएं क्या है। डीएनए तकनीक और बिना सुई टीकाकरण की सुविधा, यह नया टीका पारंपरिक एमआरएनए तकनीक के बजाय डीएनए आधारित है। डीएनए वैक्सीन अपेक्षाकृत अधिक स्थिर मानी जाती है। इसे सुई के बजाय उच्च दबाव वाली तरल धारा के माध्यम से त्वचा में पहुंचाया जा सकता है। इससे टीकाकरण प्रक्रिया कम दर्दनाक, तेज और बड़े पैमाने पर अधिक सुविधाजनक बन सकती है, विशेषकर उन देशों में जहां कोल्ड चेन व्यवस्था सीमित है।

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम रंग तरंग, बस कुछ ही पलों में।

0: Tarang.
1: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। सभी सुनने वालों का इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: दिल पर मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ खता न हो, जो ये दिल दीवाना।
1: मोहम्मद रफ़ी और साथियों को आप सुन रहे थे, फिल्म धर्मपुत्र की ये कव्वाली थी। साहिल लुधियानवी के बोल थे, एन दत्ता का संगीत था।

0: बेगम अख्तर की आवाज में ये पारंपरिक दादरा गीत आप सुन रहे थे।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: ये पॉप गीत आप सुन रहे थे अदनान सामी की आवाज में, समीर के बोल थे।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग।

सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज थी, देव कोहली के बोल थे आनंदराज, आनंद का संगीत था, ये फिल्म थी हमको तुमसे प्यार है।

0: शारदा सिन्हा की आवाज में मैंने प्यार किया इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला राम लक्ष्मण ने।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: तलाश फिल्म का ये गीत था अलका याग्निक का।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं

0: बस 30 रुपए में।
1: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
2: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देशभर में उद्यमिता कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं को समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान के वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मेनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल

0: माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगे, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

राम और श्याम फिल्म का दो गाना था मोहम्मद रफी आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। जब याद किसी की आती है इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं, महेंद्र कपूर की आवाज है, राजा मेहदी अली खां के बोल हैं।

0: का सर्वदिखिया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी जब याद किसी की आती है, महेंद्र कपूर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खान के बोल थे।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: मैं तुलसी तेरे आंगन की, इस फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर आशा भोसले का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल ने।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे,
2: नहीं ते
1: नहीं ते

ज्यादा फिल्म का दो गाना आपने सुना किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी और इस गीत की रचना की आनंद बख्शी ने। आदमी और इंसान फिल्म का ये गीत है आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजें साहिल लुधियानवी की बोल।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, ये तो सही है कि आप जहाँ जहाँ हैं विविध भारती साथ साथ है, और साथ है सरगमी नगमों का जादू जो हमारे दिल की हर बात जानता है, कहता है और सुनता है। हमारी खुशियों, हमारी जिंदगी के सफर में शामिल इन नगमों की परवाज का क्या कहना, और उन बातों, उन शिकायतों का भी क्या कहना जिनमें छुपा छुपा सा प्यार भी नजर आ रहा है, और यही बातें मिलकर बनाती हैं इस प्रोग्राम को सुरीला सफर। तो अब आज की इबारत से पहले उन श्रोताओं को बता दें जो अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं इस कार्यक्रम में, अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं दे पाए हैं, तो लॉग इन कर सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai, और इस पते पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। और अब आपको बता दें आज की इबारत। एक रात दस्तक दी किसी ने, दरवाजा खोला तो देखा जैसे मेरी ही शक्ल, मेरा ही हमसाया। कहने लगा मैं तुम्हारी ही यादें हूँ, रैन बसेरा चाहता हूँ। याद करो वो भोर की किरणों का पनघट पर बसेरा, इसी पनघट पर जब बातें होती थीं। एक दिन जब खो गया कहीं कान का बाला, वो सूंधी रोटी, वो खिलौने, वो रेत की नाव, वो झाग के माझी, वो काठ की रेल, वो सीप के हाथी, वो मोम के चाक जो रुके न चले, वो संगी साथी, वो जादूगर का खेल, वो पगडंडी में दौड़ना, जब तुम्हारे आने से मेरी टूटी फूटी नाव सज जाती थी, कभी तुम्हारी मुस्कुराहट को देखते, कभी सोचते कि हमसे तो ये पायल ही अच्छी है, काश अपनी आंखों में बसा कर ये तस्वीर रख लूं, फिर कोई दिल तोड़ चला। सखियां भी एक एक कर ससुराल चली गईं। एक रोज डाकिया डाक लाया, पता चला ये शहर ही अब जिंदगी बन गए, और मन गांव में बस गया। शहर में कमरे ज्यादा हैं, घर बड़ा है, शायद इतना बड़ा कि कोई मिलता नहीं। शहर की इस आपाधापी में कोई पास बैठता नहीं, हाल पूछता नहीं। सुनो, चलो उसी मनमोहक गांव में वापस चलें जो आज भी वैसा ही है, जिसकी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, शायद हमने दुनिया से अलग एक गांव बसा रखा है। तो ये थी श्रोताओं आज की इबारत, आज का टेक्स्ट, और अब आपको शब्दों को ढूंढना है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने तो शब्द पहचान लिए हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों के बारे में भी लिखा है, तो देखते हैं कि आज कौन से गीत शामिल होते हैं।

0: श्रोता, गांव की जो दिनचर्या होती है वो बड़ी गजब होती है। तो गांव में या अभी आपकी दिनचर्या क्या है? अगर जब कभी आप गांव में थे तो उसे किस तरह से अब के समय से आप जो है मैच कर सकते हैं कि अब शहरों में जो सोना उठना बैठना उसका समय और गांव में जो दिनचर्या होती थी वो भोर के समय, जी हाँ, पनघट पर बहुत सारी पनिहारिने नजर आ जाएंगी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन की भाग दौड़ में मन आज भी अपने गाँव, अपने बचपन और उन अनमोल रिश्तों में बसा हुआ है जहाँ बचपन की यादें गाँव की मिलती।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक शुरू। विकसित भारत और समावेशी विकास पर चर्चा जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ले रहे हैं भाग। झारखंड हाईकोर्ट ने भूमाफियाओं के खिलाफ अपनाया सख्त रुख। राज्य सरकार ने तैयार किया विशेष एसओपी। कोर्ट ने दिया 6 हफ्ते का समय। राज्य के नेशनल और स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार रोकने के लिए लगेंगे स्पीड रिकॉग्निशन कैमरे। गति सीमा तोड़ने पर कटेगा ऑनलाइन चालान। रांची सदर अस्पताल बनेगा राज्य का पहला टेली एसएनसीयू और ई संजीवनी हब। ग्रामीण मरीजों को ऑनलाइन मिलेगी विशेषज्ञ सलाह। और रांची में आयोजित झारखंड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप संपन्न। बालक वर्ग में तनिष्क और बालिका वर्ग में कीर्ति बनी विजेता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता, कौशल विकास और स्थायी रोजगार सृजन के उपायों पर गहन विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ ही डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और शासन से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा केंद्रित है। इस वर्ष का मुख्य विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। राज्य में जमीन कब्जे के बढ़ते मामलों पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया। सरकार की ओर से बताया गया कि मामले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने विशेष एसओपी तैयार कर लिया है। अधिवक्ता अत्तानु बैनर्जी ने बताया कि अदालत ने इस एसओपी की समीक्षा करने और इसके क्रियान्वयन से जुड़े अन्य आवश्यक कदमों के लिए राज्य सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया है।
2: एक नियम बनाया गया है, वो सरकार के पास अभी भेजा गया है। कोर्ट ने सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया है। जो प्रस्ताव गया है इसको आपको लागू करना है, नहीं लागू करना है, जो भी निर्णय लेना आप 6 हफ्ते के अंदर लीजिए। कोर्ट ने मुझे भी ये कहा है वो उचित कानूनी रूप से वो सुझाव भी हम 10 दिन के अंदर ये वहाँ पर दे दें।
1: राज्य से गुजरने वाले नेशनल और स्टेट हाईवे पर सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार ने नई तकनीक अपनाने का फैसला किया है। अब हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने के लिए स्पीड रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे। सड़क सुरक्षा कोषांग की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि अधिकांश हादसे वाहनों की तेज गति के कारण होते हैं। इसी को देखते हुए बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी कैमरा एनफोर्समेंट व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। बोकारो के सेक्टर 12 में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण कार्य का जायजा लेने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह बोकारो पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन और सेल के अधिकारियों के साथ बैठक कर जमीन हस्तांतरण और बुनियादी ढांचे की प्रगति की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है।
3: 27 मार्च में इसको चालू कर दिया जाए और एनएमसी का जो नॉर्म्स है उसमें हम लोग मार्च तक अप्लाई कर देंगे और पढ़ाई तो है वो अगस्त से ही शुरू होगा। सबसे पहले मेडिकल जो कॉलेज के अंतर्गत हॉस्पिटल है वो चालू करेंगे मार्च के 27 में और उसके बाद पूरा मेडिकल कॉलेज जो है वो करीब करीब जुलाई अगस्त के आसपास चालू।
1: राज्य सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए रांची सदर अस्पताल को नए ई संजीवनी हब के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया है। इसके तहत राज्य भर के जिला अस्पतालों की नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयां ऑनलाइन सदर अस्पताल से जोड़ी जाएंगी, जिससे गंभीर नवजातों की विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा 24 घंटे ऑनलाइन निगरानी हो सकेगी। श्रावणी मेला से पहले 25 जुलाई को देवघर बासुकीनाथ फोरलेन शुरू हो जाएगा। 999 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस 45 किलोमीटर से अधिक लंबे फोरलेन का 80% से अधिक काम पूरा हो चुका है। एनएचएआई के अनुसार रेलवे ओवरब्रिज पर गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा होने के बाद अब निर्माण अंतिम चरण में है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा के लक्ष्मीपुर में गोवर्धन योजना के तहत स्थापित बायोगैस प्लांट से 32 घरों में पाइपलाइन के जरिए गैस की आपूर्ति शुरू हो गई है। महिलाओं द्वारा संचालित इस 1500 किलोग्राम क्षमता वाले प्लांट से लकड़ियों पर निर्भरता खत्म हुई है और खेतों के लिए जैविक खाद भी मिल रही है। परियोजना की सफलता पर मेंटेनेंस मैनेजर नीतीश राज ने कहा कि मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और एलपीजी की आसमान छूती कीमतों के बीच यह आत्मनिर्भर पहल बेहद कारगर साबित हो रही है।
4: तो और हम लोग पाइप से गैस दिए, गैस देने के बाद सुबह शाम जिस तरह हम रेगुलर बेसिस पर जो गैस जलता है उस हिसाब से प्रतिदिन हम लोग गैस जलता है सब वहाँ पे, जिसमें अभी एलपीजी की किल्लत होने के कारण हमारे सबसे वरदान साबित होता है गोवर्धन योजना।
1: बोकारो शहर के सिटी थाना क्षेत्र स्थित दूंदीबाद फल मंडी में कल देर रात भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 4 फल दुकानें और कई खटाल पूरी तरह नष्ट हो गए। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और बीएसएल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जमशेदपुर पुलिस ने साक्षी बाजार से लापता मासूम बच्ची आफरीन को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से सकुशल बरामद कर लिया है। बच्ची की तलाश के लिए गठित एसआईटी ने 50 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर इस सफलता को हासिल किया। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि मामले में पुलिस ने एक निसंतान दंपति को हिरासत में लिया है।
5: 50 से अधिक सीसीटीवी देखे गए और उसका जब वो जो ट्रेन था जो उसके द्वारा रास्ता बंद किया गया था और ये जो दो व्यक्ति हैं इनका नाम है अब्दुल जसीम और अफसाना बेगम। इन्होंने देखा कि उस दिन मार्केट में बच्ची अकेली है तो ये उसको अपने साथ लेकर चले गए।
1: आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 125 अंक बढ़कर 74,109 पर और निफ्टी 29 अंक बढ़कर 23,244 पर पहुंच गया था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। राज्य में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को आज से राहत मिल सकती है, क्योंकि प्री मॉनसून गतिविधियां तेज होने जा रही हैं। मौसम विभाग ने रांची, धनबाद और देवघर समेत कई जिलों में आंधी, वज्रपात और बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मुख्य मॉनसून अगले 4 दिनों में संताल परगना के रास्ते राज्य में प्रवेश करेगा। रांची में आयोजित 25वीं झारखंड जूनियर स्टेट शतरंज चैंपियनशिप में बालक वर्ग में तनिष्क कुमार और बालिका वर्ग में कीर्ति कुमारी ने खिताबी जीत हासिल की है। प्रतियोगिता के शीर्ष 4-4 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता के लिए हुआ है। इसी समारोह में झारखंड अंडर 7 और अंडर 11 शतरंज चैंपियनशिप का भी विधिवत उद्घाटन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक शुरू, विकसित भारत और समावेशी विकास पर चर्चा जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ले रहे हैं भाग। झारखंड हाईकोर्ट ने भूमाफियाओं के खिलाफ अपनाया सख्त रुख। राज्य सरकार ने तैयार किया विशेष एसओपी, कोर्ट ने दिया 6 हफ्ते का समय। राज्य के नेशनल और स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार रोकने के लिए लगेंगे स्पीड रिकॉग्निशन कैमरे। गति सीमा तोड़ने पर कटेगा ऑनलाइन चालान। रांची सदर अस्पताल बनेगा राज्य का पहला टेली एसएनसीयू और ई संजीवनी हब। ग्रामीण मरीजों को ऑनलाइन मिलेगी विशेषज्ञ सलाह। और रांची में आयोजित झारखंड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप संपन्न, बालक वर्ग

में तनिष्क और बालिका वर्ग में कीर्ति बनी विजेता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्रदीप कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म नागिन से, और एक गीत के हमने संगीतकार आपसे पूछे थे, सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि भूर भय पनघट पर, अब वो दौर कहाँ जब पनघट पर गांव की गोरियां इकट्ठे होकर दिनचर्या की बातें किया करती थी, अब हर घर पर नल से जल हो गया है, पगडंडी थी अब वो पक्की सड़क बन गई है, मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया है, डाकिये की साइकिल की घंटी मूक हो गई है, डाक का स्थान अब मोबाइल मैसेज और ईमेल ने ले लिया है, गाँव के हरे भरे जंगल जैसे माहौल को शहर के कॉन्क्रीट के जंगलों ने उजाड़ दिए, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, इस गीत को इन्होंने याद किया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस चिलचिलाती धूप में विविध भारती के गानों की बौछार हो रही है, ये कहीं न कहीं हमारे मन को सुकून और दिल को ठंडक पहुंचा रही है, सचमुच ही विविध भारती का ये सुरीला सफर हम श्रोताओं को एक साथ जोड़ता है और जो कि इस कार्यक्रम को रंगारंग दिलचस्प बनाता है, और इन्होंने विविध भारती का शुक्रिया किया है, तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और श्रोताओं कार्यक्रम तो आपके शामिल होने से ही बनता है। एक श्रोता और लिखती है कि गांव की अनमोल यादें ताजा हो रही हैं, इस इबारत में गांव का प्राकृतिक सौंदर्य, नदी का किनारा, नैया की सफर, सौंधी मिट्टी की खुशबू, शुद्ध हवा की शीतल लहरें, अनुपम सौंदर्य, सूर्यास्त, गांव का मेला, खेल खिलौने, मौज मस्ती, गांव में गुजरी बचपन की सभी यादें दिखाई देने लगी हैं। उसी की तस्वीर लेकर आ रहा है ये सुरीला सफर, और कुछ गीत भी इन्होंने बताए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्द हो सकते हैं रात दस्तक, यादें, भोर, पनघट, सौंधी रोटी, खिलौने, रेत की नाव, जी हाँ, और गीत भी बताएं।

सैया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार आप बताना चाहें तो बता दें श्रोताओं। गांव तो अपने आप में बड़ा खूबसूरत होता है, यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं। बगीचे से आम चुरा कर चोरी चोरी दोपहर में खाना, रहट का पानी, गांव की क्या खासियत है आपके गांव की। रेडियो की यादें, कुछ थिएटर की यादें, बाइस्कोप की यादें, दिनचर्या, पत्र जो आपके पास आया करते थे, तो क्या नहीं है गांव में। ऐसी बहुत सारी बातें हैं श्रोताओं। क्या कभी आपने बैलगाड़ी का सफर किया या साइकिल से स्कूल जाते थे, ये भी आप हमें जरूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है संगीतमय होगा, हमने इबारत पढ़ ली है, हम गांव और शहरों में तुलना करें तो हमें गांव ही अच्छा लगेगा। गांव में अपनापन होता है, वही शहरों में भीड़ तो बहुत है पर अपना कहने वाला कोई नहीं। और एक बात, इन दिनों शहरों में शाम के वक्त कुल्फी चाट के ठेलों और अन्य दुकानों में सुंदर लाइट से सजी दुकानें शाम होते ही जगमगा उठती हैं, और वहीं गांव में शांत सुकून के साथ अपने घर के छत पर शाम को लेटे हुए चांद तारों को तकना किसी अद्भुत दुनिया की ओर हमें ले जाता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मर्म को छू लेने वाली है हमारी आज की इबारत, हमारी पीढ़ी वालों को झकझोर देती है। बचपन गांव में या छोटे शहरों में बीता, आज बस आडंबर की भीड़ में मात्र एक इकाई बनकर रह गए हैं। अभी भी दिल के कोने में वो मंजर, हरियाली, बाग बगीचे, कुआं तालाब, बरगद की छांव में चारपाई पर लेटना आदि दिल के कोने में छुपी हुई इन्हें शहरी भीड़ में तलाशते हैं, मगर सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन याद करके दिल को सहला लेते हैं। मिट्टी की सोंधी खुशबू वाली इस सफर का इंतजार है। तो जी हाँ, ये सफर जो है वो तो जारी है। आप भी अपनी बातें कहिए गांव को लेकर, गांव की यादों को लेकर, और गांव आपको क्यों याद आते हैं ये जरूर बताइए।

ये प्यारा सा संगीत था नौशाद का, और आप कलाकार बता दें, एक कलाकार हम आपको बता देते हैं, राजेंद्र कुमार। जी हाँ, ये गीत था फिल्म गंवार से। बाकी आप बताइए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का सफर सुरीला बड़ा प्यारा है, गांव की सभी यादें ताजा हो गईं, और हमें भी याद आता है कुएं से पानी भरना, बैलों को पानी पिलाना, गाय का दूध निकालना, बकरियां, वो आंगन में सब कुछ समेटना, और रोजगार के लिए हमेशा काम करते रहना। जी हाँ, जब रोजगार की बात आती है तो नैया, जिसका गीत हमने आपको सुनवाया, नाव भी बड़ी साधन है रोजगार का, और हम ऐसी नैया को प्रणाम करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो गांव में बड़ी ज्यादा खुशियां या प्यार या लोग बड़े अच्छे होते हैं, शायद इस वजह से कि वहां संतोष बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा न पाने की इच्छा होती है, शायद इसीलिए गांव और गांव के लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। इन्होंने और भी थोड़ी बड़ी इबारत लिखी है। वैसे एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत भावुक है, गांव की यादें, बचपन, बिछड़ शहर का अकेलापन, ये सारी बातें इन्होंने लिखी हैं, और बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल के दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, वो दिन याद करो, भोर भये पनघट पे, ढूंढो ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला, बहुत सारे गीत इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की यादें जब दस्तक देती हैं, तब हम मन के बंद दरवाजे खोलते हैं, भूली बिसरी शक्लें, पनघट की यादें, खिलौने, रेत के घर, कागज की नाव, सब याद आता है। तो इनमें से आपको क्या पसंद था? रेत पे घर बनाना, खिलौने, कौन से खिलौने आपको अच्छे लगते थे, या अपने स्कूल की कोई याद? खासकर जब हम लोग स्कूल में थे तो चटपटी चीजें बहुत खाते थे श्रोताओं, और अब तो जंक फूड आ गए हैं। आप बताएं ये कलाकार कौन है।

बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म ठोकर से। सजन दिलवी के बोल थे और श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि जो कभी गांव में गया ही ना हो और वो लोग गांव के बारे में क्या जानेंगे, गांव का मिलनसार जीवन, लड़ते झगड़ते दोस्तों का गांव की जिंदगी क्या होती है वो बातें याद आती हैं तो दिल में एक कसक सी उठ जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जादूगर एक बार हमारे मिडिल स्कूल में शो करने आया था। खेल की घंटी में स्कूल के प्रांगण में एक घंटे तक ये शो हुआ। बात 1976 के सितंबर की है। हमने घर से 75 पैसे लेकर उसे दिए थे। बहुत मजा आया था। जी हाँ, तब पैसे भी बहुत कम हुआ करते थे और थोड़े से पैसे में बहुत सारी चीजें हम खरीद लिया करते थे। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मेरे गांव के चारों तरफ पहाड़ है जैसे एक टोकरी होती है, जिसके कारण मेरे गांव का नाम ठोकर है। मेरे गांव की लोकेशन बहुत अच्छी है। गांव उत्तर दिशा की पहाड़ी की तलहटी में बसा है। दक्षिण की तरफ तालाब है जिसका नाम कायरा तालाब है। गांव तो हमारा जीवन है, इसकी हर चीज हर स्थान हमारे रग रग में बसा हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच अपने गांव में बचपन की यादें और पुराने दोस्तों के साथ बिताए गए पल आज भी बहुत सताते हैं। गांव की भोर की बेला में पक्षियों की चहचहाट और बचपन के दोस्तों की यादें किसी मरहम से कम नहीं। ये अनमोल पल में बिताए गए बचपन से जोड़े रखते हैं जिसमें हमारे मन को असीम सुकून और शांति देते हैं। और भी इन्होंने अपनी बातें बहुत सारी लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का जो ये सुरीला सफर है, अक्सर लोग गांव छोड़कर शहर में रहने लगे हैं लेकिन गांव में जो आपसी प्रेम और भाईचारा देखने को मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता। शहर में तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता। मनुष्य अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए शहर की तरफ भाग रहे हैं लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जो गांव में थी। तो खिलौने वालों की जो यादें हैं वो आप हमसे साझा कर सकते हैं।

संध्या पर फिल्माया गया दो आंखें बारह हाथ फिल्म का ये गीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है इस गीत के बारे में, तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद इस गीत को पहचानने के लिए। और भी हमारे कुछ नगमे हैं, देखते हैं कि कौन से शामिल हो पाते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, अरे वाह, तीन गीत मेरे शामिल हो गए। आज सुहाना सफर में पुरानी यादें ताजा हो गई। मेरे गाँव की पैदाइश है, बहुत सुंदर था बचपन। हमारे गाँव में रामलीला होती थी और इन्होंने निम्बाड़ी लोकगीत गणगौर उत्सव में बड़ा आनंद आता था, बहुत याद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल में शुभकामनाएं, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं, आपने रुला दिया, वो बहुत यादों को जगा दिया। तो जी हाँ, यादें तो होती ही हैं, ऐसी हैं, समय समय पर इन्हें जगाना भी चाहिए श्रोताओं। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि यह हकीकत है कि गुजरे वक्त यानी पास्ट में हम जा नहीं सकते, इसलिए अपना अक्स अपने बच्चों और आसपास के बच्चों में देखा करते हैं। बचपन में मैं स्कूल और कॉलेज जाया करता था, उनकी सभी गतिविधियों को देखकर मैं ये सोचता हूँ और महसूस करता हूँ जैसे उनकी शक्ल में मैं स्वयं हूँ, उनमें स्वयं को देखकर।

ये तो बैलगाड़ी है जिसमें ये दुल्हनिया जा रही है, ये कौन सी दुल्हनिया है वो आपको बताना है, फिल्म पहचाननी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको बताऊं, मेरे गांव से एक नदी बहती है, बचपन में हमने इस नदी के पाट करीब 100 फीट के आसपास देखा है जो कि बरसात में 1 किलोमीटर दूर तक हो जाता था, किंतु अब बहुत दुख होता है वो केवल एक नाले में परिवर्तित हो गया है। इस नदी के पास आम के बगीचे होते थे जो आज नहीं है। जी हाँ, यही सारी चीजें हैं जो हमें बचानी है। श्रोताओं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, अगर कुछ खास करते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, जैसे पेड़ वगैरह लगाने को लेकर जो बातें हैं। और आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है तो आजकल खेतों में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो गांव में भी हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, विविध भारती सुनते हैं। एक और श्रोता ने बचपन के जो चटपटी चीज़ें थी उसके बारे में लिखा है कि बेर जो गुड़ और नमक मिर्च के साथ पके रहते थे, वो कागज़ की पुड़िया के समान बांध के देना, वो न्यूज़पेपर के लिफाफे जो घर में आटे की लोई बनाकर बनाए जाते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गांव में कहीं शादी होती थी तो लाउड स्पीकर बजता था, उस समय राजा और रंग का मेरा नाम है चमेली ये गीत लोकप्रिय था, आवाज सुनते ही सभी साथी दौड़कर वहां पहुंचकर गाना सुना करते थे।

0: क्या किया बाबू?
1: क्या री?
0: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी का लिख दो ना।

ये गीत आप सुन रहे थे हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। श्रोता, पलकों की छाव में इस फिल्म का गीत था, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, वो भी क्या दिन थे जब पनघट पर हम सब इकट्ठे भोर की किरणों को ताका करते थे। बड़े खुशनुमा दिन थे, यादें अजीब चीज होती हैं, वे कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, बस अचानक से किसी गीत में किसी रास्ते से दस्तक देती हैं और हम घंटों बैठे रहते हैं उस याद में, उसी उसकी तस्वीर के साथ। मन ने इन सब यादों को, बातों को बड़े सीधे तरीके से आत्मसात कर लिया है। हर चीज को स्वीकार करना यही सुख की निशानी है, इसी में बड़ी समझदारी है। फिल्म आपको पहचाननी है श्रोताओं, और कलाकार

पहली फिल्म का ये गीत आपने सुना, सत्यजीत और नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया। हमारे श्रोताओं ने इस गीत को भी पहचाना बिल्कुल ठीक, और अगले गीत को आपको पहचानना है, कलाकार पहचानना है। एक श्रोता ने लिखा है, मैं कल ही अधिक मास के चलते मेरे शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर चांदूद, जो नर्मदा नदी पर बसा है, वहां दर्शन करने गई थी। वहां नाव में बैठकर सामने वाले दूसरे किनारे पर स्नान किया। मतलब कल ही नाव में बैठकर आई हूं।

एक श्रोता ने लिखा है, वो दादी के हाथ की मक्के और ज्वार के चूल्हे पर बनी रोटी काश एक बार ही सही खाने को मिल जाए, बस फिर और कुछ नहीं मांगेंगे अपने इस मालिक से।

एक श्रोता ने लिखा है, मेरा गांव बहुत सुंदर है जो पहाड़ों की तलहटी में बसा है। एक नदी बहती है जिसके तट पर बहुत से मंदिर हैं। शाम के समय जब घाट पर बैठते हैं तो मंदिर से आरती की स्वर लहरियां गूंजती हैं, बस मन खुश हो जाता है।

अरुण गोविल और जरीना बहा पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म से। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोताओं तो अब चलते हैं गांव से शहर की ओर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी गांव जरूर जाना चाहिए और वहां की सारी चीजों को देखना चाहिए, निहारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम सुरीला सफर सम्पन्न होता है।

साथियों, आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसे इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले भी कहते हैं। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेल कूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना?

अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति भी खेल के कारण टीम में रहना सीख जाता है। विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग, नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों, खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम, उसके बाद थोड़ा सा खेलकूद, चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुका छुपी का खेल, थोड़ी सी देर का ये खेल

का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चे के साथ बच्चा बनने से, उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी खेलकर जरूर देखिएगा।

मैंने नहीं तो

खेल हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की जरूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून, यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर

0: रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट डब्ल्यू

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
1: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
0: ओमान के खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्यवाही में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
2: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
1: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिम हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: यह है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

0: कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी, एम जी हर्षमत के बोल थे। किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित को आप सुन रहे थे फिल्म उलझन में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म पूर्णिमा में आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर को, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने। विविध भारती से श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार।

0: विमान।
1: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक चल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता की और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। नीति आयोग की बैठक के दौरान देश के विकास को रफ्तार देने के लिए समन्वय और सहयोग पर बल दिया जा रहा है। राज्यों ने भी अपनी आवश्यकताओं से केंद्र सरकार को अवगत कराया और विकसित राष्ट्र निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई। इस बैठक में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य का पक्ष रखा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में पिछले 12 वर्षों में देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग का अभूतपूर्व विकास हुआ है। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड को भी केंद्र सरकार की ओर से देवघर एम्स, हवाई अड्डा, वंदे भारत ट्रेन, विभिन्न सड़क परियोजनाओं और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं की सौगात मिली है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है।
2: जो देश में विकास और देश की जनता का विश्वास और साथ ही गरीब कल्याण योजना, अगर इसकी फेहरिस्त को आप देखेंगे वो लंबी, 12 वर्षों में उन्होंने जितना काम किया वो अपने आप में अद्भुत। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। इससे स्पष्ट होता है कि ये कोई सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा का वो तपस्या का वो इकरार।
1: राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में नाम वापसी की समय सीमा अब से कुछ देर बाद दोपहर 3 बजे खत्म हो जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों, झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला तय है। तीनों ने चुनावी रणक्षेत्र में डटे रहने का फैसला किया है और किसी ने नाम वापस नहीं लिया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार 18 जून को राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में मतदान कराया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद नगर निगम ने क्षेत्र में बिना लाइसेंस के चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि शहरी क्षेत्र में बिना लाइसेंस के चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस दिया गया, लेकिन एक प्रतिष्ठान ने समय सीमा के अंदर आवेदन नहीं प्रस्तुत किया, इस कारण उसे सील कर दिया गया है।
3: यहाँ पर बहुत सारे विभाग, भवन, बैंकेट हॉल, लॉजिस है, जहाँ पर 2013 की नियमावली के अनुसार सबको निबंधन कराना है, लेकिन यहाँ पर प्राय देखा गया है कि बहुत सारे जो ऐसे लॉजिस है, विभाग भवन है, उन्होंने निबंधन नहीं कराया, हम लोगों के लाइसेंस नहीं लिया। सारे कागजात की जांच की जा रही है और जांच करने के उपरांत हम लोग जो भी उपयुक्त कार्रवाई होगी वो करेंगे।
1: मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद गरज के साथ झमाझम बारिश हो रही है। इस बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि देवघर, दुमका, गुड्डा, हजारीबाग, लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़ और साहिबगंज जिले में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज हवा और गरज के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। एनजीटी के निर्देश पर झारखंड में बालू खनन, भंडारण और परिवहन पर 15 अक्टूबर तक पूरी तरह रोक लगा दी गई है। मॉनसून में नदियों का जलस्तर और बहाव तेज होने से पर्यावरण और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए राज्य के सभी 444 बालू घाटों में उत्खनन और परिवहन बंद कर दिया गया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: ये आकाशन है सखी सहेली।

0: ही सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सहेलियों को और आरती आपको नमस्कार।
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज हम आ चुके हैं और बहुत सारे विषय लेकर आए हैं, बहुत सारी मस्ती, कुछ अच्छे अच्छे गीत
2: जी,
1: सब लेकर आए हैं।
2: तो
1: आज देखिए खेल खेल में सारी बातें हो जाएंगी क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस।
2: बिल्कुल, और ये खेल दिवस किन का है?
1: छोटे बच्चों का।
2: बच्चों का खेल दिवस है तो आज बच्चों के लिए भी है ना।
1: तो बचपन के जो खेल होते हैं, आपने कौन कौन से खेल खेले या जो खेल माता पिता ने खेले वही खेलना आपको पसंद है? इंडोर ज्यादा गेम खेलते हैं या आउटडोर ज्यादा करते हैं, मतलब घर में रहकर घर से बाहर?
2: जी बिल्कुल।
1: या माता पिता है किस तरह से बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इस बारे में अपनी बातें वो जरूर बताएं।
2: आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बाहर खेलने पे जरा कम ध्यान देते हैं, मोबाइल वगैरह में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या आप भी मतलब बच्चों को कहते हैं कि आप बाहर जाके खेलिए या फिर आप भी उनके साथ मोबाइल में लग जाती है?
1: इस बारे में बहुत सारी बातें और होंगी और आज होगी कहानी पद्मश्री की। इसमें किस सखी की बात होगी बताइए?
2: भीमव्वा डोड्डा बलप्पा शिले क्या थारा, जो कि पारंपरिक छाया कठपुतली कलाकार है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल, और कठपुतली का खेल देखना भी बच्चों को बड़ा पसंद होता है,
2: बड़ों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
1: और मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे खुश रहना या खुश रहने का दिखावा करना, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम खुश हैं या नहीं, लेकिन सामने आते ही जब कोई फोटो खींचना होता है तो हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, या फेसबुक पर, मीडिया पर हम कोई भी पोस्ट जब हम अपलोड करते हैं तो वहां जब डालते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम कितना अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या कितने खुश हैं। तो खुश रहने से ज्यादा खुशी का दिखावा करना, ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं।
2: तो आपके इस पे क्या विचार है कि मतलब खुश रहना जरूरी है, चाहे वो कम में ही क्यों ना हो
1: जी,
2: या फिर दिखावा ज्यादा जरूरी लगता है आपको कि लोगों के उसमें ध्यान में आपकी कैसी इमेज बन रही है
1: जी?
2: तो इस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही हम बताएंगे कुछ टिप्स आपको कान की किस तरह से सुरक्षा करके रखें आप, ध्यान रखें आप,
1: क्योंकि भाई आपको अगर रेडियो सुनते रहना है तो आपके कानों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, तभी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मनोरंजक जानकारी या फिर अच्छे अच्छे गीत आप सुन पाएंगे।
2: जी हाँ, जैसे कि अभी हम सुनने जा रहे हैं प्यारा सा गीत।

0: आरती गीत तो तुमने बहुत अच्छा सुनवाया, और अब हम पद्मश्री जिन्हें मिला है और कठपुतली कलाकार हैं वो, उनके बारे में बात करेंगे।
1: बिल्कुल, तो वर्ष 1929 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मोरनाला गांव में जन्मी भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्यथारा कर्नाटक की पारंपरिक छाया कठपुतली यानी कि तोगलू गोम्बेता की दुनिया में एक दिग्गज हस्ती रही हैं। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो इस प्राचीन कला का संरक्षक रहा है।
0: यानी कि हम जिसे कठपुतली के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में वहां की भाषा में उसे भी कुछ अलग नाम दिया गया है। और कन्नड़ में चमड़े की गुड़ियों का खेल, इसका अर्थ होता है तोगलू गोम्बेता, जो आपने भी बताया, जो कर्नाटक की एक पारंपरिक छाया कठपुतली कला भी है। और इस प्रदर्शन शैली में चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग पौराणिक कथाओं से लेकर और अभी लोक कथाओं तक सुनाने के लिए किया जाता है कि कहानी जब हम सुना रहे हैं तो उनको पात्र बनाया जाता है, उस माध्यम से उन कहानी को अच्छे से समझाया जा सके।
1: बिल्कुल, जैसे कि कुछ कला का जैसे मंचन किया जाता है ना,
0: हाँ,
1: उस तरीके से उस कठपुतली के जरिए मंचन किया जाता है। तो एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपने सफर की शुरुआत करते हुए उन्होंने चमड़े की कठपुतली कला में पूरा ध्यान लगाया और रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं को सुनाने के लिए कठपुतलियों को बनाने और उन्हें चलाने की कला में महारत हासिल की।
0: जैसे राजस्थान में भी कठपुतलियां बहुत बनती हैं, तो वहां लकड़ी की कठपुतलियां बनाई जाती हैं। और जब हम आज जिनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने चमड़े की कठपुतलियों के साथ में वो प्रयोग किए।
1: बिल्कुल, और दशकों तक उन्होंने अपनी कला को कस्बों और गांवों तक पहुंचाया, जहां उन्होंने कहानी, संगीत और जटिल शिल्प कौशल को मिलाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लगभग 8 दशकों से भीमव्वा का नाम तोगलू गोम्बेता के पर्याय के रूप में जाना जाता है।
0: और उनके जो प्रदर्शन होते हैं वो पौराणिक कथाओं, संगीत और भावपूर्ण कठपुतली आंदोलनों के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं आरती। और बहुत दशकों जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ जो वहाँ के लोक परंपराएं हैं उसके साथ में एक जुड़ाव भी महसूस करवाते हैं।
1: बिल्कुल, और सीमित संसाधनों और घटती लोकप्रियता के बावजूद भीमव्वा ने गांव और कस्बों में व्यापक यात्राएं की और पारंपरिक कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी।
0: पारंपरिक कठपुतली कला जो विलुप्त हो रही थी और खतरे में जा रही थी, क्योंकि ऐसी कला है ना जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, तो जब उन्होंने इस खतरे को भांपा तो युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया कि भाई जो चीज उन्होंने खुद सीखी है वो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सके, ताकि जो तोगलू गोम्बेता की जो कला है इसके अस्तित्व के लिए जो भी जरूरी ज्ञान है, कौशल है, वो उन तक भी उसे पहुंचा सके।
1: बिल्कुल, और उनकी कार्यशालाओं और मार्गदर्शन ने कठपुतली कलाकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की है, जिससे ये कला आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। उनके मार्गदर्शन में उनका परिवार प्रमुख महाकाव्यों और लोक कथाओं का मंचन करता चला आ रहा है।
0: और ये जो मंचन वो करते आ रहे हैं, इससे कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखिए ना आज भी संरक्षित है। और उनके प्रदर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं देते हैं लोगों को, बल्कि उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है या जो भी वहाँ के उत्सव हैं, त्योहार हैं, जो भी परंपरा है उनसे जुड़े हुए होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: भीमव्वा की जो जीवन यात्रा है वो केवल एक कठपुतली कलाकार की कहानी हमें नहीं बताती, बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से किया जाता है ये पूरी कहानी बयान करती है।
1: बिल्कुल, उनका जीवन भर का मिशन कर्नाटक के पर्दे पर कला की जीवंतता को बनाए रखना रहा, ताकि तोगलू गोम्बेता की प्राचीन आवाजें आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करें और उनको शिक्षित करती रहें। और पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला तोगलू गोम्बेता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्यथारा को भारत का 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया।
0: वो आगे इसी तरह नई पीढ़ियों को ये काम सिखाती रहें और इसके क्या क्या फायदे हैं समझाती रहें, लोगों को इससे जोड़ती रहें, यही शुभकामनाएं हम देते हैं।
1: जी,
0: और एक गीत सुन ले अभी।
1: जी बिल्कुल।

0: देखिए ना, इस गीत में भी कठपुतली का जिक्र था, और ऐसे जो खेल होते हैं ना, ये बच्चों को बड़े लुभाते हैं। और हम सब ने भी बचपन में जरूर कठपुतली का खेल देखा होगा, और खास तौर पे स्कूल में जब कठपुतली वाला आता था तो एक बच्चों में बड़ा कौतूहल सा होता था कि किस तरह के खेल दिखाए जाएंगे। और उसमें कुछ कठपुतलियां होती है ना जिनकी कमर बड़ी लचकती है, और उनका जो डांस है वो देखने में बड़ा मजा आता था।
1: बिल्कुल, और ये अजीब सी आवाजें भी निकालते हैं।
0: हाँ,
1: तो हमारी एक जो श्रोता है वो लिखती हैं कि कठपुतली का खेल डांस जो डांस होता है प्राय विलुप्त सा हो रहा है। गांव और शहर में मोहल्लों में ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं। सोसाइटीज और बड़े बड़े बंगला जो एरिया है उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। हम लोग के स्कूल में कठपुतली का खेल दिखाया जाता था, जैसे आपने बोला वो
0: बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि कहीं भी बच्चों के स्कूल में या आसपास के क्षेत्र में अगर कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है तो बच्चों को जरूर वहां लेकर जाएं, ताकि कल बच्चे भूल ना जाए कि कठपुतली नाम की कोई चीज होती है, कठपुतली का खेल कैसा होता है। और इसीलिए जागरूकता के लिए भी इस तरह के दिन भी मनाए जाते हैं। और जब ऐसे किसी कलाकार को पुरस्कार मिलता है तो उन्हें भी इस चीज के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: तो बात हम कर रहे थे खेलों के बारे में। आज जो खेल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, जो 11 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है हमें।
1: बहुत। और खेलना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी भी है। इसलिए खेल की रक्षा करने के लिए खेल को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इससे हमारा बचपन जो है बच्चों का वो बचा रहता है।
0: बिल्कुल। और खेल की रक्षा करने का मतलब होता है बचपन की सुरक्षा करना, ताकि हर जगह हर बच्चा खेलने का जो अधिकार है उसे पूरा कर सके। और परिवार में जिस सदस्य की खेल की तरफ रुचि ज्यादा होती है, मतलब सबकी तो नहीं होती ना, तो जिसकी रुचि ज्यादा है वो खेल के लिए प्रेरणा या खेल का समर्थक बन सकता है उन बच्चों के लिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े अंतर्मुखी होते हैं, ना तो वो लोगों से ज्यादा बात करना पसंद करते हैं ना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेरित करना बहुत जरूरी है।
1: जिस तरीके के खेल में उनको रुचि हो उस तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए। और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की बधाई दे रहे हैं, और कहते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के आदि हो गए हैं और खेलकूद से रक्त का संचार होता है, शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है, स्वस्थ रहता है। पुराने खेलकूद, छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांधकर झूलना सब लुप्त हो गए हैं। आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है और मोबाइल चलाना। खैर, हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है,
0: लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है, ताकि उनकी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक क्षमता है, टीम में खेलने का जो एक स्पिरिट है, ये सब चीजें बच्चों में आ सके। और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं आरती, इसका उद्देश्य भी यही है कि खेल की क्या शक्ति है इसे हम सब जाने, पहचाने और समझें। ये हर व्यक्ति को समझना है कि हर बच्चे के विकास के लिए और कल्याण के लिए खेलना कितना जरूरी है। और खेल दिवस जैसे आयोजन ये बातें समझने का हमें मौका देते हैं, और यही वो समय होता है आरती जब हम सब मिलकर ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर बच्चा खेलने के अधिकार का पूरा लाभ उठा सकता है।
1: बिल्कुल, और बहुत जरूरी भी है खेल के को महत्व देना। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हम जो बच्चे आजकल दिख रहे हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे भी जिम जा रहे हैं, तो उनको उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो खेलेंगे तो जो प्राकृतिक रूप से उनका विकास होगा।
0: और खेलने के लिए आपके पास बहुत सारी सामग्री हो ये भी जरूरी नहीं है। जैसे बचपन में जो हमने खेल खेले हैं, या हमारे बहुत सारे सुनने वालों ने भी खेले होंगे,
1: दौड़ भाग है, साइकिल चलाना है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम खेल के अपने को स्वस्थ रख सकते हैं।
0: लुका छिपी भी खेलते थे, और बस पत्थरों से कुछ टुकड़े जमा के सतोलिया बना के खेला, और कपड़े की, पुराने कपड़े की गेंद बना ली, उससे मारकर खेल रहे हैं।
1: बिल्कुल, बहुत से ऐसे खेल हैं और जिनको खेल के मतलब मन तो खुश रहता ही है ना, हम स्वस्थ भी रहते हैं। और जबकि मोबाइल हम लेके एक जगह बैठे हैं तो बस हम उसी जगह बैठे हुए पूरा दिन निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई दिन दुनिया की खबर नहीं रहती है। तो इससे क्या होता है ना, हम एक ही जगह बैठे रहते हैं तो रक्त संचार भी हमारा सही से हो नहीं पाता पूरे शरीर के अंदर, तो उसकी वजह से ना बच्चों का विकास बहुत ज्यादा अवरुद्ध भी होता है, और पूरे समय वो स्क्रीन पे लगे रहते हैं, उससे आंखों में हर तरह से उनको नुकसान नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है बाहर निकलना, बाहर निकलकर खेलना।
0: तो इस दिन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्थापित किया, ताकि इस अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनिसेफ और यूनेस्को खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इस दिन का आयोजन करते हैं, ताकि ये जो खेल की जो प्रक्रिया है बच्चों में चलती रहे। और हम एक गीत सुन लें, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे।

0: बच्चों के साथ मिलकर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जब खेल का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो बच्चों को खेलने में बड़ी रुचि रहती है। तो देखियो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, कि ये जो दिन है ये बताता है कि हमारे जीवन में खेल कितना जरूरी है। और हमारी ये श्रोता जो है वो कहना चाहती है कि अगर कोई बच्चा खेल की तरफ रुचि रहता है लेता है तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि खेल में कोई करियर है या नहीं है, बस खेलने के लिए उसको प्रेरित करना है। और आगे लिख रही है कि खेल हर चीज में हमें जीने का तरीका सिखाता है, इसीलिए सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। और खेल हार जीत में कैसे उभरना है इसका तरीका भी हमें सिखाता है, और इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि मेरे विचार से खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खेलों से शारीरिक मानसिक विकास होता है और हम सोशल मीडिया और मोबाइल से कुछ समय के लिए दूर रह पाते हैं। और मेरा मानना है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए यदि हमें अपने व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त निकालना पड़े तो जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते खेलते हम भी अपना बचपन फिर से जी लेते हैं। बहुत सही कहा इन्होंने,
0: बिल्कुल सही बात है। और इस साल जब ये खेल दिवस हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इसका विषय है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। और ये विषय हम सभी को और मतलब जो भी स्कूल हैं, परिवार हैं, व्यवसाय हैं, उनको ये याद दिलाता है कि खुशहाल और स्वस्थ बचपन खेल पर ही आधारित होते हैं। और खेल खेल में बच्चों को बहुत सारी चीजें दिखाई समझाई भी जा सकती है ना।
1: बिल्कुल, खेलते खेलते आप उनको पढ़ा भी सकते हैं जी, बहुत सी ऐसी तरीके की चीजें आप कर सकते हैं, ताकि अब उनको खेलने, अगर थोड़े समय भी वो मोबाइल से दूर रहेंगे ना तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे वो सीखेंगे।
0: बिल्कुल, रचनात्मकता, लचीलापन, सामाजिक कौशल, ये सारी चीजें बच्चों में विकसित करते हैं खेल। और जीवन भर सीखने की जो खुशहाल जीवन की नींव है इसे भी वो रखते हैं। और बहुत सारी जगहों पर बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनौपचारिक खेल के जो अवसर हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है वो कम है, अगर कहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है, हर बार बच्चे के साथ कोई जाएगी जरूरी नहीं हो पाता। तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा घर पर ही खेले, तो ये सुरक्षा भी अगर बच्चों के लिए दी जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड हर बगीचे में वहां होना चाहिए जो बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे। माता पिता में से कोई एक सदस्य तो जाता ही है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हो, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
1: और बच्चे सीखते हैं कि किस तरह हमें साथ मिलकर काम करना है, साथ मिलकर खेलना है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीजें खेल के जरिए ही आती हैं। जब वो साथ मिलकर खेलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनसे सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, है ना, ध्यान रखना सीखते हैं, बहुत।
0: अभी जैसे बारिश का जब मौसम आएगा, पेड़ों पर झूले पड़ेंगे, तो सब बच्चे एक साथ मिलकर झूलते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं अपने आप लंबी पेंग नहीं ले पाते हैं झूले की, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा सिखाते हैं झूला कैसे जाता है, उनके साथ बैठ कर, उनके साथ खड़े होकर, तो झूलना भी एक खेल हो गया। तो इस तरह से आप साथ लेकर कैसे चलेंगे ये भावना विकसित होती है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर यही कहना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है, खेल से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जब हम खेलते हैं तो सोशल मीडिया से हमारी दूरी बनी रहती है और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है।
0: और जब बात खेलने की आती है तो हमें किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का इंतजार ही क्यों करना है, बस हम जो भी हमारे मस्ती भरे पल हैं उन अवसरों की तलाश करें, और हल्की फुल्की जो गतिविधियां होती हैं हमारी हम उन्हें भी खेल में बदल सकते
1: हैं। और हमें रोज ही कम से कम इतना समय निकालना चाहिए और बच्चों के लिए भी इतना समय निकालना चाहिए कि उनके साथ हम खेल सकें, ना कि हम मोबाइल पे या उनके साथ में कुछ इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, बैठे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं या हम टीवी में लगे हुए हैं या मूवी देख रहे हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन एक इतना समय जरूर होना चाहिए हर दिन कि बच्चों के साथ बाहर खेला जाए। जो बाहर आप खेलते हैं ना उससे वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिव होता है, तो वो उससे उनके उनका विकास होता है, उनका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है।
0: बिल्कुल, जब बच्चों को धूप में जाने से रोकना है, बारिश में भीगने से रोकना है, ऐसा कोई मौसम की अगर समस्या है जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उस वक्त आप उन्हें चाहे कार्टून देखने में व्यस्त करिए या घर में कोई इंडोर गेम खिलवा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बच्चों के विकास की हम बात कर रहे हैं वो बाहर खेलने से ही होता है।
1: बिल्कुल, और थोड़ा बहुत भीग जाना भी जरूरी है कभी कभी।
0: भाई बारिश में नाव चलाना एक बड़ा अच्छा खेल होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो चलो गाना सुने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और देखिए, हम बात कर रहे थे बच्चों के खेल की। बच्चे खेलकर कितने खुश हो जाते हैं और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते।
1: नहीं,
0: अगर
1: नहीं।
0: वो खुश हैं तो खुशी दिखाई देगी, अगर वो किसी से नाराज हैं, गुस्सा है, तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती हैं आरती, कि खुश हैं या नहीं, कई बार सिर्फ दूसरे को हमारी तकलीफ का अंदाजा ना हो इसलिए हम खुश रहने का दिखावा भी करते हैं।
1: बिल्कुल, अक्सर ही होता है ऐसा कि दिखावा ज्यादा होता है, खुशी उतनी नहीं होती है।
0: खास तौर पर जब सोशल मीडिया की बात आती है तब ये दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज का दौर ऐसा है जहां बहुत से लोग वास्तव में खुश रहने से ज्यादा खुश दिखाने पर ध्यान देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराती तस्वीरें होती हैं, शानदार यात्राएं, महंगे सामान, चमकदार जीवन शैली को देखकर कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो सामने वाला है ना, ये सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति यही है और हमारे जीवन में कोई खुशी बतानी है भी कि नहीं। लेकिन अक्सर इन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है
1: उसको खुश देखने के बारे में साथ में आ जाते हैं जी। वो इतना खुश है हमसे, कहते हैं ना कि हमारे मतलब तुम्हारे उसके कपड़े हमारे कपड़े सफेद कैसे हो सकते हैं, तो वही चीज है, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है।
0: हाँ, तो उन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और जब जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है तब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं से थोड़ा दूर होने लग जाता है।
1: बिल्कुल, और हर कोई ये सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में सोचेंगे क्या, बजाय इसके कि उसे वास्तव में क्या अच्छा लगता है, कि उसे सचमुच उसे पसंद क्या है, वो क्या करता है, वो ये करने लगता है कि वो दूसरे क्या पसंद करेंगे, मुझे उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। तो परिणाम क्या होता है उसका, तुलना और तनाव, तुलना से क्या होता है, तनाव और असंतोष, क्योंकि उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है कि मैं सही लग रहा हूं या मैं सही हूं, वो सिर्फ दूसरों की नजर से खुद को देखने लगता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए अगर सच्ची खुशी आप चाहते हैं अपने जीवन में तो क्या करना है, जो लाइक्स और फॉलोअर्स हैं ये दिखावे से नहीं आती। आजकल इसी के पीछे बस सब भाग रहे हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट डाली है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जिसमें हम नजर आ रहे होते हैं तो वहां हमें बहुत सारे लाइक मिले।
1: बस आप क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं कितने लाइक्स हो गए,
0: वो लाइक कितने बढ़ गए,
1: वो उसी में लगे रहते हैं।
0: और बस इसी से हम है ना, तो ये अच्छे रिश्ते और आत्मसंतोष, स्वस्थ जीवन शैली और अपने काम में आनंद खोजने से मिलती है, इन चीजों से नहीं मिलती। ये चीज हमें समझनी है आरती। और व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है, अपनी खुशी का प्रमाण दुनिया को दिखाने की हमें जरूरत ही नहीं। क्यों हम सबूत दिखाएं कि हम खुश हैं, इस बात की हमें दिखावा करना ही क्यों है, बल्कि हमें ये समझना है कि कोई जीवन में प्रदर्शन नहीं चाहिए, बस जो वो अंदर हमारी खुशी है वो सबसे जरूरी है।
1: बिल्कुल, और सच्ची खुशी किसी भी दिखावे की तो मोहताज होती नहीं है कि हमें दिखाना पड़े कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कि कब हम हंस रहे हैं, कब हम रो रहे हैं, एक एक चीज को उस पर डालने की जरूरत भी नहीं है। तो वो चीजें होती हैं जो खुशी होती है ना, वो होती है छोटे छोटे पलों में। हम बहुत बड़े पलों का इंतजार करते रहते हैं ना, कि चलो ये त्योहार आएगा तो हम बहुत खुशी से ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो हम अभी क्यों नहीं खुश हो जाते।
0: बिल्कुल,
1: तो हर जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना, वो खो जाती है उसे इंतजार में कि बहुत बड़ा पल हमारे पास में आए।
0: और जो लोग खुशियों के लिए बहाने ढूंढते हैं ना, इस तरह से उनकी खुशियां जिंदगी में पूरी कभी नहीं होती। ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे मिलेंगे तब खुश, यहां जाएंगे तब खुश होंगे, इसके ये आएगा तब खुश होंगे, ये तो सिर्फ एक बहाने हैं। लेकिन वो खुशी छोटे छोटे पलों में, जैसा आप बता रही हैं,
1: जीवन है कोई ऐसा मंच नहीं है कि हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए। भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नजर से नहीं जीना, हमें अपनी नजर से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं। जब हम असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और संतुष्टि होती है, लेकिन जब खुश होने का हम दिखावा करते हैं तो चेहरा तो मुस्कुराता है पर कंधे थके हुए होते हैं। दिन भर लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है पर रात को हम तकिया भी खोते हैं। कभी कभी गिरकर संभलने में थोड़ा दिखावा ही सहारा बनता है, पर दिखावा ही अगर जिंदगी बन जाए तो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है, जो सच में हंसता था। लेकिन दिखावा वहीं तक सही है जहां तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े। ये इतना प्यारा संदेश है और हम श्रोता ने जिसने भी लिखकर भेजा उसे बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है। ऐसा ही कुछ हम सबके साथ में होता है, क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी ना कभी दिखावा करना ही पड़ता है, क्या करें। लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज्यादा ही दिखावा करते हैं खुश रहने का, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। खुश रहने का एक उपाय है, वो बताते हैं वो, कि सबकी करो, और मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की, क्योंकि मन से किए गए काम खुश करते हैं।
0: तो चलिए अभी हमें खुश करेगा और हमारे सभी सुनने वालों को खुश करेगा ये प्यारा सा गाना।

0: बहुत मीठा, बहुत सुरीला गीत हमने सुना और इसके बाद हम लौटते हैं अपने विषय पर. हम बात कर रहे थे खुश रहना और खुशी का दिखावा करना. जी
1: बिल्कुल. और वैसे भी चंचल, अपनी खुशियों को महसूस करना, उन्हें जीना और उनके लिए आभारी होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम उन्हें केवल प्रदर्शित करते रहें. क्योंकि खुश रहने और खुश दिखने में बहुत अंतर होता है. खुश दिखने के लिए मुखौटा लगा सकते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें मन का संतुलन बहुत जरूरी होता है और हमारे अंदर संतोष होना चाहिए. जैसे कि हाँ, हमें जो भी चीज है हम खुश हैं इसमें, वो चीज होनी चाहिए.
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सामने वाला व्यक्ति है, वो बात बात पर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को और खुशी को आप ज्यादा उजागर करके लेकर आइए, अपने सकारात्मक भाव को लेकर आइए, तो सामने वाले के जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगे.
1: बिल्कुल.
0: और देखिए, अब मैं एक अच्छा सा संदेश पढ़कर आपको सुनाती हूँ. हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना या खुशी का दिखावा करना, दोनों पहलू शामिल हो चुके हैं. सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर अपनी परफेक्ट तस्वीरों को और स्टेटस के जरिए अपनी खुशियों का दिखावा करने में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, जबकि असल जिंदगी उनकी कुछ और ही होती है. जो अलग अलग सोशल मीडिया के साइट्स हैं, वहां पर अपने स्टेटस, अपना घर, अपने कपड़े, आउटिंग की फोटो डालकर बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं और कितने कामयाब हैं. और इस बेहतरीन दिखने की वहां पर होड़ सी मची हुई है. खुशी मांगे जो हो और मांगे सामानों से महंगे पलों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है, शांति में होती है, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में छिपी होती है. बहुत सही बात लिखी है.
1: बहुत सही बात. और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना और खुश रहने का दिखावा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है. असल में खुशी आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है, जबकि जो दिखावा होता है वो सिर्फ एक मुखौटे की तरह होता है, जिसमें सामने वाले को प्रभावित करते हुए अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाना होता है और कुछ नहीं. क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे. कुछ लाइन्स उन्होंने भेजी है गाने की,
0: और इस गाने के माध्यम से इस बात को बहुत सटीक तरीके से समझा जा सकता है.
1: बिल्कुल.
0: एक आगे के संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि आज के समय में लोग अपनी खुशी से ज्यादा उसकी नुमाइश करने में व्यस्त दिखाई देते हैं. सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शन है उसके बारे में इन्होंने भी लिखा है, और आगे लिखते हैं कि दिखावा कुछ समय के लिए ही प्रभावित कर सकता है, लेकिन मन का संतोष, मन की शांति कभी नहीं दे सकता. रिश्तों में अपनापन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर है तो चेहरे पर मुस्कान खुली रहती है और यही सच्ची खुशी है.
1: बिल्कुल. एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश दिखना नहीं है बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वास्तविक खुशी मन को संतोष और जीवन को अर्थ देती है. जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीना सीख जाता है, तब उसे खुशी का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, उसका जीवन ही खुशी का प्रमाण बन जाता है. बहुत सही बात कही उन्होंने.
0: एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा संदेश है कि जीवन में दिखावे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि खुश दिखना अब खुश रहने से ज्यादा आवश्यक हो गया है. जहां वास्तविक खुशी मन की शांति और संतुष्टि देती है, वहीं दिखावा ऊर्जा को खत्म करता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है.
1: बिल्कुल
0: सही बात है.
1: बिल्कुल. एक श्रोता लिखते हैं कि खुश रहना और खुश दिखना ये दो अलग यात्राएं हैं. खुश रहना भीतर का अनुभव है, ये सस्ता है क्योंकि इसका लेन देन बाहर की दुनिया से नहीं भीतर से होता है, लेकिन खुश दिखना दिखावे की दुनिया का खेल है. ये सब महंगा है, जेब से, दिल से, शांति से भी. असल में कठिनाई खुश रहने की नहीं, खुश दिखने की मजबूरी छोड़ने में है. सुख हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहरी चमक सिर्फ एक नकली रोशनी है. बहुत बहुत गहरी बात कही है इन्होंने.
0: और भी संदेश है.
1: तो एक और जमाइश होता है जो कहते हैं कि भाई दुनिया तो दिखावटी तो है ही, अपितु उसके पोषक भी है. फिर खुश रहना चाहते तो सभी हैं, क्योंकि वो आनंद के सच्चित स्वरूपांश हैं, किंतु खुद में खुश रहना एक कला है. और खुशी का दिखावा करते रहने वालों में अक्सर इसका अभाव ही देखा जाता है, क्योंकि वस्तुतः वो खुशी प्राप्त करने की कला को अपने दिखावेपन के माध्यम से सीख रहे होते हैं.
0: ऐसी बहुत से मिलती जुलती बातें हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी है. कुछ संदेश जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं और सुनते हैं ये वाला गीत.

0: आरती हम बात कर रहे थे ना खुशी रहने के, खुश रहने के बारे में और उसका दिखावा करने के बारे में, एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है, खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को, जो सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है। दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक रोशन रखती है, इसीलिए खुश दिखने से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक और छोटी सी बात ये आगे लिखते हैं, जिंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारा मन सचमुच खुश हो।
1: बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। और इसी के साथ एक और महेश होता है, वो लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुशी रहना चाहिए, खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते, दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई की श्रोता, जिसे मैं स्वयं भी हूं, अगर कभी किसी कारण से दुखी भी हूं तो आप सभी की शानदार जो सदाबहार प्रस्तुति होती है और लाजवाब गीत होते हैं उनको सुनकर हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है, तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
0: बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे। और जब बात सुनने की आ रही है तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है,
1: बहुत जरूरी।
0: और इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है और ना केवल सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है, इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। और कानों में इसलिए क्या करना है, हमें कभी भी कोई नुकीली चीज या माचिस की तीरी, जैसे अक्सर हम ना कुछ नहीं तो अरे कान में खुजली हो रही तो बस माचिस की तीरी लेके करने लगे तो वो बहुत खतरनाक।
0: और महिलाएं हेयर पिन घुमाती
1: हैं, हेयर पिन, चाबी लेता, कोई कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी कभी बने हुए होते हैं तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो, तो कभी इस तरीके की चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। और लंबे समय तक हमें तेज संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना बहुत समय तक, ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज आवाज आ रही हो जहाँ पे, उसमें भी रहने से, क्योंकि एक वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे रहता है ना जो हमारे कानों की होती है, वो एक लिमिटेड होती है, उससे ज्यादा हम अगर शोर में रहेंगे तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाएगा।
0: देखो जिस तरह से आंखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आंखों में जो नमी है वो अपने आप आंख उसे निकालकर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है, जो मोम जैसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है। कई बार उसे जबरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं। तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें, जो चाबी नुकीली चीजें, हेयर पिन, इनका तो कभी ना करें,
1: इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करें, बल्कि अपने आप जितना आपका ये कहते हैं ना, जितनी आपकी उंगली जो आपके हो सके जा सके उस हिसाब से आप करिए, वो सब चीजें प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि पुराने जो होते हैं वो बड्स, उसमें वो फंगस भी होती है तो वो अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है, इसलिए ये सब चीजें आप ना प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज ये है कि अपने कानों का बहुत ध्यान रखिए, और जो ईयरफोन वगैरह रहता है ना उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए, क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कि कानों में तेज आवाज सुनाई दे रही है, मतलब हर समय 24 घंटे एक आवाज ही आती रहती है, तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं, तो अब बहुत ज्यादा घंटों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुंचाएगा ही,
0: क्योंकि जब इस चीज का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान पर मोबाइल लगा के रखने से, बात करने से मोबाइल के जो गर्म होता है वो हीट हमें नुकसान करती है, तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फोन नहीं लगाना है तो बहुत देर तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज आवाज में, तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही। एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज या अन्य कोई आपको आवाज भी दे रहा है तो आपका जरूरी काम छूट सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है, तो ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम करना है।
1: और सबसे बड़ी चीज है, आप अगर आपको सुन ही रहे हैं, उसको बहुत जरूरी है आपको कान में लगाना, तो आप 50 उसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 से ऊपर मत करिए, बहुत ज्यादा फुल साउंड में मत सुनिए उस चीज को कि आपको बाकी आवाजें ना आए। और दूसरी चीज, अपने एक कान में ही लगाइए, अगर आप बाहर जा रहे हैं उसको लगाएं, एक कान में लगाइए, आप ये करिए ना, एक कान में लगा लिया, थोड़ी देर आपने दूसरे कान में लगाया, इससे क्या होता है ना कान आपका ऐसे पर्दे पे उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो खराब नहीं होगा। और साथ ही अगर आपकी बहुत ज्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, रहिए कृपया करके, अपने आप को ही दवाई मत करिए। कई लोग होते ना कि कोशमली चलो ये डाल लें, ये वाला तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें, तो वो चीज आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए। आप विशेषज्ञ से के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए, उन्हें बताइए जो भी चीजें, तो वो उसका पूरा एग्जामिन करें, उससे उसकी जांच करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जांच होती है वो भी जरूर करवाइए।
0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं, साफ तौलिए से कोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है आरती। आगे लिखते हैं कि तैरते समय पानी को अंदर जाने से रोकें, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाएं, डॉक्टरी सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज ना डालें, पानी को झुकाकर अगर चला गया है तो उसे बाहर निकाल दें, और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुकाकर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

समाचार अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य का पक्ष रखा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में पिछले 12 वर्षों में देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग का अभूतपूर्व विकास हुआ है। श्री मरांडी ने कहा कि केंद्र को भी झारखंड को भी केंद्र सरकार की ओर से देवघर एम्स, हवाई अड्डा, वंदे भारत ट्रेन, विभिन्न सड़क परियोजनाओं और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं की सौगात मिली है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में नाम वापसी की समय सीमा खत्म हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और

0: अधिकारियों की तैनाती की गई है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम।
2: सुनना चाहते हैं खेलों के बारे में। अपने बचपन की ओर लौटिए और बताइए बचपन में कौन सा खेल खेलते थे आप अपने दोस्तों के साथ?
3: सबसे ज्यादा हम लोग गेंदे जो मैच होते हैं वो ज्यादा खेलना पसंद करते थे। गेंदा जैसे बैट बल्ला है वो हम लोग जब कभी भी स्कूल से आते थे वो अक्सर हम लोग खेल खेला करते थे। बहुत अच्छा लगता था वो खेल खेलने में, खेल बहुत अच्छा होता था उस टाइम का।
2: कभी बिल्कुल घर में बताते हो अपने बच्चों को या अपने घर में जो परिवार के अन्य सदस्य उनके बच्चे हैं, कभी बात होती है इस खेल के बारे में?
3: बिल्कुल होती है मैम। आज के समय में क्या हो गया है, लोग सबसे ज्यादा मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं ये तकनीक, इसी वजह से लोग कोई अभी तक कोई खेल ये जानते ही नहीं है आज के लोग। लेकिन हमारा तो यही कहना है सभी लोगों से कि मोबाइल से ज्यादा अगर कोई ऐसा खेल खेला जाए तो ज्यादा ही कुछ अच्छा होता है।
2: बिल्कुल। तो चलिए आपसे अच्छी बातचीत हो गई है, अब बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
3: चमत्कार फिल्म का नाम है और गाने का बोल है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
2: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। नाम बताइए अपना।
1: जलाल अहमद
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो मैडम?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: मुझे एक गाने की फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, हम आपको गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें कीजिए हमारे साथ। कैसे हैं, क्या करते हैं आप कश्मीर में?
1: जी हम शॉल काम करते हैं।
0: किस तरह का? पश्मीना शॉल?
1: हाँ, पश्मीना हम बनाते हैं।
0: उसके बारे में बताइए थोड़ा हमको, क्या खासियत है पश्मीना शॉल की, लोग क्यों पसंद करते हैं शॉल को?
1: कश्मीरी शॉल तो बहुत पसंद है, बाहर स्टेट में भी वो जाते हैं, वहाँ भी पसंद करते हैं लोग, यहाँ भी। यहाँ तो बहुत इसके कारीगर है, हाथों से बनाते हैं हम, वो बहुत मेहनत उस पे लगते हैं, तो बहुत बढ़िया बनते हैं मैडम।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर होते हैं और गर्म भी होते हैं, है ना?
1: जी, इसका मुख्तलिफ साइज है।
0: चलिए बताइए हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं।
1: फिल्म है।

0: थी उसका कुमार सानू गा रहे हैं, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
1: बहुत गहरा गीत है ये तो, है ना?
0: हाँ, बहुत
1: सुंदर गाया है कुमार सानू ने, और बहुत ही सुंदर इसके जो शब्द हैं बहुत ही सुंदर है, गहरे शब्द हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: फैसल इमाम।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं फैजल साहब?
1: मैम अच्छा हूँ मैं, आप कैसी हैं? ठीक हैं?
0: बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं यूडीसी पोस्ट पे हूँ, डिवीजन क्लर्क पे हूँ कॉलेज में।
0: तो नौकरी के साथ साथ विविध भारती को भी सुनना पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती तो बचपन से, ये सौगात तो मेरी मम्मी से मिला, सुनते आ रहे थे और कई बार पहले भी बात हुई है विविध भारती में।
0: अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे, खेलते होंगे बहुत सारे खेल?
1: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है मारा।
0: कैसे खेलते थे, कितने रन बनाए, बताइए अपने बारे में, क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी?
1: क्रिकेट की दुनिया बहुत अच्छी थी, हम तो ज्यादातर बैटिंग करते थे, बॉलिंग दोनों थे। बचपन में तो खैर बहुत कम ही खेल पाते हैं।
0: अब तो नहीं खेलना होता है ना?
1: अब खेलना होता है, सुबह सुबह फुटबॉल खेल लेते हैं।
0: अच्छा,
1: खेलने का मौका नहीं मिल पाता है।
0: अच्छा, तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय?
1: अरे तो टारगेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं।
0: अरे वाह क्या बात है, तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा?
1: महीने तो ज्यादा ज्यादा 70-80 बनाए हैं।
0: कभी सेंचुरी नहीं बना पाए?
1: बनाना था वो तो खैर, क्रिकेट हम लोग खेलते थे 10 ओवर 20 ओवर से ज्यादातर करता नहीं था हम लोग उस टाइम में। ये है कि फुटबॉल में बहुत गोल किया मैंने।
0: अच्छा अच्छा, तो
1: मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फुटबॉल खेला।
0: बहुत अच्छी बात, बताइए क्या?
1: खेलने की बहुत चाहत थी, फिर जिम्मेदारी हमारी गुजर गए, जिम्मेदारी घर के आ गई तो सब चीज से छोड़ना पड़ा।
0: ये होता ही है जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां कई बार हमको रोक देती हैं वो काम करने के लिए और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आपकी सफाई फिल्म का गाना है वादा कर ले साजना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: वादा

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, MP से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है बहुत बहुत अरुण साहब।
1: जी और आप कैसी हो?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी जी, और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो अभी गर्मी है भाई, बहुत उमस है।
1: जी जी।
0: पसीना आता है।
1: जी।
0: परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी जी।
0: बताइए अरुण साहब, अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?

0: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
1: क्या बात है, क्या बात है। आज तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं। आपने तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है।
0: कबड्डी का हर चीज का शौक है, लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है कमेंट्री सुनते हैं।
1: तो कभी बचपन में गांवों में खेला तो होगा आपने, ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं हमारे, ग्रामीण खेल।
0: नहीं, ग्रामीण में तो खेले हैं बचपन में, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूत रंजा, टीप टीप, चोर सिपाही, हर चीज खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
1: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली? आप कह रहे हैं फुटबॉल भी।
0: गिल्ली डंडा खेले हैं, अंटी भी हर चीज खेली है हमने।
1: अंटी क्या होता है?
0: अंटी वगैरह खेलते हैं ना, अंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, छाटते हैं उसको, उंगली से मिलाते हैं, उसको मारते हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: जी,
1: तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत।
0: अंदाज का सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
1: अरे वाह, क्या बात है, अभी तो बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा।
0: जी जी, लेकिन बरसात तो आने वाली है, कम कम तो बारिश भी हो रही है।
1: बिल्कुल सही कहा, कई जगह बारिश हो रही है, तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं उस बारिश का आपके गीत के।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
0: मांगीलाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं।
1: जी, काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
0: अरे, खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार आपने प्रयास किया होगा।
1: जी जी,
0: कैसा लग रहा है अब आपको जब आपकी कॉल लग गई है तो?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और कार्यक्रम में मनचाह गीत सुनता हूँ।
0: मनचाह गीत के लिए खत लिख रहे हैं हमें?
1: जी जी, भेजे हैं।
0: ठीक है।
1: और हेलो सहेली सुनता हूँ, साथी सहेली सुनता हूँ, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है मांगीलाल जी। और क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मैं किसान हूँ।
0: मौसम भी अभी आपके अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ, खेती बाड़ी के अनुकूल?
1: अभी नहीं, 25 तारीख तक बारिश आ जाएगी।
0: यानी इंतजार है, सब कुछ अच्छा होगा ना?
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, हम थोड़ा सा आज अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे हैं कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, क्या उन्हें याद है कि वो खेल खेला करते थे अपने ग्रामीण इलाकों में? हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम सभी खेला करते थे, आपको याद है कोई ऐसा खेल जो आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला है?
1: जी मैम, मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
0: अरे, बैटिंग करते हैं या बॉलिंग?
1: बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
0: क्या बात है, हरफन मौला है फिर तो आप।
1: जी
0: तो सबसे ज्यादा कितने लिए आपने, विकेट कितने लिए हैं बॉलिंग में?
1: विकेट जो मिल जाते हैं जो ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
0: अरे, फिर तो आप मैन ऑफ द मैच हो गए।
1: जी जी मैम, बहुत शौकीन है मैं, रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: आज मुझे खुदा गावा फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, आपको याद करूं पिछड़ा याद मिला दे वो रब्बा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद रफीक, नागपुर कुतुब शाह नगर नागपुर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया मैडम, आप कैसे
0: हैं? हम भी बढ़िया हैं। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम, मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, घर में छोटी दुकान है, किराना वही चलाता हूँ मैडम।
0: अच्छा एक बात बताइए, दिन भर तो आप किराने की दुकान में काम करते हैं है ना, तो कभी रेडियो के लिए समय तो निकालते ही हैं, विविध भारती के लिए समय निकालते हैं आप?
1: हाँ इससे तो पुराना रिश्ता है मैडम मेरा रेडियो से।
0: तो खेल में रुचि है आपकी?
1: स्कूल में मैडम फुटबॉल खेलते थे मैडम, हम लोग कबड्डी चलता था मैडम।
0: अच्छा कैसे खेलते थे, अच्छा लगता था, गोल कर पाते थे?

0: यार तो मुझे गोलकी बनाते थे कि हाइट ऊंची थी ना।
1: हम आज ना अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें बचपन की ओर लौटाएं तो उन्हें क्या याद आता है कि क्या वो खेला करते थे। हम जब छोटे थे कितना खेल खेला करते थे ना।
0: हाँ मैडम सही बात है, तो बचपन होता ही है बेफिक्री का रहता है मैडम, जवानी तक बुढ़ापा ही कठिन जाता है मैडम, बचपन और जवानी अच्छी रहती है मैडम।
1: हाँ जब आप युवावस्था में आए तब भी आपका ये खेल जारी था फुटबॉल का या फिर काम में लग गए?
0: हाँ मैडम क्या बोलते सरकारी जॉब लगा था पार्टी में ही था, जब जॉब लग गया था मतलब सरकारी महाराष्ट्र साधन का, लेकिन मैंने फिर 2.5 महीने छोड़ दिया, यानी 2 महीने छुट्टी के लिए किया था मैंने जब खर्चे के लिए।
1: अच्छा छोड़ा क्यों
0: मैडम? क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाई करना था मैडम, उस जमाने में 10वीं पास करना लोहे के चने जमाने जैसा था।
1: हाँ,
0: पहले से 10वीं तक पढ़ाई किया हूँ, बिगर ट्यूशन से पास हुआ हूँ।
1: अरे
0: मैंने कसम खाया था कि मैं 10वीं पास होकर दिखाऊंगा, चैलेंज दिया था दो भाइयों ने।
1: क्या
0: आगे पढ़ना नहीं था 10वीं पास करके, क्योंकि उस फ्रेंड में तो 10वीं बहुत काफी था उस जमाने के साथ।
1: बहुत अच्छी बात है कि आपने जज्बा रखा ना पढ़ाई का, और आज आप अपना घर चला रहे हैं दुकान के जरिए।
0: जी मैडम।
1: तो बताइए अब कौन सा गाना सुनेंगे आप?
0: झुक गया आसमान मैडम, कौन है जो सपना में आया है, कौन है जो दिल में समाया है, जो झुक गया आसमान भी इसको मेरा
1: रंग लाया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: कौन है जो

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 4:30 हुए हैं। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छिपी होती एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविन्द्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
0: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
2: जी
0: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
0: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
0: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
0: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
0: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
0: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
2: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
0: तो श्रोताओं, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
2: जी
0: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार।
2: जी
0: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
2: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
0: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
2: जी
0: तो श्रोताओ, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
2: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
0: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
2: जी
0: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
2: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
0: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
2: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओं, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं

0: आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
0: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
2: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी

0: विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला रामकृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूं कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: रामकृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
0: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
1: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
0: हाँ?
1: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
0: और ब्रह्मचर्य?
1: रामकृपाल
0: जी,
1: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
0: जी,
1: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
0: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
0: जी,
1: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
0: जी हाँ,
1: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा सात वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
0: बिल्कुल ठीक।
1: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
0: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा।
1: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
0: जी,
1: अब सवाल यह है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसके अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी छह इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
0: छह इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो पांच ही इंद्रियां हैं।
1: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये पांचों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
0: जी,
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
0: जी हाँ,
1: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जैसे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
0: जी बिल्कुल।
1: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय

0: प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

पैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से, बस कुछ ही देर में।

0: का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया और विकास तथा जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में 18 जून को मतदान होगा। नाम वापसी के अंतिम दिन आज कोई भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला तय है। रांची के नगड़ी मौजा में प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने आज विरोध मार्च निकाला। ग्रामीणों की योजना मुख्यमंत्री आवास घेरने की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें मोराबादी में रोक दिया। राजधानी रांची समेत राज्यभर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी कड़ी में देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक महिला समेत 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों के पास से 76 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर, 63,000 रूपये नकद और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। और मौसम विभाग के तात्कालिक पूर्वानुमान के मुताबिक रांची समेत 16 जिलों में अगले कुछ

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुने वाले सभी किसान भाई बहन के कार्यक्रम में स्वागत करो। ये साथी जोहार प्रणाम। और आज हमारे साथी तीन यशमिंदर भाई, तो तोहरो जोहार प्रणाम।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुने वाले सभी किसान भाई बहन के मापन से जोहार प्रणाम करो जन। और कार्यक्रम में शामिल संतोष भाई तोहरो भी हम जोहार।
0: बिल्कुल। और देखा कि इस कार्यक्रम में जब भी आओ तो नवा नवा जानकारी लाओ ताकि किसान भाई बहन के हर प्रकार के जानकारी देवे। और अपन पास पेन कॉपी जरूर रखते हैं और जो भी जरूरी बात हमने बतेबे ओकरा जरूर नोट करते हैं, क्योंकि कार्यक्रम बहुत सारा चीज हमने लावो है। जैसे कि हो गलो समय समय पर कोई विशेषज्ञ की जानकारी रहो है, साथ ही कोई अनुभवी जो किसान हो थी ओकर भी जानकारी हमने लावो है, साथ ही ऐसा चर्चा करो जेकर से किसान भाई बहन के लाभ मिल सकते।
1: और समय समय पर जो भी किसान भाई बहन खेती करो थीन ओकर जानकारी हमने रेडियो के माध्यम से दी है संतोष भाई। तो सबसे पहले हम बातचीत करवाए, आरंभिक चर्चा करवे हमें कि मॉनसून के आगमन करीब करीब आवे के संकेत मिल गला है, तो एक पहले किसान भाई बहन कौन चीज की तैयारी करती और कैसे अपन खेती बाड़ी में सजग रहते हैं। तो सबसे पहले हम बता दीजिए कि मॉनसून के आगमन से पहले खेत की तैयारी किसान भाई बहन खरीफ सीजन में जैसे गहरी जुताई और मजबूत मेड़बंदी, जल निकासी के व्यवस्था और जैविक खाद के उपयोग एकर में जैसे शामिल है संतोष भाई। इसे कहे के मतलब है कि अब हम इनके जो भी हम मक्का या धान के जो हम खेती करवाए तो खरीफ फसल में आवो है, तो एक पूर्ण रूप से किसान भाई बहन व्यवस्था करते हैं, चाहे वो मेड़बंदी हो या कहीं उनका जैसे कहा है कि अगर बहुत कस के अगर पानी आ गलो तो अगर आर मेड़ अगर वो ना ठीक से करो थीन तो उनका नुकसान हो जाते। इसीलिए जैसे गहरी जुताई करके और मजबूत मेड़बंदी हम करे के यहाँ से हम कह लिये किसान भाई बहन के तैयार रह ले। दूसरी बात का है कि मानसून के आगमन से पहले किसान भाई बहन के जैसे कम से कम कुछ ऐसा व्यवस्था बनावे को उनका चाहिए ताकि जैसे उनका परेशानी ना हो। जैसे हो वो कहा है कि किसान भाई बहन के पास अभी मौसम हो कि अभी 15-20 दिन के बाद खेत के जुताई कर रथिन और बिहन की तैयारी कर रथिन, पर कहा है कि अगर उस समय अगर चाहतीन किसान भाई बहन कि हम अपन खेती बाड़ी में हल बैल ले जाइए ट्रैक्टर ले जाइए तो वो ना हो पाते, उनका खातिर व्यवस्था करे पड़ते कि कम से कम तब तक जो है से अभी अगर समय समय पर तो पानी पड़ ही जा रहा है तो खेत में नमी भी होते तो उनका जो है से किसान भाई बहन अपन खेत की गहरी जुताई कर रथिन। ओकर बात का है कि बारिश शुरू हो के पहले जो है से मिट्टी पलटे वाला हल से खेती के खेत के हर हाल में जुताई करना बहुत जरूरी है।
0: सही बोला। देखा कि खेत के जुताई करे से ही फायदा हुआ कि जो माटी हो नरम हो जाए और जो खर पतवार हो का हो नष्ट हो जाए। दूसरी बात की हो खेत में गोबर खाद या कंपोस्ट खाद डाल दिए चाहिए, ओकर से का वो मिट्टी में जो उर्वरक हो बढ़ जाए और जो पौधा हो है वो मजबूत हो जाए। और एक बात और खास ध्यान दिए चाहिए कि खेत के जो मेड़ ठीक कर लिए चाहिए, ओकर से का जो बरखा जो पानी जो खेत में जो इधर तक बह जाए वो का वो मेड़ ओकरा रोक ले, ये सब व्यवस्था पहले से कर लिए चाहिए। ओकर से का होते जे भी हमने फसल लेगे वह सुरक्षित रहता अच्छा फसल।
1: किसान भाई बहन अगर खेत का जुताई करथिन है करथिन, जब तक अपन मेड़ के मजबूती ना करोथिन तब तक उनका जुताई करे से कोई फायदा न है। इसलिए कि जोत तो हो जाते जरूर, पर कहा है कि जो में पानी संचय रखना है पानी की जमा हमारा रखना है वो पानी उनके पास ना रुक सको है। दूसरी बात का है कि संतोष भाई कि जो मेड़बंदी जो करथिन किसान भाई बहन जल निकासी करथिन, जिससे मेड़बंदी करे के उनका दो कारण हुआ। सबसे पहले कहा आप मेड़ के मजबूत करथिन और मेड़ के मजबूत करे के मतलब है कि उनका कम से कम अच्छी तरह से एक तरफ मेड़ ढाल करथिन खेत के ताकि जैसे उनका खेत के पानी जैसे किनारे से निकल जाए। एक में कहा है कि खेत के चारों तरफ जो मजबूत मेड़ हुआ है ओका में अच्छा तरह से निर्माण करे चाहिए, अच्छा तरह से किसान भाई बहन के मजबूत से बांधे के चाहिए ताकि कहा है कि मिट्टी और पानी के ओकर में रुकाव हो सको है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से विशेष ध्यान दिए चाहिए अपन किसान भाई बहन के, क्या की देखा कि बहुत ही मेहनत लगो और पैसा लगो और थोड़ा सा और सावधानी अगर हमें बरत देवे तो कहीं कहीं जाकर

0: के नुकसान हो सको, तो किसान भाई बहन के यही कहल चाहब है कि इस सब पर विशेष ध्यान देती ताकि के लाभ मिल सके।
1: एक चीज और मैं कहा है संतोष भाई ध्यान देवे पर तो कि मिट्टी के जांच और जो उर्वरा जो हुआ है उसका प्रयोग किसान भाई कैसे करते हैं, जैसे जब हम इन समय हम इन बराबर रेडियो के माध्यम से हमें संदेश भेजते रहिए कि किसान भाई अपन जैसे मिट्टी जांच कर रहे थे इनके जमीन के बाद जहां खेती करो थी उनका जांच बहुत सुलभ तरीके से करा सको थी, पर कहा है कि अब जो है 15 से 20 दिन में मानसून के जब आगमन हो ही चल रहा है 15 दिन में तो किसान भाई के पास अब समय न कि मिट्टी जांच कराओ पा रहा थी, कहे उनके पास समय बहुत मिल रहा है, लेकिन कहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर किसान भाई बहन के जे उनका रिपोर्ट रहते खेत में का उनका उर्वरा शक्ति है नाइट्रोजन है कि नहीं, तो उस हिसाब से उनके पास गोबर खाद के भी ओकर में कंपोस्ट खाद के भी ओकर में उपयोग कर सको थे किसान भाई बहन। दूसरा बात का है कि जे इनके पास बीज के जो व्यवस्था किसान भाई बहन के पास है तो कहा है कि बुआई के खातिर जो है से एक अच्छा गुणवत्ता वाला इनका बीज लवेक चाहिए, लवेक चाहिए कहाँ जैसे अगर संभव कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी ले सको थी या न तो किसान भाई बहन के अगर विश्वासी जो बीज भंडार है जो पंजीकृत है वहां से बीज ले सको थे ताकि उनके पास कहा है कि कोई भी बीज जैसे किसान के न ठके, जिससे कहा है कि हम जाके वहां बीज ले लिए पर कहा है कि ले ले बाद हम तो पूर्ण रूप से विश्वास कर लिए बीज भंडार पर, लेकिन अगर हमारा गलत तरीके से अगर बीज देते हमारा पूरा जो 4 महीना 5 महीना का जो धान के जो उपज हुआ है वो 1 साल के हम कर सके ओकरा पूरा बर्बाद हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो देखा इसी प्रकार हमने और भी चर्चा हमने करबे किसान भाई बहन के तो कहीं ने जेथिन और अभी सुनो ये हमने एक जरूरी संदेश होकर बाद हमने चर्चा के आगे बढ़ेबे।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: पुतला बोल रहा
2: है, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी हाँ? माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी, तो पहली वाली बात कहा
3: परम तो सभी डाले
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है
2: एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई मैं भी आज तो जल्दी खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: तो देखा कि जो भी संदेश सुन ली अब हम बातचीत करबे कि देखा कि गाय और भैंस में कृत्रिम गर्भाधान करल जा रहा है ओकर से देखा कि एक प्रकार से आधुनिक वैज्ञानिक प्रक्रिया हो गई है जकर जरिए कहबे कि उत्तम नस्ल के जो सांड हो है ओकर वीर विशेषज्ञ के मदद से मादा पशु के गर्भाशय में डालल जाए जकर से कहबे कि दूध उत्पादन बढ़ावे में बेहतर नस्ल तैयार करे में और बीमारी से बचावे खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी बन रहा है।
1: सही बात कहला संतोष भाई तू कि किसान भाई बहन जैसे गाय भैंस रख रहे थे उनके पास कहा है कि नस्ल सुधार करे के बहुत अच्छा मौका भी रहा है और हम इन ग्रामीण क्षेत्र से भी देखो ये संतोष भाई कि किसान भाई बहन पास इतना जरूर ललायत रो थी कि हम कृत्रिम गर्भाधान ही करिए ताकि जो है उनके पास अच्छा अच्छा नस्ल आ सके, तो एक में कहा है कि गाय और भैंस के कृत्रिम गर्भाधान किसान भाई बहन कराओ थी एक में कहा है कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है संतोष भाई एक में कहा है कि एक उत्तम नस्ल जी है के कम से कम पशु जो कराओ थे से होकर मैं अच्छा अगर कह जा सको कि तू एक बार अगर देहाती नस्ल देहाती गाय या भैंस में तू अगर करेला तो फर्स्ट बार में जो आवे पहले बार में जो आवे होकर में वो थोड़ा कुछ चेंज होता है, लेकिन जब तू बाछी अगर होकर में आ गलो और फिर अगर तू पुनः होकर में बाछी तैयार होकर बाद तू अगर नस्ल सुधार होकर में करा हुआ है तो बेहतरीन तरीके से जो है नस्ल सुधार में कोई अच्छा किस्म के होकर में नस्ल आ जित हो।
0: बिल्कुल, और अगर मैं एक बात और है कि देखा कि जे सांड पाले पड़ते हैं ओकरे खर से मुक्ति हो सको है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: बहुत जगह सांड के पालल जाए कैसे जाके वहां से अपन वीर प्राप्त करके ऊपर मुझे जिस प्रकार मादा पशु में डालल जाए इस सबसे भी बचाव होता है और सबसे बड़ी बात है कि जे दूध उत्पादन में जो वृद्धि हो है फिर सबसे बड़ी बात है कि संक्रामण रोगों से भी बचाव हो है तो बहुत सारा फायदा है जो कि आज के समय में गाय और भैंस में कृत्रिम गर्भाधान जब वैज्ञानिक पद्धति से करल जा रहा है वो बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है और हर किसान भाई बहन चाह रहे थे कि हम अच्छा नस्ल के गाय भैंस पालिए, तो एक बहुत बड़ा उपाय है जकरा करके हमने के किसान भाई बहन अच्छा नस्ल
1: एक में कहा है संतोष भाई कि अगर किसान भाई बहन अगर अपन पशु के नस्ल सुधार अगर कराओ थे तो इनका माध्यम से कहा होता है कि कम से कम जो दूर दराज के क्षेत्र है कम से कम अच्छा गुणवत्ता वाला जे जैसे बताया कि सांड जो है अगर किसान भाई बहन वहां ले जाते हैं अपन पशु के तो बहुत बेहतर तरीके से उनका नस्ल सुधार हो जाते हैं। बात कहा है कि जो सांड के जो पाले के जो खर्च से जो बचाव है किसान भाई बहन अगर अगर ई विधि से अगर अपन पशु में अगर कृत्रिम गर्भाधान कराओ थी तो उनका पास का है कि एक नस्ल सुधार ही ना होता है उनके पास का है कि आय के भी अगर उनके पास बढ़ोतरी हो सके आय के भी वृद्धि हो सके में
0: बहुत सारा फायदा है और जगह से किसान भाई बहन इस काम करा के अपन लाभ ले सको थी। और हमने को उम्मीद है कि अगर गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान करावल चाहो थे तो ये उपाय करके अपन जो बेहतर बेहतर से बेहतर नस्ल है ओकरा ला सको थे ना आगे बढ़ सको थे और व्यवसाय के बढ़ा सको थी। तो देखो कि अब हमरी के समय हो चुके एक भेंटवार्ता की तरफ, तो हमने सुनो एक भेंटवार्ता और भेंटवार्ता आज हमने ले लिए है यशमिंदर भाई
1: जी ले लिए कि जे किसान अथिन जे इजराइल भ्रमण करके एलथिन है और सफल किसान अथिन इनका से जे बातचीत कर अथिन से संतोष कुमार दास अथिन और जे किसान अथिन से फुलेश्वर महतो अथिन,
0: तो सुनल जाए पहले भेंट पड़ते
1: हैं। हाँ
5: किसान भाई बहनों आज हमारे साथ हैं फुलेश्वर महतो ग्राम चनारो चुरचू हजारीबाग और आज इनसे खास बातचीत करेंगे कि इजराइल भ्रमण गए और वहां पर क्या सीख के आए, इन सभी बातों पर विशेष बातचीत करेंगे। तो फुलेश्वर जी सबसे पहले तो आपको हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है, साथ ही हमारा नमस्कार।
6: नमस्कार।
5: तो फुलेश्वर जी सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इजराइल भ्रमण के लिए गए तो वहां पर आपको क्या सीखने को मिला है?
6: इजराइल भ्रमण में जब हमने गया तो वहां देखा कि वहां का जो वातावरण है वहां का आओ हवा है और हमारे यहां का बहुत बदलाव नहीं है, लेकिन वहां का जो मानसून है वहां बहुत कम पानी पड़ते हैं, वहां के किसानों को समुद्र के पानी फिल्टर करके और खेती में लाया जाता है और वहां जब माइक्रो इरिगेशन के तहत वहां सारे सिस्टम को खेती में लाया गया है और वहां का जो खेती करने का तौर तरीका है वो सोसाइटी के तहत होता है, समूह बना करके लोग वहां खेती करते हैं क्योंकि उसमें तीन समूह का रूप में लिया जाता है। पहला समूह होता है उत्पादक समूह, दूसरा समूह होता है प्रोसेसिंग समूह और तीसरा होता है बाजार। इन समूहों का अलग अलग काम रहता है और सब मिला करके एक साथ काम करते हैं, जो कि हमारे इस प्रदेश और देश में ऐसा सिस्टम अभी बहुत कम ही चल रहा है।
5: जैसे कि आप इजराइल के भ्रमण के बारे में बताए, वहां के खेतीबाड़ी के बारे में बता रहे हैं, तो जैसे हमारे यहां की जो खेतीबाड़ी है और वहां का जो खेतीबाड़ी उसमें क्या विशेषता पाते हैं, क्या अंतर पाते हैं?
6: हमारे यहां जो भी खेती होती है वो अभी तक सिस्टम से नहीं होती है, वहां सारा सिस्टम से हो रही है क्योंकि वहां हमने देखा कि सारे चीज ड्रिप मल्चिंग पॉलीहाउस इस तरह से वहां खेती होता है, जबकि हमारे यहां खुले मैदान में हम लोग करते हैं और यहां पर क्या किस समय हमको क्या देना है खाद इसके बारे में हमारा कोई लेखा जोखा नहीं होता, जबकि वहां सारा सिस्टम से होता है।
5: तो कहने का मतलब आप इजराइल गए तो वहां का जो खेतीबाड़ी होता है वो सिस्टमेटिक ढंग से होता है और हमारे यहां थोड़ा सा उसका अभाव है और जिसके कारण थोड़ा सा उत्पादन में भी शायद कमी हो सकती है। अगर हम बात करते हैं वहां का जो खेतीबाड़ी होती है तो विशेषकर किस क्षेत्र पे अच्छा उन लोग उत्पादन करता है, अच्छा आमदनी भी हो सकता है?
6: वहां का मुख्य फसल है सब्जी वर्गीय फसल, जैसे टमाटर हो गया, अनार हो गया और सब्जी में जितने प्रकार के होते हैं ये सारे सब्जियों की खेती करते हैं वहाँ पे और वहाँ का जो ग्रेड वन खेती करते हैं क्योंकि वहाँ का जो भी फल सब्जी होता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, दूसरे देशों को वहाँ सप्लाई देते हैं। वहाँ जो भी खेती का होता है वो जो भी कंपनी के साथ टैग होता है वो 3 साल पूर्व उसमें एग्रीमेंट होता है रेट से लेकर सारा चीजों का, जिससे वहाँ के किसानों की अच्छी आमदनी होती है और इसके कारण वहाँ खेती करने में बहुत सहूलियत होता है।
5: इस प्रकार से वहाँ पर जो भी खेती बाड़ी होती है बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से होती है और उत्पादन भी अच्छा खासा होता है जो कि हमारे यहाँ नहीं हो पाता है। तो जैसे कि आप इजराइल भ्रमण किए और वहाँ पे वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जाने सीखे, तो यहाँ पर आपके क्या राय है, यहाँ पर आप किस प्रकार से किसानों को फायदा दे रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं?
6: वहाँ से इजराइल से आने के बाद हम अपने यहाँ भी अपना एक सोसाइटी बनाए, उसका नाम है चैम्बर्स ऑफ फार्मर्स, जो पूरे जिले के किसानों को जुड़े हुए हैं और ये व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ा हुआ है कि वो छोटे किसान हो या बड़ा किसान हो, जो अपना खेत में जो कर रहे हैं वो शेयर कर सके। इसमें हमारे उपायुक्त से लेकर के जितने भी निचले पदाधिकारी, कृषि से लेकर सारे पदाधिकारियों का जुड़ा हुआ है, जो भी समस्या होता है उनको तुरंत निदान कोई न कोई कर देते हैं। आज हमारे जिले में जो स्थिति था पहले का, जो पहले यहाँ ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर का बहुत कम रेशियो चलता था, लेकिन आज हमने देखा है कि आज जो ये स्थिति है बढ़ावा बहुत तेजी से चल रहा है, उसमें हमारा जो ब्लॉक है आज इजराइल के तौर पर अभी देखा जाए तो मिनी इजराइल के रूप में विकसित हो रहा है। आने वाला समय में चुरचू ब्लॉक एक कृषि के हब के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ आज 8 पॉलीहाउस बना हुआ है, जिसमें इस साल का टारगेट है कम से कम 50 लाख नर्सरी तैयार करने का, और वो सॉयल लेस नर्सरी तैयार होता है, जिसे किसानों को खेत तैयार करने के बाद तुरंत उसको ले जा लगा देते हैं। नर्सरी अवेलेबल है और आज अब जो भी किसान चाहे तो हमारे ब्लॉक में आकर के अब वो पौधा ले सकते हैं। आज हमारे यहाँ कद्दू हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, बोदी हो गया, बैगन हो गया, शिमला मिर्च हो गया, फूलगोभी हो गया, बंधा गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, इन सभी चीजों का नर्सरी तैयार किया जा रहा है और सब सॉइल लेस नर्सरी के अंदर, और इनका उत्पादन जो हम अपने नर्सरी करते हैं उससे जहाँ तक कहा जाए कि 20-25% एक्स्ट्रा होता है, और इसमें रोग की क्षमता बहुत घट जाती है और आज किसान इसमें जुड़ रहे हैं।
5: तो बहुत अच्छा बात बताएं कि अगर हमारे किसान भाई बहन इस बात को सुनते होंगे तो इनसे जाके संपर्क करें, चुरचू ब्लॉक में जाएं और वहाँ के खेती बाड़ी के बारे में जाने कि इस प्रकार से वहाँ खेती बाड़ी करते हैं, तो अगर जाते हैं तो उनको फायदेमंद है। जिस प्रकार से बोले हर फसल के व्यवस्था के बारे में बताएं कि यहाँ पर हर तरह का फसल नर्सरी की जाती है, वहाँ से लाके अपना खेती बाड़ी कर सकते। तो फुलेश्वर जी आगे ये जानना चाहते हैं कि आप इजराइल भ्रमण से आए और यहाँ पर जिस प्रकार से आप फॉली हॉर्स को खेतीबाड़ी करते हैं, तो आगे क्या आपका उद्देश्य है, आप क्या करना चाहते हैं?
6: हमारा उद्देश्य है कि किसानों को उसकी आय में वृद्धि कैसे हो, इसके बारे में हम लोग चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि उनका यदि उत्पादन होगा तो बाजार का व्यवस्था करना है और बाजार के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति के सुधार करना है। आज किसानों के साथ होता है कि किसान खेती करते छोटे स्तर पर करते हैं, जिनकी उत्पादन होती है तो वो बाजार तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो हमने अभी विचार किया है अपना सोसाइटी और अपने किसानों के साथ मिलकर कि इनकी उत्पादन को पंचायत स्तर पर क्लस्टर बना करके उसके खरीद करके देश के मंडियों तक भेजने का हम प्रयास करेंगे, जिसमें ई नाम के जरिए हमने अभी किसानों को रजिस्टर्ड करवा रहा है और इससे किसानों का सह समय उनको तो सूचना मिलेंगी कि आज पानी पड़ने वाला है, आज यहाँ का रेट यह है, सारी सूचनाएं उनको मिलेंगी, जिससे किसानों का अधिक से अधिक लाभ होगा।
5: जी। इस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो अंतिम में आपसे ये सवाल है कि हमारे जो किसान भाई बहन है जो खेतीबाड़ी करते हैं, तो यहाँ के जो खेतीबाड़ी क्या क्या समस्याओं से उनको सामना करना पड़ता है, जिनके कारण वो उनकी अच्छी खेतीबाड़ी नहीं हो सकती, इन पर विशेष प्रकाश डालें।
6: देखिए, यहाँ के किसान जो खेती करते हैं तो इनके बारे में अपना जो उसका एक मेनू होना चाहिए वो तैयार नहीं कर पाते, जिसके चलते वो कोई भी चीज का जैसे क्या किस समय हमको देना है, जैसे पौधा लगाए, पौधा लगाने के बाद कितना दिन में उसको खाद देना है, कितना दिन कोड़ाई करना है, कब उसका टूटेगा, ये विषय वस्तु पर उनको प्रकाश डालना चाहते हैं, क्योंकि इस पर जब तक वो अपना बजट नहीं तैयार करेंगे तब तक उसको पता नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे किसान आज हैं कि लगा दिए लेकिन कितना उत्पादन हुआ आज कोई उसका रिकॉर्ड नहीं रख पाता है, जिसके कारण उसको लाभ और हानि का कोई पता नहीं चलता। तो हम चाहेंगे किसान भाइयों को कि वो अपने उत्पाद का शुरू से लेकर के पौधा लगाने से लेकर कटाई तक का लेखा जोखा रखे, जिससे उनको पता चले कि इस पौधे में, इस फसल में हमें इतना का आमदनी हुआ और इससे यदि हमको अच्छा लाभ लेना है तो अन्य फसलों को जैसे एटीएम के तरह उपयोग किया, जैसे ओल हो गया, अदरक हो गया, जिनकी अधिक आय का जरिया बनाया जा सकता है।
5: तो इस प्रकार विशेष ध्यान रखें हमारे किसान भाई बहन और उनका उत्पादन भी अच्छा खासा होगा, साथ ही आमदनी भी अच्छी खासी होगी। तो फुलेश्वर जी आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और अपने बेशकीमती समय दिए और खास करके इजराइल भ्रमण के बाद आप आए यहाँ पर और यहाँ पर किस प्रकार से खेती बाड़ी करना चाहिए, किस प्रकार से अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहिए, इन सभी बातों पर विशेष प्रकाश डालें और अपना बेशकीमती समय दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
6: धन्यवाद।
0: तो देखा कि कितना बेहद जानकारी ले कि जो किसान हिलथिन इसराइल भ्रमण के गिलथिन और भ्रमण करे के बाद पता चल रहे कि किस प्रकार से यहाँ और वहाँ के खेती में अंतर है और वहाँ से जो सीख के हिलथिन यहाँ के बारे में बतेलथिन और नया नया विधि अपना के अपन खेती बाड़ी जुड़ल थी अच्छा खासा अभी आमदनी कमा रहे थी।
1: सही बात,
0: जो जानकारी दिलथिन नाम है फुलेश्वर महतो
1: और बातचीत कर रहे संतोष कुमार दास।
0: तो बड़ा बेहद जानकारी ला उम्मीद करे कि हमने के किसान भाई बहन जरूर सुन के जरूर अकर से प्रेरित होती ना आगे बढ़ती। और जैसे कि हमने हर बार किसान भाई बहन के नवा नवा जानकारी लावे ताकि हर प्रकार के जानकारी मिल सके समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा या तो राज्य सरकार द्वारा जो भी योजना निकलो है ये कार्यक्रम के माध्यम से हमने बताओ ये और कोशिश करो कि हर प्रकार के जानकारी दिए। साथ ही ये भी हो कि समय समय पर हमने किसान भाई को मनोरंजन भी करवाइए। तो तुहर का विचार है यशवंदर भाई?
1: बिल्कुल सही बात बताया तो मन की बात भाई कि किसान भाई बहन भी जैसे कुछ आशा को उम्मीद कर लेते कि भाई जब इतना बात सुनी रहा थी ना तनी उनका भी खातिर मनोरंजन भी हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें सभी मिलकर सुनो एक प्यारा सा लोकगीत। तो सुनल जाए।
1: हाँ

0: तरीके की हमने सुन लिए बहुत ही प्यारा लोकगीत, और हमने की कोशिश रहे कि हर प्रकार के जानकारी अपन किसान भाई बहन के दिए, नवा नवा जानकारी दिए ताकि ओकरी के लाभ मिल सके। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज हम करबे अपन किसान भाई बहन के साथ, और बतेबे कि किस प्रकार से सरकार द्वारा बहुत सारा ये योजना निकालल जाए, ओकर से किसान भाई बहन कैसे लाभ ले सकते हैं। ओकरे में देखा कि एक हो गए किसान उत्पादक संगठन, जरा अंग्रेजी में कहल जाए FPO। ये कहा है कि किसान के सामूहिक समूह है या पंजीकृत कंपनी है। अकर में कहा है कि अगर अकरा बात करल जाए कि कृषक उत्पादक संगठन कहल जाए, अकर में देखा कि सबसे खासियत ये है कि छोटे और सीमांत किसान के संगठित करल जाए ताकि उत्पादन और विपणन और कृषि से जुड़ल व्यवसायिक कार्य सामूहिक रूप से कर सकूं थी। तो बहुत बड़ा प्रयास है जेकर से कहा कि बहुत सारा जगह छोटे किसान और बड़े किसान में बहुत सारा अंतर पावल जाए, देखल जाए कि छोटे किसान पीछे रह जाए और बड़ा किसान आगे निकल जाए, तो एक संगठित करल जा रहा है ताकि दोनों सम्मिलित रूप से आगे बढ़ सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक बात बोल रहा तो संतोष भाई कि एक मुख्य भूमिका जो है, एक कह मतलब हो कि किसान के जो उत्पादन लागत कम रहो है, और एक में कहा है कि कृषि उत्पादन के लिए जो सबसे बेहतर बाजार उपलब्ध करावल जाए, एक इनखर किसान भाई इनके जे आय हुआ है उनकर वृद्धि भी हो जाए।
0: बिल्कुल, और अकर में सबसे बड़ी खास बात यह है कि जे किसान उत्पादक संगठन के जे मुख्य उद्देश्य जे है और जे लाभ है, ओकर बारे में हमने बता दिया।

0: होइए कि एकर में जे उद्देश्य और जे लाभ है ओकर में देखा किसान अकेले अपन उपज कम दाम पर बेचे पर मजबूर हो जालथिन, लेकिन अब का होले कि एफपीओ के माध्यम से वो अपनी फसल सीधे थोक खरीदारों या बड़ी कंपनियों में बेच सकोथिन।
1: सही बात,
0: कितना अच्छा काम निकले कि अब है कि सीधे थोक जो खरीदार होते हैं पे बेच सकोथिन या बड़ी कंपनी के पास भी ये सब बेच के अपन लाभ कमा सको।
1: एक बात कहा है कि ये उन्नत तकनीक और विशेष जानकारी के बात हम करो ये संतोष भाई कि एफपीओ जो है से अपन सदस्य के आधुनिक कृषि तकनीक जैसे सरकारी योजना और मौसम के जानकारी के बारे में भी प्रशिक्षण में वहां से ले सकोथिन, प्रशिक्षण वहां से मिलो है।
0: अकर में एक और खास बात है देखा कि लागत में कमी हो गए, कमी में देखा कि का बोले बीज हो गलो, खाद हो गलो, कीटनाशक जैसे कृषि सामग्री का हुआ कि थोक में खरीदे से लागत जो हुआ कम हो गया है।
1: आज इसे कहा है कि एफपीओ के माध्यम से केवल जैसे कच्चा माल जैसे हो गलो कि टमाटर हो गलो आलू हो गलो बेचे खातिर लेकर बेचे के बजाय अगर किसान भाई बहन ओकरा जैसे अच्छा तरह से जैसे सॉस चिप्स अगर पैकिंग करो थी पैकेजिंग करो थी तो एक में किसान भाई बहन के बहुत लाभ हो है और एक से कहा है कि किसान के जो बाजार हुआ है ज्यादा मुनाफा कमाए वाला एक मौका मिलो है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और अगर मैं देखा कि एक और फायदा है और उद्देश्य भी है कि सबसे बड़ा फायदा अगर मैं देखा कि देखे मिला अभी तक मैं सुनल मिला हमने के किसान भाई बहन के कि जो हमने के किसान भाई बहन थी ये अगर एकर से जुड़ो थी तो और भी देखे सहायता मिले के संभावना अगर में ऋण और वित्तीय सहायता मिल जाए। अगर मैं देखे ये संगठन भारतीय कंपनी अधिनियम या सरकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हुआ है और सरकार द्वारा प्रत्येक एफपीओ को अधिक आर्थिक सहायता करल जाए जैसे मैचिंग इक्विटी ग्रांट हुआ है और ऋण गारंटी सुविधा दिया जाए तक से कहो कि ऋण भी दिया जाए साथ ही वित्तीय सहायता भी दिया जाए ताकि किसान भाई बहन आगे बढ़ सको थी। बहुत सारे किसान भाई बहन के पास खेती बाड़ी करे तो ताकत रो करे चाहो थी लेकिन ओकरे पास वित्तीय अगर आर्थिक स्थिति थोड़ा कमजोर रहे तो वैसे वैसे किसान के भी संगठन के माध्यम से आगे बढ़ावल जा रहा है। तो हम चाहे किसान भाई बहन की किसान उत्पादक संगठन से जुड़ती और एक जरूर से जरूर लाभ लेती।
1: बेस बात को तो कहला संतोष भाई और एक में क्या किसान भाई बहन जिसे एक चेयरमैन चलते थे किसान भाई बहन के भी कहल चाह कि जे भी किसान भाई बहन हथिन जो खेती बाड़ी करो थी अब उनका धान की भी तैयारी करे के तो कोशिश ये करे के चाहे किसान भाई बहन के कि अगर उनके पास ऊपरी सतह के जमीन अगर है तो टाँड तरह से अगर जमीन उनके पास है तो किसान भाई बहन की ये भी ख्याल रखे के चाहिए कि धान के बजाय धान के अलावे जो है से किसान भाई बहन के मोटा अनाज की भी खेती करे के चाहिए और जब मोटा अनाज खेती करते हैं तो जैसे ओकर में कहा है कि मोटा अनाज जब खास तौर पर अगर मड़ुआ की खेती किसान भाई बहन करो थी तो दो तरीके से खेती कर सको थी। एक है कि छिटकमा विधि से कर सको थी, दूसरा बात कहा है कि रोपा विधि से कर सको थी। तो जब छिटकमा विधि से किसान भाई बहन करते हैं तो उनके पास कहा है कि समय आ गया है उनके पास कि अब मड़ुआ खेती की भी तैयारी करे उनके पास तो जे टाण में लगे थी जे ऊपरी सतह के जमीन में लगे थी वो तो अच्छी तरह से उस जमीन के टाण के जुताई कर सको थी कह जा सको कि दो नंबर तीन ही ज्यादा बेहतर हुआ है ऊपरी सतह जमीन में तो किसान भाई भी कहा कि कर सको थी ओकरा। और ये ध्यान देना है उनका कि वो खेत जो जमीन है सो ढालमा बने थी ताकि जो है से उनके पास पानी के ओकर में जमाव ना हो पावे।
0: बिल्कुल, और देखा कि और एक बात और बता दी चाहिए कृषि में एफपीओ जो संरचना हुआ वो किस प्रकार से हुआ। अकर में देखा कि आमतौर पर एफपीओ कम से कम 10 किसान मिलकर शुरुआत कर सको थी और बड़े में से बड़े एफपीओ में हो गए 300 से अधिक किसान अकर से जुड़ सको थी और निर्माण कर सको थी। और इस सरकारी योजना के तहत भारत सरकार के 10,000 एफपीओ के गठन और प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्येक संगठन को सुचारू रूप से चलावे खातिर प्रारंभिक वर्षों में वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचा के विकास के लिए सहायता प्रदान करल जाता। तो देखा कि इस प्रकार से विशेष ध्यान दिया जा रहा है हमने के किसान भाई बहन खातिर। तो हमने के चाहे कि हमने के किसान भाई बहन इस संगठन से जुड़ती और लाभ जरूर लेती। तो अब देखा कि हमने अब अंतिम पड़ाव पे आ चुका लिया है और हम कोशिश करवे कि और भी जानकारी अपन किसान भाई बहन के दिए। तो चलते चलते हमने आज के बाजार भाव और मौसम के जानकारी भी अपन किसान भाई बहन के बता दिए चाहिए। तो आज के जो बाजार भाव में
1: लाल आलू जो है संतोष भाई से 20 से 25 रुपए प्रति किलो है, सफेद आलू 10-12 रुपए प्रति किलो है, प्याज 10 से 15 रुपए प्रति किलो है,

0: और फूलगोभी जो है 50 रुपये से 60 रुपये प्रति किलो है, पत्ता गोभी 30 रुपये से 40 रुपये प्रति किलो है, पटल 30 से 40 रुपये प्रति किलो है, भिंडी 20 से 25 रुपये प्रति किलो है।
1: और वहीं देखा कि नेनुआ जो है 20 से 25 रुपए प्रति किलो है, कद्दू है 20 से 25 रुपए प्रति किलो, और हरा मिर्च 60 से 80 रुपए प्रति किलो है, शिमला मिर्च 40 से 50 रुपए प्रति किलो, और गाजर देखा कि 30 से 40 रुपए प्रति किलो है।
0: बीट जो है 30 से 40 रुपए प्रति किलो है, सीम जो है 60 से 70 रुपए प्रति किलो है, बीन जो है 40 से 50 रुपए प्रति किलो है, और मूली जो है 30 से 40 रुपए प्रति किलो है।
1: और वहीं देखा कि धनिया पत्ता है 80 से 100 रुपए प्रति किलो, अदरक है 80 से 100 रुपए प्रति किलो, और खीरा 30 से 40 रुपए प्रति किलो। वहीं देखा कि टमाटर है 40 से 50 रुपए प्रति किलो, लाल साग है 30 से 40 रुपए प्रति किलो, और पालक साग भी देखा कि 30 से 40 रुपए प्रति किलो।
0: आज की जो अधिकतम तापमान है संतोष भाई से 34 डिग्री सेल्सियस है अधिकतम, और न्यूनतम जो है 24 डिग्री सेल्सियस है। आर्द्रता जो है नमी है 57% है।
1: और कल के जो अनुमान लगावल गया है के तापमान के, तो कल के तापमान रहे की संभावना है 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहे की संभावना है, और न्यूनतम जो रहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखा कि आज के हमरिंग के बाजार के भाव भी बता दिलिए और मौसम के जानकारी बता लिए। मौसम के जानकारी बतावे से फायदा हो किसान में कि आवेला कल के में हमरिंग का तैयारी कर सको, बचाव कैसे कर सको।
0: तो यह जानकारी के साथ हमरिंग के अब किसान वाणी कार्यक्रम से भी जाए के बेरा हो गया है, तो हमरा यशवेंद्र के
1: और संतोष भाई के अनुमति देथिन
0: जोहार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए ग्रामीण भाइयों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के कार्यक्रम में स्वागत करो ये साथी जोहार प्रणाम। और देखा कि एक बार फिर से बना लेते हैं यशमिंदर भाई, तो तोहरे जोहार प्रणाम।
1: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के हम अपन से जोहार प्रणाम करो ये। और कार्यक्रम में खेतीबाड़ी साथ है हमारा थे संतोष भाई, तोहरे भी जोहार। तो हम इन्हें आरम्भी चर्चा करवा संतोष भाई कि ये जून के महीना जो चल रहा है, तो जून के महीना में किसान भाई बहन का सब्जी लगे थी और ये सब्जी जे भी लगे थी ओकर देखभाल कैसे करते थे, तो हमें जानकारी की तरफ बढ़ जानकारी है कि जून के जो महीना हुए ओकर में किचन गार्ड जैसे कह जा सको कि बारिश की शुरुआत और मानसून के तैयारी के समय हो लोगो है। एकरा दौरान जैसे से उगावे खातिर जो प्रमुख खेती हुआ है जैसे कहल जाओ कि भिंडी लौवा करेली टमाटर बैगन हरा मिर्च और फूलगोभी की खेती किसान भाई बहन अच्छी तरह से कर सको थी। तो एकरा खातिर का है कि जो भिंडी के जो मानसून के शुरुआत में एक खेती करे के लाभदायक किसान भाई बहन के हो है जैसे पूसा A4 और अर्का अनामिका जैसे उन्नत किस्म के खेती किसान भाई बहन कर सको थी। तो जैसे लौकी और करेली जैसे हो गलो खीरा हो गलो तो ये सब्जी जो है से जून के पहले या दूसरा सप्ताह में किसान भाई बहन लगा सको थे संतोष भाई। और ये खेती जब लगाई थी तो एक चीज जरूर ध्यान देना पड़ता किसान भाई बहन के कि मचान विधि से लगावे चाहिए। अगर मचान विधि से किसान भाई बहन लगाई थी तो उनका जो है कि अगर भारी बारिश भी अगर हो है तो फसल ना सड़ते और फसल में जो भी फल लगते वो बहुत सुरक्षित रहते।
0: बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बोला। अब देखिए कि जून के महीने में बहुत सारा कार्य कृषि संबंधित हुए है ओकरा में बतावल चाहिए कि जैसे अगर हमने बात करिए खरीफ फसल के बुआई के बारे में तो खरीफ फसल में धान उगलो मक्का उगलो दलहन और तिलहन उगलो ये सब के बारे में बता दिए चाहिए अपन किसान भाई बहन के। तो धान के नर्सरी में जैसे बिचड़ा तैयार करे खातिर जून के महीना के पखवाड़ा 15 जून तक पूरा कर लिए चाहिए और बीज के बोए से पहले उपचारित जरूर से जरूर कर लिए चाहिए। दूसरा बात हो गया कि मक्का हो गलो ज्वार हो गलो बाजरा हो गलो ये सब का हो गया बराने मतलब वर्षा आधारित क्षेत्र में इन फसलों की बुआई मानसून से पहले अच्छी बारिश के बाद करल जा है। फिर अगर हमने बात करिए दलहन और तिलहन के बारे में तो जैसे दलहन तिलहन में हो गलो मूंगफली सोयाबीन और अरहर के बुआई जून के अंतिम सप्ताह में करल जा है। तो ये सब हो गलो जून के महीने में करेला काम। अगर हमने बात करिए सब्जी में तो सब्जी के अगर बात करिए तो सब्जी मतलब प्रमुख सब्जी में से हो गलो भिंडी हो गलो बैंगन हो गलो हरी मिर्च हो गलो टमाटर हो गलो फूलगोभी हो गलो ये सब के रोपाई और बुआई कर दिए चाहिए। फिर देखा कि बेल वाली पत्ती सब्जियां में हो गलो लौकी हो गलो करेला हो गलो गिलकी हो गलो तोरई जकरा बोलल जाए कद्दू लगावे के ये समय बहुत ही अच्छा मानल जा रहा है।
1: देखिए एक में कहा है ना एक चीज और ध्यान देना पड़ता है कि जैसे किसान भाई बहन सब्जी बहुत लगाओ थी और अच्छी तरह से लगाओ थी पर क्या है कि उनके पास थोड़ा सा जानकारी का अभाव भी हो जाए है। तो किसान भाई बहन जैसे से टमाटर और मिर्च के जो खेती करो थी अगर मैं कहा है कि पहला नर्सरी की तैयारी किसान भाई बहन कर ही लेते हैं पर क्या है कि जैसे देखो बहुत सारा किसान भाई बहन जून में मिर्चा टमाटर की खेती लगा देते हैं पर क्या है कि अगर पहले जो थी से वो कह जा सको कि मार्च या अप्रैल में या अप्रैल या मई में जैसे वो अपने नर्सरी बेड तैयार कर ले थी दाना बोल रहे थे नौकर में और मई महीना में जैसे उनखर करीब करीब जो है अच्छी तरह से पौधा भी तैयार हो जाते तो प्रथम जून जे जून के पहला सप्ताह हुआ है या दूसरा सप्ताह हुआ है एक में रोपाई शुरू कर दी थी। थोड़ा सा किसान भाई बहन के कष्ट हुआ है संतोष भाई कि अभी के समय जो है कहा है कि थोड़ा सा ये भी आसान हो गया है कि समय समय पर बारिश हो जा रहा है चाहे बेमौसम बारिश ही कहा ना हो जाए बारिश हो जा रहा है ओकर में कहा है किसान भाई बहन के खेत जोते में नमी मिल जा रहा है और उतना खेत अराहल ना जा पा रहा है जिससे खेत पहले पटवन करे थे ओकर बाद खेत में नमी ला के तब क्यारी बने थे झोरा बने थे पर क्या है कि उनके पास बारिश समय समय से हो जा रहा है तो झोरा बना में उनका खेत जोता करके झोरा बना में बहुत आसान हो जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात बतेला और इस प्रकार से ध्यान दिए चाहिए। तो अभी हाँ। देखा कि हम सुनो ये जरूरी संदेश होकर बाद हमने चर्चा के आगे बढ़े। हाँ।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी हर दिल की वाणी आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर नया भारत नया आकाशवाणी।
0: तो देखा कि हमने जरूरी संदेश सुन लिया और हमने चर्चा के आगे बढ़ाया, और जैसे कि हमने बात कर ले लिए कि जून के महीना में जरूरी जो कृषि संबंधित कार्यों के बारे में, अब हमने बात करे में कि एक बागवानी और औषधीय फसल के भी जून के महीने में तो लगा सको, जैसे फलदार पौधे उगलो, आम उगलो, अमरूद उगलो, नींबू उगलो, पुराने पेड़ की छटाई करे चाहिए, टूटे कटे हुए भाग पर बोड़ो पेस्ट का लेप लगा दिया चाहिए। और जैसे फूल की अगर हमने बात करिए तो फूल में उगलो गेंदा उगलो, फूल के नर्सरी तैयार करे के सही समय है। और औषधीय पौधा की अगर हम बात करिए तो औषधीय पौधा में एलोवेरा उगलो, सत्तावार उगलो, की खेती जून में शुरू करल जा सको है। तो ये सब जून के महीने में कर लिए चाहिए, और साथ ही कृषि प्रबंधन की तैयारी भी कर लिए चाहिए। कृषि प्रबंधन में जैसे कि अगर हम बात करिए कि खेत की तैयारी भी कर लिए चाहिए, खेत की तैयारी में होगलो कि खेत की गहरी जुताई करके ओकर में धूप में सूखे दिए चाहिए, जेकर से का हुआ हानिकारक जो कीड़े हुए और खरपतवार जो हो नष्ट हो जाए। साथ ही देखा कि जल निकासी में देखा खेत के चारों ओर जल निकासी ड्रेनेज एक बोल जाए कि उचित व्यवस्था करे के चाहिए ताकि भारी बारिश के दौरान पानी ना रुके। तो सब विशेष ध्यान जून के महीने में करें।
1: सही बात बताया तू।
0: तो देखा कि अब जिस प्रकार से समय समय पर हमने हर प्रकार की जानकारी लावे तो ओकरे में देखा कि एक बहुत बढ़िया जानकारी है कि मुर्गी पालन किस प्रकार से कौन तरीका से करे चाहिए जेकर से हमने आमदनी बढ़ते और कैसे मुर्गी पालन करे चाहिए, ये सारा जानकारी एक भेंटवार्ता के माध्यम से हमने सुनबे। और जो भेंटवार्ता आज हमने सुने जो बतेल थी ने जानकारी दिए थे उनका नाम है बाती देवी, और हम इन से जो बातचीत करे थे वे थे यशमेंद्र कुमार यादव।
1: जानकारी सुनल जाओ।
0: बिल्कुल सुनल जाओ।
3: आज आए हुए हैं हम ग्राम तिर्रा, और यहाँ एक सफल महिला किसान है जो विगत कई वर्षों से मुर्गी पालन का कार्य कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे इनका परिचय। आपका नाम क्या हुआ?
4: मेरा नाम हुआ बत्ती देवी, ग्राम तिर्रा, पोस्ट मंदनिया, थाना मजुरहन, जिला चतरा।
3: तो बत्ती जी, आप कितने सालों से मुर्गी पालन का कार्य कर रहे हैं?
4: 15 साल से।
3: 15 सालों से आपके पास मुर्गी पालन का अनुभव है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि अब गर्मी का समय, तो गर्मी के समय में आप मुर्गी के फॉर्म को कैसे सुरक्षित रखते हैं, और उस लहलहाते गर्मियों में आप मुर्गी को कितना सुदृढ़ ढंग से रखते हैं?
4: गर्मी का टाइम है तो इसलिए हमको फॉर्म में चाहिए 3 फीट का, मतलब कि छाया बनाते हैं उधर से।
3: हाँ हाँ।
4: दोनों साइड से, अगर दोनों साइड से बनाइएगा तो और अच्छा रहेगा।
3: अच्छा अच्छा।
4: लेकिन साइड से, मतलब एक साइड से हम लोग अथी करते हैं छौना।
3: अच्छा अच्छा।
4: और पानी का मतलब कि पंप लगाए हैं यहाँ वहाँ।
3: हाँ,
4: उससे फुहारा पूरा मारते हैं।
3: अच्छा अच्छा।
4: मतलब ज्यादा अगर गर्मी है तो उससे फुहारा मार देंगे तो ठंडा हवा आएगा अंदर।
3: तो जो फॉर्म का जो उचित जो दिशा होता है, सो कौन सा दिशा में ज्यादा बेहतर होता है किसान बंधु के लिए, ताकि जो है सो फॉर्म अच्छा तरह से चल सके, किसी तरह का लूक ना लगे या ठंड ना लगे?
4: तो पूरा पश्चिम रहना चाहिए।
3: अच्छा अच्छा।
4: लंबाई
3: जो इसका दिशा है सो पूरा पश्चिम होना चाहिए।
4: पूरा पश्चिम होना चाहिए।
3: अच्छा। आप चूजे को शुरुआती दौर में किस तरह का पानी देते हैं, किस तरह का जल का आप व्यवस्था किए हुए हैं?
4: पानी का व्यवस्था तो मेरा मोटर है, तो मोटर से ही लाते हैं, और रहता है छोटा छोटा डब्बा, उसके बाद में डब्बा में पानी लगाते हैं। जैसे चूजा आ रहा है तो पहले चाहेंगे तो उसके भूसा डालकर उसमें पहले ग्रूडिंग बनाएंगे 7 फीट का।
3: अच्छा,
4: 7
3: अच्छा।
4: लंबाई होना चाहिए और गोल घेराई होना चाहिए।
3: अच्छा अच्छा।
4: और उसके बाद में पहले चूना मारते हैं, उसके बाद हम लोग कुनी डालते हैं।
3: सबसे बढ़िया बात आपने बताया कि आपने जो है सो चूना का प्रयोग किया अपने फॉर्म में, ताकि किसी भी तरह का कीटाणु का जो प्रवेश होता है या कीटाणु का जो प्रबंधन हो जाता है उसे खत्म कर देता है। तो आपने पहले चूना का छिड़काव किया, उसके बाद आप इसमें जो है सो भूसा का प्रयोग करते हैं।
4: हाँ।
3: तो कौन सा भूसा का प्रयोग करते हैं?
4: तो धान का भी भूसा कर सकते हैं।
3: अच्छा। तो इतने बड़े पैमाने पे आप धान का भूसा लाने का काम कहाँ से करते हैं?
4: और गाड़ी से देने के लिए आते हैं तो हम लोग उसी से मतलब भूसा खरीदते हैं।
3: हाँ हाँ।
4: तो वही भूसा खरीद कर हम लोग डालते हैं।
3: अच्छा अच्छा। तो लगभग उसमें जो है सो उसका जो मोटापन होता है भूसा का वो कितना होता है?
4: लगभग 3 इंच रहता है चूजा में।
3: अच्छा अच्छा।
4: चूजा में 3 इंच रहता है, उसको बाद में थोड़ा मोड़ा कम बड़ा होने तक कम कर सकते हैं ना, तो 3 इंच रहता है।
3: अच्छा अच्छा।
4: तो 3 इंच रहने से क्या होता है ना कि वो अच्छा रहता है, ज्यादा गीला नहीं होगा और मुर्गी खिलेगा भी।
3: अच्छा।
4: अगर
3: ज्यादा गीलापन नहीं होगा?
4: गीलापन नहीं होगा। अगर कम भूसा दीजिएगा तो जल्दी कुन्नी खराब भी हो जाएगा और आपका मुर्गी वजन भी नहीं देगा।
3: तो सर्दी के समय में आप उसे किस तरह का दवा का प्रयोग करते हैं?
4: सर्दी हो जाता है तो ऐसी तो हम लोग घर में देख लेते हैं कि हल्दी भी दिया जाता है, कच्चा हल्दी और दूध। अगर उससे ठीक हो जाता है तो ठीक है, न तो फिर दवा भी आता है।
3: कौन सा दवा का प्रयोग करते हैं?
4: दवा का रेस्टिका लाता है।
3: अच्छा अच्छा, तो आप जो रेस्टिका दे रहे हैं उसका क्या मात्रा होता है, किस विधि से आप देते हैं इसको?
4: दवा 100 चूजा में 5 ग्राम देते हैं।
3: हाँ हाँ, तो प्रति 100 चूजे में आप 5 ग्राम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो है सो आप इसे जल में मिला देते हैं?
4: हाँ, जल में देते हैं।
3: अच्छा अच्छा,
4: जैसे कि अगर टंकी में पानी नाप लीजिए आपका चूजा कितना है,
3: अच्छा,
4: उसी हिसाब से डाल दीजिए टंकी में और सब ड्रिंकर में जाएगा। और न तो हाथ से लगाते हैं, तो दवा में एक टॉप में पानी भरकर उसमें मिला लीजिए।
3: आपके पास एक बढ़िया विधि बताया आपने कि आपके पास टंकी में कितना पानी है उस हिसाब से आप पानी को माप लीजिए, उसके बाद आप उसी में दवा का मिला दीजिए। तो आप जब अपने फॉर्म में जब चूजा आप लाते हैं तो शुरुआती दौर में आप चूजे को क्या देते हैं, ताकि वो एक तो गाड़ी से चल के आता है वो, तो उस समय आप उसे भोजन के तौर पर क्या देते हैं या पानी के तौर पर क्या देते हैं?
4: सबसे पहला देते हैं उसको पानी।
3: अच्छा अच्छा,
4: पानी में हल्दी दे दीजिए और गुड़।
3: अच्छा,
4: गर्मी टाइम में गुड़ देते हैं।
3: गर्मी टाइम में गुड़ देते हैं।
4: गर्मी
3: तो गुड़ में गुड़ का जो मात्रा होता है किस मात्रा में देते हैं आप, कितना पानी में कितना गुड़ मिलाते हैं?
4: 20 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ मिलाते हैं।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे किसान बंधु जो होते हैं ग्लूकोज के पानी

0: या फिर हल्दी मिला
1: ग्लूकोज भी दे सकते हैं।
0: अच्छा
1: ग्लूकोज भी दीजिए तो अगर उतना है तो फिर दीजिए।
0: अच्छा,
1: अगर
0: अच्छा।
1: नहीं दे रहता उसके बाद मतलब कि गुड़ देना पड़ता है।
0: अच्छा अच्छा फिर उसके बाद आपके फॉर्म में चूजा आता है तो क्या किसी भी तरह का वैक्सीन भी देते हैं?
1: चूजा आते समय वैक्सीन नहीं रहता है।
0: अच्छा अच्छा
1: उसका 6 दिन हो जाता है उसके बाद वैक्सीन करते हैं।
0: अच्छा कौन सा दाना देते हैं
1: शुरुआत में देते हैं पीरिया स्टार्टर आता है।
0: अच्छा अच्छा
1: पूरा मही दाना होता है वो।
0: हाँ हाँ
1: तो खाने के लिए हमें सीखने के लिए पेपर पर डालते हैं।
0: अच्छा
1: और उसी अगर उसी दिन डब्बा में लगा दीजिए साइड साइड से एक दाना एक पानी।
0: अच्छा
1: तो पेपर पर भी दाना खाएगा और डब्बा में भी खाएगा।
0: अच्छा मतलब कहने का मतलब है कि जब चूजा जब बड़ा हो जाए तो आप डब्बा में देते हैं पानी जैसे देते हैं तो शुरुआती दौर में आप उसे पेपर पर देते हैं ताकि वो सीखे और अपना जो चूजे हैं अपने चोंच से दाना को उठावे। अच्छा सारे चूजे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे आप हटाने के लिए किस तरह से हटाते हैं?
1: प्लास्टिक बजने वाला थी चिमचिमाहट वाला रहता
0: है। अच्छा चिमचिमाहट होना चाहिए
1: और ना तो फिर एक बोतल में उसमें कंकड़ डाल लीजिए।
0: हाँ हाँ
1: और एक डंटा लगा लीजिए।
0: अच्छा
1: उससे भी थी करने से उठ जाता है
0: मतलब आवाज अगर निकलता है तो वहाँ से भड़क के वो बाहर हो जाता है। तो आप एकत्रित जो 7x7 का जो आप घेरा बना के रखे हुए हैं तो उसे आप कितना दिनों में उसे आप फैलाएंगे?
1: उसको हम फैलाएंगे वैक्सीन करने के बाद 6 दिन में वैक्सीन करेंगे 7वां दिन से उसको फैलाएंगे।
0: अच्छा 7वां दिन में आप उसे फिर फैला देते हैं आप।
1: हाँ।
0: तो उस समय जो है सो क्या जब आपने शुरुआती दौर में जो आप वैक्सीनेशन किया था तो फिर 6 दिन के बाद फिर उसे पुनः उसी वैक्सीन को देते हैं?
1: नहीं दूसरा आता है
0: दूसरा वैक्सीन
1: तो खत्म हो जाता है।
0: अच्छा अच्छा
1: तो 12 दिन वाला आता है वैक्सीन।
0: अच्छा अच्छा
1: तो उसके बाद करते हैं।
0: तो आप जो शुरुआती दौर में जो दाना दे रहे हैं उसको आप बदलते हैं?
1: हाँ बदलते हैं बदलते नहीं है जैसे कि दे दी उसमें दाना।
0: हाँ,
1: तो
0: हाँ।
1: खा लिया सब तो फिर दूसरा दाना डालते हैं।
0: अच्छा तो आपके पास जो है लगभग 1 दिन में आप उसे कितने बार दाना लगाते हैं?
1: 1 दिन में 3 टाइम।
0: 3 टाइम दाना देते हैं आप? तो 3 टाइम दाना देते हैं तो क्या आप तो उसमें जब बड़ा चूजा हो गया तो आप पेपर में तो नहीं देते हैं आप डब्बा में लगाते हैं?
1: हाँ डब्बा में लगाते हैं 2 दिन तक।
0: अच्छा
1: पहले 3 दिन तक रखते थे आप 1 दिन रखते हैं पेपर।
0: अच्छा अच्छा
1: एक दिन में दूसरा दिन में उठा देते हैं
0: उसको हटा देते हैं आप। जब फॉर्म में आते हैं तो उस आवास में घुसने के लिए आपके पास क्या विधि है? आप जूता चप्पल अलग करके रखते हैं फॉर्म के लिए अलग व्यवस्था बना के रखते हैं?
1: हाँ, उसके लिए अलग फॉर्म के आगे हम लोग एक छोटा सा घेरा बनाते हैं।
0: हाँ, हाँ।
1: उसमें पानी डालकर ब्लीचिंग पाउडर होता है।
0: अच्छा अच्छा
1: वो आप डाल दीजिए उसी में पैर डुबा कर तब फॉर्म आइए।
0: अच्छा ये आप बहुत बढ़िया बात बताया कि आप ब्लीचिंग पाउडर में ही पैर जो घोल बना के रखे हुए हैं उसमें पैर डुबा के और आना है ताकि जो है सो जो भी बैक्टीरिया आपके पास आ रहा है वो बाहर रह जाए उसी में मर जाए। तो उसके बाद जो है सो आप प्रिया शटर के बाद जो है सो दाना का जो आप जो बदलाव करते हैं सो कौन सा दाना देते हैं?
1: स्टार्टर आता है।
0: स्टार्टर
1: उससे हल्का मोटा दाना होता है।
0: अच्छा अच्छा
1: तो कहा था कि चूजा धीरे धीरे बढ़ जाता है
0: तो हाँ,
1: वो दाना हल्का बड़ा आता है सो खा पाता है।
0: अच्छा फिर ये दाना आप कितने दिन चलाते हैं उसे?
1: दाना स्टार्टर आता है लगभग 25 दिन तक 30 दिन तक चलता है।
0: अच्छा अच्छा उसके बाद फिर इसी से फाइनल दाना चलता है कि फिर इसके बाद
1: इसके बाद फिर एक और दाना आता है वो रहता है फिनिशर।
0: अच्छा अच्छा
1: फिनिशर ज्यादा दिन नहीं चलता है वो मतलब 10 दिन चलता है।
0: अच्छा
1: फिनिश
0: तो आप तो कितना साइज तक आप उसे कर पाते हैं?
1: उससे साइज आता है 2 केजी।
0: अच्छा
1: देखभाल भी अच्छा से होना चाहिए।
0: हाँ हाँ।
1: पानी सफा अच्छा होना चाहिए।
0: अच्छा अच्छा
1: और टाइम से दाना लगाइए।
0: अच्छा ताकि वो भूखा ना रहे।
1: भूखा ना रहे और दाना लगा कर छोड़िए नहीं उसको 2 टाइम 3 टाइम लगाइए।
0: अच्छा अच्छा जैसे सर्दी के समय में जाड़े के समय में सर्दी उसे आता है तो क्या अब गर्मी का समय आ रहा है तो गर्मी के समय में भी क्या सर्दी आने का आशंका होता है?
1: होता है।
0: अच्छा अच्छा तो आप उसे कैसे पहचानेंगे?
1: हाँ उस सब में कहा था कि वो सब जब सर्दी होता है तो वो छींकने लगता है।
0: अच्छा अच्छा
1: हल्का हल्का सा सब मुर्गी छक छक करता है।
0: हाँ, हाँ।
1: तो उसी से हम लोग पकड़ते हैं।
0: अच्छा तो फिर उसे आप बेहतर इलाज के लिए आप किसी पशु चिकित्सक को बुलाते हैं या फिर आपके पास उतना अनुभव है जो आप दवा देते हैं?
1: उतना हम लोग घर में कर लेते हैं जानकारी हो गया है।
0: अच्छा अच्छा
1: तो आदी लहसुन
0: अच्छा
1: तुलसी का जो पत्ता होता है वो पीस कर मशीन में या हाथ से
0: अच्छा, अच्छा
1: उसको मतलब कि पानी पीने वाला डब्बा में थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं।
0: तो मतलब ये हो गया कि आपके पास घरेलू उपचार हो गया। क्या जब इसे घोल बनाएंगे आप तो क्या अलग अलग डब्बे में देते हैं? दीवार मुर्गियां हैं उसे आप देने का मतलब टोटल को तो नहीं देते होंगे?
1: टोटल को देते हैं।
0: टोटल को देते हैं
1: टोटल
0: ताकि इसका इन्फेक्शन जो है सो औरों में ना जाए। तो लगभग आपके पास जो है सो फॉर्म का जो जितना बड़ा फॉर्म है तो आप कितने मात्रा में इसे आप चूजा पाल पाते हैं?
1: 7,500 चूजा हम लोग डालते हैं।
0: 7 से 7,500 का आप मात्रा में इसे चूजा डालते हैं। बती जी आप एक सफल महिला किसान के तौर पे बातचीत किए और हमारे किसान बंधु को बेहतर जानकारी दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो देखा कि कितना बेहद जानकारी दिलथिन कि गर्मी में मुर्गी पालन कैसे करे चाहिए, का का तरीका है और किस प्रकार से खान पान रखना चाहिए, रख रखाव कैसे करना, सारा जानकारी बड़ा बेहद तरीका से बतेलथिन। और जो बतेलथिन है बाती देवी और हमें दिन से जब बातचीत कर रहीन है वे थे यशमेंद्र कुमार यादव। तो बड़ा बेहद जानकारी है और हमने को उम्मीद है कि जानकारी सुन के हमने के किसान भाई बहन जरूर प्रेरित होती है।
0: हाँ।
2: और मुर्गी पालन करे पहले सोचते न करते ताकि के व्यवसाय और भी आगे बढ़ते हैं। तो देखा कि हम हर प्रकार की जानकारी अपन किसान भाई बहन के दिए और कोशिश हो कि नवा नवा जानकारी दिए और समय समय पर मनोरंजन भी करो। ये तो तोहर का विचार हो इसमें भाई, एक मनोरंजन?
0: ना, बिल्कुल सही बात है भाई, किसान भाई बहन के भी मन के बात हमें समझ गया है कि वो प्रोग्राम जो सुन रहे थे, कार्यक्रम सुन रहे थे, तो उनका भी जो है इच्छा की है भाई एक सुंदर सा गीत सुनिए।
2: बिल्कुल सुनिए।

कि हमने अब मनोरंजन भी हो गया और जैसे कि हमने बात कर ले लिए कि जून महीने में किस प्रकार से देखभाल करना चाहिए दूसरी

0: मुर्गी के पालन में क्या सावधानी बरतना कैसे करना चाहिए, विशेष चर्चा करा लिए। अब हमने कुछ बात कर ली जानवरों के जो प्रमुख टीका हुआ कर लिए भी हमने बात कर ली है कि गाय और भैंस में जो प्रमुख टीका दिया जाए ओकर से का कौन कौन बीमारी पर विशेष ध्यान दिए चाहिए, जैसे होलो खुरपका मुँह पक्का हो गलो, गला घोटू हो गलो, लंगड़ा बुखार हो गलो, ये सब का हो गलो कि जे बीमारी लगे की संभावना रहो है। तो कोशिश करे चाहिए किसान भाई बहन की हमने टीकाकरण कर दिए ताकि हमने के किसान हमने के जो पशु धन के जो बीमारी लगे की संभावना बढ़ल हो वो खत्म हो जाए टीकाकरण के माध्यम से। तो देखा कि अब हमने घड़ी देने देखो तो कार्यक्रम खेती बाड़ी से है, हमने के जाए के बेरा हो गए है। तो कार्यक्रम खेती बाड़ी से हमारा संतोष भाई के
1: और हमारा इसमें देखे
0: अनुमति देती।
1: नमस्कार, जोहार।

खेती बारी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने जमशेदपुर में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में पिछले 12 वर्षों में देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग का अभूतपूर्व विकास हुआ है। श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत झारखंड समेत देश भर के 11 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रूपये की सहायता राशि दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रांची में नेशनल टास्क फोर्स की बैठक से टीबी मुक्त भारत पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि जमीनी स्तर पर कार्य करने वालों की मदद से वर्ष 2029 तक टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में 18 जून को मतदान होगा। नाम वापसी के अंतिम दिन आज कोई भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला तय है। सिमडेगा जिले के कोलेबेरा थाना क्षेत्र में आज एक 4-पहिया वाहन के पेड़ से टकरा जाने से उस पर सवार पति पत्नी और 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स लाया जा रहा है। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद तेज हवाओं और गरज के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कई इलाकों में सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन

0: कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का स्वागत है, साथ ही अंजलि का नमस्कार जोहार। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सभी कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों किसी को भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन लगातार मेहनत की जाए तो एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए रुचि के अनुसार लक्ष्य बनाकर मेहनत करें और आगे बढ़ें। दोस्तों कार्यक्रम में ढेर सारी बातें होंगी, जानकारी भी सुनवाएंगे। अभी साथ मिलकर सुनते हैं ये गीत और साथ ही जरूरी संदेश।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, गीत और जरूरी संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पहले लोग अपने शौक के लिए खेल कूद करते थे, किंतु अब खेलों में करियर की भी संभावनाएं हैं। अब वह केवल खेलने तक ही सीमित नहीं है, आजकल इसमें प्रशिक्षण, प्रबंधन, विज्ञान और मीडिया जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। आजकल पेशेवर खिलाड़ी राज्य, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें उन्हें मैच फीस, पुरस्कार राशि मिलती है तथा विज्ञापन के जरिए भी अच्छी आय हो जाती है। खेल प्रबंधन और प्रशासन में भी करियर की संभावनाएं हैं। खेल लीग, टूर्नामेंट और टीमों का प्रबंधन करना, कोच और ट्रेनर के रूप में खिलाड़ियों को खेल की तकनीक सिखाना और शारीरिक रूप से फिट रहने के टिप्स देना भी शामिल होता है। इसके साथ साथ खेल पत्रकारिता और मीडिया का भी काम होता है। खेलों का आंखों देखा हाल बताना या उस पर लेख लिखना, कमेंटेटर, स्पोर्ट्स एंकर या खेल लेखक के रूप में काम करते हैं। दोस्तों, खिलाड़ियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना और तनाव कम करने में मदद करना, यह भी एक जरूरी काम होता है। खेल विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में भी करियर है। खिलाड़ियों की चोटों का इलाज करना और उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए डाइट प्लान बनाना भी जरूरी है। ई स्पोर्ट्स और गेमिंग में भी अच्छी आय होती है। पेशेवर वीडियो गेम में भाग लेते हैं, यह आज के समय में तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है। इसके लिए शुरू से ही ध्यान देना जरूरी है, तभी लोग खेल के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब कार्यक्रम में सुनवाते हैं एक पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, सफलता के लिए समय तालिका का महत्व। जानकारी दे रही हैं विम्मी प्रियदर्शनी और इनसे बातचीत कर रही हैं रानी सहाय।
4: आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वरीय शिक्षिका श्रीमती विम्मी प्रियदर्शनी जी से, जो अभी दिल्ली पब्लिक स्कूल हजारीबाग में कार्यरत हैं। विम्मी जी हमें आज जानकारी देंगी, एक आदर्श विद्यार्थी के जीवन में समय का क्या महत्व है इस विषय पे। तो सबसे पहले विम्मी जी, आपका इस कार्यक्रम में हम करते हैं बहुत बहुत स्वागत और कहते हैं नमस्कार।
5: नमस्कार
4: विम्मी जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सफलता के लिए कर्म के साथ ही समय प्रबंधन भी बेहद जरूरी है, इस बारे में आप विद्यार्थियों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
5: जी हाँ, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि विद्यार्थी के जीवन में समय प्रबंधन बहुत महत्व रखता है। अगर विद्यार्थी अपने जीवन में समय का प्रबंधन नहीं करते हैं तो वो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं जी। और समय का प्रबंधन के लिए उन्हें सुबह सोकर उठने से लेकर के रात के सोने समय तक के लिए एक समय तालिका बना लेनी चाहिए, कितने बजे तक में वह कितना काम कर सकते हैं। इस तरह से अगर वह अपना तालिका बनाए और उसमें वह अपने लिए पढ़ाई के लिए कितने समय होने चाहिए, सफाई स्वच्छता के लिए कितने समय देने चाहिए तथा अपने रिक्रिएशन मनोरंजन के लिए और समाज की सेवा के लिए कितने समय देने चाहिए, इस तरह से वह सारे समय का प्रबंधन करें, सारे समय को बांट दें और समय का प्रबंधन करें, तो वो एक सफल विद्यार्थी हो सकते हैं।
4: जी पिमी जी, उचित समय पर यदि कोई विद्यार्थी अपना कार्य करते हैं तो हमेशा फलदायी होता है, इसके बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे छात्राओं?
5: जी हाँ, ये भी कहना बिल्कुल सही है कि उचित समय पर ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब क्या होगा।
4: जी जी,
5: तो इसलिए समय रहते ही हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। हर एक समय, हर एक पल बीतता जा रहा है जिसका हमें बोध नहीं होता है, हमें इसका ज्ञान नहीं होता है कि हम हर एक क्षण, एक पल, एक समय खो रहे हैं, और हमें चाहिए कि हर एक समय को हम सदुपयोग करें। सदुपयोग समझना बहुत जरूरी है कि सदुपयोग, समय का सदुपयोग क्या होता है।
4: बहुत जरूरी है।
5: समय का सदुपयोग में सिर्फ किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। किताब की ज्ञान तो जरूरी है, वह तो किताब की ज्ञान से तो सिर्फ उन्हें अच्छे अंक मिलते हैं। किताब के ज्ञान के साथ साथ हम उन्हें अपने व्यवहारिकता में कैसे ला सकते हैं, हम उन चीजों को, जो चीज हम किताबों से सीखते हैं उनको हम व्यवहारिकता में कैसे अपने जीवन में उपयोग करें, अगर हम इस तरीके से सीखेंगे तब हम एक सफल विद्यार्थी हो सकते हैं।
4: जी, जो व्यक्ति उचित समय पर अपना कार्य नहीं करते हैं विमी जी, उनकी सफलता संदिग्ध ही रहती है, इस बारे में आप क्या कहेंगी?
5: हाँ, ये सही है कहना कि उचित समय पर तैयारी नहीं करने पर सफलता संदिग्ध रहती है। उचित समय कौन सा समय है जिसे हम उचित समय कहेंगे?
4: जी, ये जानना बहुत जरूरी है।
5: ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा समय है जो उचित समय है। कोई कहता है शाम का समय हमारे लिए उचित समय है, कोई कहता है हमारे लिए रात का समय उचित समय है। नहीं, हमारे लिए उचित समय जो अभी वर्तमान का समय है वही हमारे लिए उचित समय है, और इस वर्तमान समय को ही हमें अपने काम में लगाना चाहिए। हमें अपनी अध्ययन के लिए और अध्ययन से प्राप्त किए हुए ज्ञान को व्यावहारिकता में लाने के लिए हमें लगाना चाहिए, तभी हम एक सफल विद्यार्थी बन सकते हैं, अन्यथा हमारी सफलता भी संदिग्ध ही रहेगी।
4: जी, सफलता के लिए लक्ष्य तय करना भी जरूरी है ताकि हम अपनी मंजिल तक सही समय पर पहुंच जाएं। इस संबंध में भी आप थोड़ी जानकारी दे दें विद्यार्थियों को।
5: सफलता के लिए

0: सही समय पर हमें अपना लक्ष्य तय कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी मोबाइल से जुड़े हुए हैं, सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, चारों ओर हजारों तरह के अवसर दिखाई देते हैं, लेकिन हमें अपने लिए अवसर वही ढूंढना है जो अवसर हमारे लिए उचित है, और हमें उचित अवसर का उपयोग करना चाहिए, तभी हम सफल विद्यार्थी बन सकते हैं। लक्ष्य का तय नहीं करने से हम मार्ग से भटक सकते हैं, हमें कभी ये मार्ग कभी वो मार्ग अलग अलग रास्ते दिखाई देंगे, लेकिन हमें एक ही मार्ग पर चलना चाहिए जो हमारा लक्ष्य हो। उसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं।
1: जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने।
2: पीवी जी, आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि विद्यार्थी जो है वो शिक्षा से विमुख होते जा रहे हैं, तो एक विद्यार्थी को जीवन में सफल होने के लिए किन किन बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इस बारे में आपको सलाह दें।
0: विद्यार्थी हमारे आज के दौर में, सच सही बात है कि आज के दौर में वो शिक्षा से विमुख होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने कई तरह की चीजें परोसी जा रही है। इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कई तरह की चीजें परोसी जा रही हैं, और वो जो चीजें उन्हें परोसी जा रही हैं, जो उन्हें बहुत लालायित कर देती हैं, और वह अबोध बालक होते हैं जिन्हें उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वह गलत रास्ते की ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और शिक्षा की तरफ उनका ध्यान कम हो जाता है। उन्हें लगता है शिक्षा तो सभी ले रहे हैं, लेकिन मनोरंजन करने का यही एक समय है, और वह अपने माता पिता से छिप करके, अपने शिक्षक गणों से छिप करके, वह अपने मनोरंजन के लिए ज्यादा समय देते हैं, या फिर अपने किसी हॉबी के लिए ज्यादा समय दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्हें चाहिए शिक्षा पहले है, सबसे जरूरी है कि हम आधार किसे बनाएं। आधार अगर हमारा ना होगा तो हम उसके ऊपर महल नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए आधार हमें सबसे पहले बनाना है। आधार बनाने का मतलब है सबसे पहले हमें शिक्षा लेनी होगी। शिक्षा अगर हमने ले लिया तो फिर हम आगे उसके ऊपर कई तरह की इमारत खड़े कर सकते हैं।
1: जी,
0: इसलिए ये जरूरी है कि पहले शिक्षा लें, उसके बाद ही किसी दूसरे लक्ष्य की ओर अपना ध्यान भटकाएं।
2: जी मिमी जी, कुछ और सवाल है जिसे मैं पूछना चाहूंगी। शिक्षा के संदर्भ में समय का क्या महत्व है, इस बारे में आप कुछ जानकारी दें।
0: शिक्षा के संबंध में समय का बहुत महत्व है। अगर यूं कहें तो हर एक मामले में समय का महत्व होता है, लेकिन शिक्षा के मामले में समय का बहुत महत्व होता है, इसलिए क्योंकि शिक्षा का जो समय है वह सीमित समय है।
1: जी बिल्कुल,
0: एक सीमित समय तक ही हम शिक्षा लेते हैं, उसके बाद हम अपने जीवन निर्वाह के कार्य में लग जाते हैं और अलग अलग कार्यों में हमारा ध्यान चला जाता है, हम दूसरे कार्य करने में व्यस्त हो जाते हैं। और आज के दौर में शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बगैर शिक्षा के हम किसी भी क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। आज लोग अच्छे से अच्छे अंक लेकर के आ रहे हैं, अच्छे से अच्छे अंक के साथ अपने प्रगति को दिखा रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि उसके साथ समय को सही प्रबंधन करें, समय का सही प्रबंधन करें, और समय के साथ वो अपना तैयारी करें, तालमेल बिठा करके चलें, उसमें तभी वह सफल विद्यार्थी बन सकते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, शिक्षा के संदर्भ में समय का बहुत महत्व है, इस बात को विद्यार्थियों को समझना होगा, है ना, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों को इस संदर्भ में क्या आत्म मंथन की आवश्यकता है?
0: हाँ, यह बिल्कुल जरूरी है। आज के दौर में हर एक विद्यार्थी को आत्म मंथन की आवश्यकता है,

0: इसलिए आत्ममंथन की आवश्यकता है क्योंकि हर एक विद्यार्थी की योग्यता अलग अलग होती है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि कोई विद्यार्थी किसी सब्जेक्ट में किसी विषय पर आगे चल रहा है तो मैं भी उसी विषय पर आगे चलूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्ममंथन करके देखें कि हमारे लिए हमारी योग्यता किसमें सबसे अधिक है और हमारी योग्यता जिसमें सबसे अधिक है हमें उसमें ही ज़्यादा काम करना चाहिए और अपनी योग्यता को दिनों दिन बढ़ाना चाहिए। आत्ममंथन की ज़रूरत इसलिए भी है
1: जी।
0: कि विद्यार्थी शिक्षा का महत्व को नहीं समझते हैं, उन्हें कई बार शिक्षा बोझ के समान लगती है या आदेश के समान लगती है। उन्हें लगता है कि शिक्षा सिर्फ माता पिता का आदेश है जिस कारण से शिक्षा लेनी पड़ती है, या शिक्षकों का बहुत दबाव बना रहता है इसलिए शिक्षा लेनी पड़ती है। नहीं, ये आत्ममंथन करनी चाहिए उन्हें कि शिक्षा की आवश्यकता कहाँ है, कौन से जगह पे हम बिना शिक्षा के हम कौन से जगह पे खड़े हो सकते हैं, क्या हम सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी एक पहचान भी बनाना चाहते हैं। अगर हम अपनी एक पहचान भी बनाना चाहते हैं तो हमें शिक्षा का महत्व समझना चाहिए
1: जी। अच्छा, अंत में एक सवाल और भी हम पूछना चाहेंगे कि कोरोना काल में बहुत सारे विद्यार्थियों के शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है, तो इसके लिए आप किसे उत्तरदायी मानती हैं?
0: कोरोना काल में तो सच पूछा जाए तो विद्यार्थियों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। पढ़ाई का स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है, ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई में बहुत फर्क पड़ जाता है। जहाँ पर विद्यार्थी आमने सामने शिक्षक के सामने बैठ करके पढ़ते हैं
1: जी।
0: और अपनी हर जिज्ञासा को पूरी करते हैं, ऑनलाइन में शायद वह उतने स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं
1: जी।
0: इसके लिए उत्तरदायी तो ये कोरोना को ही हम कहेंगे और हम किसी और को कह नहीं सकते हैं। इसमें किसी शिक्षक का कोई दोष नहीं है, विद्यार्थियों का दोष नहीं है, दोष तो हम इस कोरोना को ही कहेंगे। यह एक क्या कह सकते हैं हम इसे, यह एक महामारी आई है और महामारी के चपेट में सभी लोग आए, जैसे व्यवसायी लोगों का व्यवसाय पे फर्क पड़ा है उसी तरह से विद्यार्थियों के जीवन में भी बहुत फर्क पड़ा है, बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। विद्यार्थियों को जितनी अध्ययन होनी चाहिए थी एक साल में उसका 50% ही वो अध्ययन कर पाए हैं
1: जी। उन्हें भी परेशानियों का सामना करना,
0: बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
1: तो बीमी जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और अपना बहुत बहुमूल्य समय आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद
2: दोस्तों। अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, सफलता के लिए समय तालिका का महत्व। जानकारी दे रही थी विम्मी प्रियदर्शनी और उनसे बातचीत कर रही थी रानी सहाय। तो कार्यक्रम में चलते चलते सुनते हैं एक गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में यह गीत। फिल्म का नाम है 100 डेज़।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में यह गीत। फिल्म का नाम है अमर प्रेम।

अभी आपने सुना फिल्म दो रास्ते से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में संध्या 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: तो एखन हमारे मन रुना देवर संगे मन कर गावल नागपुरी गीत सुनत रही, बहुत बढ़िया लागत रहे। लेकिन देखो बेरा को देख के काम करे पड़ेला, तो हमारी दुनिया कार्यक्रम कर बेरा तो यही जो सिरा थे।
1: तो कार्यक्रम
0: दिन में रवरे मन अपन जीव जहान कर ख्याल रखो, बढ़िया रहो और हमरे के विदा देव। तो रवर मनक रेडियो संगीकरण भाई और
1: मनीष भाई के देव विदा।
0: जोहार, जोहार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया बल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से सहयोग की जताई अपेक्षा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने जमशेदपुर में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, केंद्र से राज्य को मिल रहा पर्याप्त आर्थिक सहयोग। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रांची में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू। स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी मुक्त झारखंड पर दिया जोर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में प्री मॉनसून बारिश से गर्मी से राहत। पड़ोसी राज्य बिहार में मॉनसून की दस्तक, राज्य में दो तीन दिनों में करेगा प्रवेश। और श्रीलंका दौरे के लिए अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा। झारखंड की कुमारी पलक का चयन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में झारखंड को केवल खनिज उत्पादक राज्य नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब और नॉलेज इकोनॉमी के रूप में विकसित करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, कृषि, खेल और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में राज्य सरकार की पहलों की जानकारी देते हुए केंद्र से विभिन्न परियोजनाओं और संस्थानों के लिए सहयोग की मांग की। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन की बाकी राशि जारी करने, कोयला कंपनियों के बकाया भुगतान, मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति तथा भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं के सरलीकरण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड के संसाधनों को मानव पूंजी से जोड़कर राज्य को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भागीदार बनाया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने जमशेदपुर में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में राज्यों को पर्याप्त केंद्रीय सहायता राशि दी जा रही है। श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत झारखंड समेत देश भर के 11 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रूपये की सहायता राशि दी जा रही है।
1: 81 करोड़ों को

0: कि जमीनी स्तर पर कार्य करने वालों की मदद से वर्ष 2029 तक टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा।
1: टीबी कैसे दूर करें इस राज्य से, क्योंकि झारखंड में अभी तक लगभग 6000 से अधिक पेशेंट हैं हमारे। तो मैंने तमाम जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्रियों से मैंने आग्रह किया है कि आपके गांव में भी यदि कोई पेशेंट है तो उनको आप लोग चिन्हित करें। हम लोग मुफ्त में टीबी का इलाज करते हैं, 1000 रुपया हम लोग हर मंथ इलाज के लिए जो पेशेंट आते हैं उनको देते हैं। जहां तक कि हम लोग ने एक फ्रेंड जो बीमारी टीबी ठीक हो जाता है तो वैसे मरीज को हम लोग गांव में भेजते हैं। तो आप प्रचार करो कि कहां पर आपका पेशेंट है, ये बीमारी जो है लाइलाज बीमारी है, इसे घबराना नहीं है। और भारत सरकार ने कहा था कि 2025 में टीबी मुक्त करेंगे, लेकिन 2025 हुआ नहीं। हम लोग 2029 में हम झारखंड को टीबी मुक्त झारखंड हम बनाएंगे।
0: राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में आगामी 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम जारी होंगे। नाम वापसी के अंतिम दिन आज किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया। अब झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला तय है। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले मतदाताओं की मैपिंग प्रक्रिया 15 जून तक जारी रहेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अब तक राज्य के 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। 23 मई को अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित होने के बाद 14 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपनी मैपिंग कराई। श्री कुमार ने अनमैप्ड मतदाताओं से जल्द मैपिंग प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य के 3 प्रतिष्ठित लोक कलाकारों को संयुक्त रूप से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इन कलाकारों में बूटन देवी, सोमवारी देवी और सरायकेला खरसावां के छऊ मुखौटा शिल्पकार सुशांत कुमार महापात्र शामिल हैं। श्री महापात्र ने इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है।
2: मैं एक पारंपरिक घराना का हूँ, ये मुझे तो दुख भी लग रहा है कि मुझे बहुत देर में मिला हूँ। मैं छो के लिए समर्पित हूँ, छो के लिए काम करूंगा। ये हमारा परंपरा है, 3-4 पीढ़ी हो गया। मेरे बड़े चाचा थे जो सरायकेला के जगन्नाथ मंदिर को जितनी भी मूर्तियां हैं वो बनाए हैं।
0: पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट के बीच केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई स्थिर है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,40,00,000 एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग हुई, जिसके आलोक में 1,49,00,000 की डिलीवरी की गई।
3: देश में क्रूड, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई स्टेबल है। हमारी रिफाइनरीज उच्चतम क्षमता पर चल रही हैं। पिछले 3 दिनों में 1.40 करोड़ एलपीजी सिलेंडर्स की बुकिंग रिसीव हुई है। इसके अगेंस्ट 1.49 करोड़ डिलीवरी की गई है। अफवाहों से बचें, जहां पर भी संभव हो वहां अल्टरनेट सोर्स का उपयोग करने का प्रयत्न करें।
0: प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना जामताड़ा जिले के लोगों, विशेषकर गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जरूरतमंद लोग जन औषधि केंद्र में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां ले रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है, जो गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ सस्ती और बहुत अच्छी दवाइयाँ मिल रही है, जो गरीबों को बहुत आवश्यकता अनुसार काम कर रही है। प्रधानमंत्री को धन्यवाद करती हूँ।
0: रांची के नगड़ी मौजा में प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने आज विरोध मार्च निकाला। ग्रामीणों की योजना मुख्यमंत्री आवास घेरने की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें मोराबादी में रोक दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि राज्य सरकार विकास के नाम पर किसानों की कृषि योग्य भूमि छीन रही है।
5: रिम्स 2 बने, आदिवासी समाज कभी भी विरोध नहीं किया है। पूरे झारखंड में यहाँ पे आदिवासियों का ही जमीन किया गया है। 11-12 में भाजपा सरकार इस जमीन को छीन रही थी।

0: उसके बाद शिबू सोरेन जी उनके आह्वान पे ये जमीन को बचाया गया है। अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना है हमारे दिसुम गुरु को, ये नगरी का जमीन 227 एकड़ खेतीहारी जमीन को पूरे आदिवासी समाज को उपहार देने का काम करे।
1: राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद तेज हवा और गरज के साथ प्री मॉनसून की मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पड़ोसी राज्य बिहार में आज मॉनसून ने दस्तक दी है, इसके राज्य में 2-3 दिनों में प्रवेश करने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार 17 जून तक तेज हवा और गरज के साथ बारिश के आसार हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की महिला चयन समिति ने 3 T20 श्रृंखला के लिए आज 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी। श्रीलंका दौरे के लिए घोषित 15 सदस्यीय इस टीम में झारखंड की कुमारी पलक का भी चयन हुआ है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया बल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से सहयोग की जताई अपेक्षा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने जमशेदपुर में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां, कहा केंद्र से राज्य को मिल रहा पर्याप्त आर्थिक सहयोग। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रांची में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू। स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी मुक्त झारखंड पर दिया जोर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में प्री मॉनसून बारिश से गर्मी से राहत। पड़ोसी राज्य बिहार में मॉनसून की दस्तक, राज्य में 2-3 दिनों में करेगा प्रवेश। और श्रीलंका दौरे के लिए अंडर-19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा, झारखंड की कुमारी पलक का चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी रांची है, प्रस्तुत है जिले में आज कड़े।
1: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता।
1: कोडरमा जिले का सुदूरवर्ती सतगावा प्रखंड भी अब रेल मार्ग से जुड़ने जा रहा है। बिहार के नवादा से गिरिडीह तक नई रेल परियोजना के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इस नई रेल परियोजना के तहत कोडरमा के सतगावा प्रखंड के अलावे गिरिडीह जिले के तीसरी और गांवा भी रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस रेल परियोजना की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस नई रेल परियोजना से कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के कई सुदूरवर्ती इलाके रेल मार्ग से जुड़ जाएंगे, जिससे लोगों को न सिर्फ आवागमन में सुविधा होगी बल्कि रोजगार के नए मार्ग भी प्रशस्त होंगे।
2: सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और माननीय रेल मंत्री जी को कि उन्होंने सतगावा, कोडरमा और गिरिडीह जिले के अंतर्गत पड़ने वाले वैसे हजारों हजार लोगों की भावना को उन्होंने सम्मान दिया है और बरसों से इसकी मांग थी कि नवादा से सतगावा गावा तीसरी को गिरिडीह के साथ जोड़ा जाए। तो इसमें दो राज्य जुड़ेंगे और इसमें हजारों हजार लोगों को फायदा होगा और निश्चित रूप से जब रेल लाइन बनेंगे तो उसके बाद क्षेत्र का भी विकास होगा।
1: झुमरी तिलैया के इंदरवा में 20 महिलाओं का समूह जूट से उत्पाद तैयार कर आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहा है। महिला विकास समिति के बैनर तले राधा यादव के नेतृत्व में आसपास की 20 महिलाएं यहां जूट से अनेकों तरह के उत्पाद तैयार कर बेहतर आमदनी कर रही है। घरेलू कामकाज के साथ हो रही इस आमदनी से महिलाएं उत्साहित हैं और अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने में जुटी हैं।
3: हम लोग ऐसे तो घर में बैठे हुए रहते थे, कुछ यहाँ जुड़ने के बाद राधा दी बोली कि यहाँ आओ कुछ सीखते हैं। हम लोग भी सिखाते भी हैं, ट्रेनिंग हो चुका है। ऐसे घर में गप्पे लड़ाते थे इधर से उधर, कहीं कभी सोना कभी बैठना, तो हम लोग सोचे फिर क्यों

0: हैं तो कुछ थोड़ा सा कुछ रोज नया चीज सीखें। पति का अभी हाथ बटाते हैं, बच्चों का स्कूल का फीस वगैरह हो गया, वो चीज में भी हम लोग का भी रहता है, हम लोग का इनकम जो होता है उससे हम लोग करते हैं।
1: जिले के अंगीभूत कॉलेजों को हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय से गिरिडीह के सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी में स्थानांतरित करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ जहां छात्र संघ लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं भाजपा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने भी इस मामले को लेकर हेमंत सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है।
2: एक छोटी सी बात है, 54 किलोमीटर हजारीबाग जाने की दूरी, 125 किलोमीटर गिरिडीह जाने की दूरी, और यही दूरी के चलते विनोबा भावे विश्वविद्यालय बना और फिर से आप इसको गिरिडीह ले जा रहे, आखिर इसे हम क्या कहें? अरे राजनीति आती जाती रहती है, पद आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि राज्य हित में न हो, क्षेत्र हित में न हो, छात्र हित में न हो।
1: कोडरमा से हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय की दूरी तकरीबन 55 किलोमीटर है, जबकि गिरिडीह सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी 125 किलोमीटर दूर। ऐसे में विश्वविद्यालय स्थानांतरण से कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को परेशानी होनी लाजमी है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
3: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:15 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान की आवाज में यह गीत। फिल्म का नाम है आजा नचले।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झनकार। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:30 हुए हैं। अब सुनिए सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

अभी आपने सुना फिल्म प्रेम कैदी से यह गीत साधना सरगम और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजों में। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और अभिजीत की आवाज में। फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

अभी आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है चांदनी।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। अब सुनिए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

कार्यक्रम आपकी चाहत में आप सभी का स्वागत है। साथ ही अंजलि का नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में यह गीत। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी दोस्तों ने। डंबाडी हरली बड़का गांव से उमेश चंद्र पांडे, शंभु चंद्र पांडे, अनिल चंद्र, साकेत, शुभम, नर्मदा पांडे, अक्षता, प्रियंका, शम्मी, अपराजिता, टुकू, अपूर्व एवं समस्त पांडे परिवार। इसी गीत को सुनना चाहा है चाईबासा झारखंड गांव सुपाई साई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेन जी। इसी गीत को सुनना चाहे हजारीबाग पतरातू से वेसिल खलको, मधु, रितु, रचना, मीतू, श्वेता, पल्लवी, रोहित, प्रवीण, नदीम, मनीषा, सोरेन एवं समस्त परिवार। इसी गीत को सुनना चाहा है पंचमुखी हनुमान मंदिर नीवेरिया हजारीबाग से और तनु घोष, शांतनु घोष, मीरा घोष, श्री रूपा घोष, मेघा घोष, रितिका घोष, मिष्टू घोष, प्रोनित राय और इनके घर के सभी सदस्य। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म आज का अर्जुन फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में।

0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से।
1: इस प्यारे से गीत के साथ ही संपन्न होता है आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज का ये सफर आपने तय किया श्वेता के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
1: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद आपका।
1: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
2: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूं, मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई।
1: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा है, सरकार में एक अहम पद पर है आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
2: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और ये भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेकर बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी, चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है। और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
1: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
2: सबके साथ है, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा न चुनाव की बात, न मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। तो यही तो अपनापन है।
1: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
1: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
2: देखिए, एक तो संकट है
1: जिसको इतिहास याद रखेगा,
2: 25 करोड़। देखिए, इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि यह दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी? कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है, जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? एलओपी तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगा।
2: बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
2: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 देख जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पुकाओ पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है?
2: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई, दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। सीबीआई को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही, पहले भी पेपर लीक होते थे,

0: तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर
1: अंतर
0: नहीं?
1: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की भरने की कोशिश की गई।
0: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
1: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
0: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
1: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
0: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन?
1: हकीकत तो यही जनता जान, देखिए हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, एनडीए शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
0: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
1: नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
0: नहीं लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
1: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूं।
0: सर लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इंपोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी। कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे, मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम, राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
0: शिवराज जी आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या LPG के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
1: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन कई लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूं तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूं। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है, परिस्थितियां बनती है तो

0: कुछ निर्णय होते हैं लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
0: तत्काल देखिए, मैं तो उनकी हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे। और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूं और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं। तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम 3 मंत्री एक साथ गए थे कार।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़े लक्ष्य हमारे, एक देश की खाद्य सुरक्षा हमें सुनिश्चित करना है, दूसरा पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इसलिए AI का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक नहीं अनेकों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे AI के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
0: हमने अल नैनो की भी हम बात करें, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये AI का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो AI के ऐसे अनेकों उपयोग है जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नैनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नैनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने AI के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया है उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी। अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी AI की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूं, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहां पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहां कम संभावना है, कहां ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हों, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
0: केवल एक ही घटना मैं सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश उसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूं। जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूं, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूं। और वो चीज मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरे वेती के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
3: मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है। केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
4: धन्यवाद।
3: भारत किस तरीके से, जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई, या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए, या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएं, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए, बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहां से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की, जिसपे हम काम कर रहे हैं, वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की

0: एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज्यादा बेहतर हैं। उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सबको अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे, हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
1: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहां किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने भी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
0: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में, जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहां पे नालंदा बिहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहां पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
1: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेन जी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें, अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
0: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए, जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहां पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के, नेताजी के नाम से द्वीप हुआ, जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल है या जो पुरातत्व स्थल है उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एम्यूनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहां के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है, और वहां पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ एआर वीआर एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहां पे जो हमारे यूथ है, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम

0: स्थापित हो रहा है। ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉकयार्ड था, पूरा मैरिटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी, तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान का ज्ञान की प्राप्ति होगी उसे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
1: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेंजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी और अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम बच्चे थे, और आज जब आप इस दौर में है संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खासकर जब भारत की वो पुरानी धरोहर है, वो मूर्तियां, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
0: देखिए, मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये एक शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, इसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है बल्कि भारत के सभी मिशन्स, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशन्स, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूं कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहां भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
1: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेन जी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था महिलाओं के लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारी दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है और इसको हम सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज को एस्टैब्लिश करें बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे और

0: फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे, उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिले।
1: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इसे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: हम अपने नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
4: पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन।
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
7: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
8: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
4: गरीब

0: कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली पांच है जो हमको पांच पांच किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रूपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
2: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी

परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम आपके लिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के हुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए दूर के।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

मेरा जन्म भी बम्बई का है और मैं भी साउथ बॉम्बे में ही मेरा बचपना मैंने बिताया। हम लोग पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौड़ जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज़्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज़ सुनी तो वो किसी साहस की सुनी या कोई पहला खिलौना हाथ में आया।

0: तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था, लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग पांचों इतने मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई हैं अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद ही इज ऑल्सो प्लेबैक सिंगर, और सबसे छोटा है दिलीप। मुझे एक किस्सा बराबर याद आ रहा है क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, म्यूजिक सिखाते थे, क्योंकि मैं संगीत में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तो जब भी कोई स्कूल का फंक्शन होता था तो कहीं ना कहीं वो मुझे उसमें तबला बजाने के लिए कहते थे या गाने के लिए कहते थे।

0: पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं हुई, क्योंकि संगीत बहुत कम उम्र से ऐसा रच बस गया था कि या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था, पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौड़ एक दक्ष तबला वादक हैं। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौड़ ने गायन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई एक सुरीले गजल गायक के रूप में।

पार्श्व गायक के रूप में रूप कुमार राठौड़ को पहला मौका दिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अंगार में। इसके बाद आई फिल्म भैरवी, जिसमें रूप कुमार राठौड़ की आवाज को बहुत पसंद किया गया। कुछ और फिल्में मिली जैसे गुमराह, मोहब्बत की आरजू, तेजस्विनी और नाजायज, लेकिन रूप कुमार राठौड़ को असली कामयाबी मिली फिल्म बॉर्डर से।

पहला प्रोग्राम मुझे याद है, जैसे मैं 6 साल का था तब मैंने स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस एक गौला टैंक पे, एक हॉल है तेजपाल हॉल, वहाँ पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज़्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफ़ी म्यूजिशनों का आना जाना रहता था और कई उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा, प्यार, और गाने बजाने की बातें ज़्यादा होती थी rather than gossip। तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो आवाज़, जो तबले की जो पहली आवाज़ या धा या ता या तिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पर डाला कि अगर मैं रो रहा हूँ और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, 102-103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बा जी, जिसे हम प्यार से अब्बा जी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब घर पे आए और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज़ मुझे सुनाई दी और मेरी आँख खुल गई और मैं रोने लगा, ज़िद करने लगा। और फिर खां साहब ने, अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे और 1 घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया। हाँ, तो वाकई वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज़्यादा छाया हुआ था। तो शायद यही वजह रही हो सकती है कि मैंने तबला एज अ प्रोफेशनल बजाना शुरू किया।

0: रूप कुमार जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कि कौन कौन आते थे?
1: अबाजी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह खान
1: साहब और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफ़ी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके एक बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोज़र हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमीम अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
0: तबला जो था उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और कौन से आपने सीखा?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने से आई, कुछ चीज़ें सीखने से आई, और कुछ चीज़ें जो हैं अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, ख़ास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तरखवा खान साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सब को देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में बिठाई, और मैं आज भी वो चीज़ें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गज़लें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला, उसमें से ये एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था।

0: 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहाँ मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में
0: और वहाँ पर हारमोनियम पड़ा हुआ था, ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था, और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई, उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
2: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौर को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए।

0: जमाना।
1: लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौड़ पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवान।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सभी का स्वागत है, साथ ही अंजलि का सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में यह गीत। फिल्म का नाम है मैं तुलसी तेरे आंगन की।

दोस्तों, अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में यह गीत फिल्म कटी पतंग से। अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में यह गीत। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

अभी आपने सुना हेमलता की आवाज में यह गीत, फिल्म का नाम आंखियों के झरोखों से। अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वंश से यह गीत, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार।

कार्यक्रम आज के फनकार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सुनवा रहे हैं पार्श्व गायिका अलका याग्निक की आवाज में कुछ गीत। दोस्तों, अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 में हुआ था, जिन्होंने 1980 से 2010 के दशक तक हजारों सुपरहिट गाने गाए। कोलकाता में जन्मी अलका याग्निक ने 6 साल की उम्र में आकाशवाणी के लिए गाना शुरू किया था।

दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म आरजू में यह गीत। अभी हम आपको सुनवा रहे हैं पार्श्व गायिका अलका याग्निक की आवाज में गीत। अलका याग्निक के तेजाब फिल्म का गीत 1, 2, 3 से बड़ी पहचान मिली और इन्हें 2 राष्ट्रीय और कई फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले। 1990 के दशक की सबसे प्रमुख गायिका जिन्हें मधुर आवाज के लिए जाना जाता है। इन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 7 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले और इनके प्रसिद्ध गाने में 1, 2, 3, छम्मा छम्मा, दिलवर, ताल से ताल, अगर तुम साथ हो, कई गाने काफी लोकप्रिय हुए। तो अब सुनते हैं अलका याग्निक के आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है आप मुझे अच्छे लगने लगे।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के फनकार आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म छुपा रुस्तम से अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अकेले हम अकेले तुम से, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम आज के फनकार यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की

0: काज गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% तक कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said, when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world.